100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज वैशाख मास की 20वीं तिथि शक संवत 1948 तदनुसार 10 मई 2026 दिन रविवार प्रातः के 5:55 हुए हैं और अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

नमस्कार, सुप्रभात। श्रद्धा के सुमन और ममता की खुशबू समेटे हाजिर हैं हम आपके बीच। मैं हूं स्वेच्छा, लेकर आपका अपना कार्यक्रम पुष्पांजलि। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिसे ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में धरती पर भेजा है, मां। और आज की इस संगीतमय यात्रा में हम ईश्वरीय स्वरूपों में उसी ममता को ढूंढेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं अपना कार्यक्रम प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना के साथ।

जब भी हम गणेश जी की बात करते हैं तो उस बालक की छवि सामने आती है जिसने पूरी दुनिया के चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता के इर्द गिर्द घूमना श्रेष्ठ समझा। श्री गणेश जी का अस्तित्व ही माँ पार्वती के प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। और आज हम उन प्रथम पूज्य को याद करते हैं जो हमें सिखाते हैं कि माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड

शिव, शिव अगर आत्मा है तो पार्वती उस आत्मा की शक्ति है, महादेव के आधे अंग में विराजने वाली माँ पार्वती ही तो जगत जननी है। एक तरफ उनका ममतामयी स्वरूप है और दूसरी तरफ संकट के समय वो काली बनकर हमारी रक्षा करती हैं। और शिव शक्ति का ये बंधन हमें बताता है कि संसार की हर रचना के पीछे एक माँ की ऊर्जा छिपी है।

भक्ति क्या है? कई बार ऐसा सवाल मन में जरूर आता होगा ना। एक छोटे बच्चे का अपनी माँ के हाथ को पकड़ लेना सबसे बड़ी भक्ति है। उसे पता नहीं कि माँ कहाँ ले जा रही है, पर उसे ये विश्वास है कि जहां माँ है वहां मैं सुरक्षित हूं। ईश्वर और भक्त का रिश्ता भी ठीक ऐसा ही है। अगर आप अपने भगवान पर माँ जैसा भरोसा करना सीख जाएं, तो यकीन मानिए जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी।

प्रभु श्री राम, इनका व्यक्तित्व अगर मर्यादित है तो उसमें माँ कौशल्या के संस्कारों की महक है। और जब हम माँ सीता को देखते हैं तो वो तो धरती की बेटी और सहनशीलता की पराकाष्ठा में नजर आती हैं। वनवास के दुखों में भी उन्होंने जिस तरह अपने बच्चों का पालन किया वो हर माँ के लिए प्रेरणा है। और राम सिया की इस जोड़ी में आज हम उस मातृत्व को नमन करते हैं जिसने मर्यादा का इतिहास लिखा।

राम सिया की बात हो और हनुमान जी की बात ना की जाए। कहते हैं हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर हैं, पर दिखते क्यों नहीं, ये सवाल भी आता होगा मन में। हनुमान जी वायु पुत्र हैं, हवा के समान, हवा की तरह उड़ते हैं, पर हम उन्हें भौतिक जगहों पर ढूंढते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में। योग कहता है वायु पांच प्रकार की होती है, अपान, समान, व्यान, उड़ान और प्राण। और ये पांच वायु, पंच वायु, इन्हें देखा जाए तो ये हनुमान जी के पंच मुख के समान है। और वायु हमारी सांस है और हनुमान जी तो हमारी सांसों में हैं। अगर ध्यान से सुने तो हर आती हुई सांस रा और जाती हुई सांस मा की ध्वनि उत्पन्न करती है। यानी राम नाम तो हमारी ध्वनि हमारे रोम रोम में समाया है। और जहां प्रभु श्री राम का नाम हो वहां हनुमान जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता।

कान्हा को याद करो तो यशोदा मैया की लाठी और माखन की मटकी याद आ जाती है। कृष्ण भले ही देवकी के लला थे, पर उन्हें कन्हैया कान्हा बनाया माँ यशोदा के निस्वार्थ प्रेम ने। और राधा रानी, वो तो स्वयं भक्ति का वो रूप है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। और आज इस भजन के माध्यम से हम उस मैया और उस प्रेम को याद करते हैं जिसने भगवान को भी घुटने के बल चलने पर मजबूर कर दिया था।

माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का केंद्र है। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है। और उन सभी माताओं को नमन जो दिन रात बिना थके बिना रुके अपने परिवार के लिए शक्ति का स्तंभ बनी खड़ी रहती हैं। ईश्वर की सबसे सुंदर कविता अगर कोई है तो वो माँ है। वक्त की सुई अब इशारा कर रही है कि विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन आज अपनी माँ के पास दो पल सुकून से जरूर बैठेगा, क्योंकि दुनिया में बाकी सब कुछ दोबारा मिल सकता है पर माँ की दुआओं का कोई विकल्प नहीं होता। उम्मीद है आज की पुष्पांजलि आपको पसंद आई होगी और आपके दिल को छू गई होगी। मैं स्वेच्छा आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। मिलते हैं न्यूज ब्रेक के उस पार कार्यक्रम सदाबहार गीत के साथ। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

गुड मॉर्निंग कानपुर। वन जीरो टू पॉइंट टू एफ एम रेनबो कानपुर पर मैं हूँ आपकी अपनी सारिका और संडे की इस प्यारी सी मॉर्निंग में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह की हल्की धूप के साथ ठंडी हवाएं, चाय की खुशबू, घर की आराम भरी वाइब्स और साथ में ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर हम हाजिर हैं विद गुड मॉर्निंग कानपुर। वैसे दोस्तों, आज की ये सुबह थोड़ी और स्पेशल है क्योंकि मदर्स डे की वार्मथ अब हवाओं में महसूस हो रही है। घर में माँ की आवाज, उनके हाथों की चाय और उनका जल्दी उठ जाओ वाला प्यार, यही तो बनाता है हर सुबह को खूबसूरत। तो डियर कानपुर, चाहे आप बालकनी में बैठकर चाय एंजॉय कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा स्लीप मोड में हो, बस जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि इस एक घंटे में मिलेगा इन्फॉर्मेशन का तड़का, पॉजिटिविटी की वार्म और म्यूजिक की ब्यूटीफुल वाइब, क्योंकि शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग कानपुर।

धूम मचा ले धूम मचा ले धूम कानपुर सॉन्ग्स स्माइल्स और सुपर वाइब्स ओनली ऑन एफएम रेनबो 102.2 कानपुर। वेल दोस्तों, एफएम रेनबो कानपुर पर सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि हर शो में मिलती है इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन और एंटरटेनमेंट की खूबसूरत ट्यूनिंग। तो टाइम है शेयर करने का आपसे 102.2 रेनबो कानपुर से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स को। समाचार के बाद सुबह 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरों की पुरानी महफिल। सुबह 9:00 आप सुनेंगे मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम रस बहार मेरे यानी आरजे सारिका के साथ। अगर आप भी अपनी माँ को विश करना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए अपनी ईमेल भेजकर। जी हाँ, हमारा ईमेल एड्रेस है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। सुबह 9:45 पर लेकर हाजिर होंगे प्रोग्राम पॉप टाइम और दिन में 11:00 में लेकर आऊंगी प्रोग्राम हमनवा। आज इस प्रोग्राम में मेरी हमनवा होंगी आरजे मीनाक्षी। दिन में 3:00 आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिकार और दिन में 4:00 बैक टू बैक सॉन्ग्स का प्रोग्राम बैक टू बैक आप एंजॉय करेंगे। जी कानपुर शहर की धड़कनों के साथ एफएम रेनबो 102.2 ऑलवेज ऑन एयर।

0: चू उतर ना पाए। म्यूजिक ऐसा जो सीधे आपके दिल में समाए। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.2 कानपुर की दिल की धड़कन।
1: जी हाँ, कानपुर शहर की धड़कनों के साथ FM रेनबो 102.2 ऑलवेज ऑन एयर, ऑलवेज इन योर हार्ट। और दोस्तों, अब वक्त है सुबह को थोड़ा और पॉजिटिव बनाने का। लेट्स मूव टू अवर स्पेशल सेगमेंट थॉट ऑफ द डे। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए मेहनत दिल से की जाए। सो कीप स्माइलिंग एंड नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। 102.2 रेनबो कानपुर है आपके साथ।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, और जो अभी अभी नींद से जागे हैं उन्हें भी गुड मॉर्निंग है। वेल, अब वक्त है क्विक डिजिटल राउंड अप का, जहां मिलेगी आपको सोशल मीडिया की इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग हलचलें। तो चलिए बढ़ते हैं सोशल मीडिया ब्लिंक्स की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री शुभेंदु अधिकारी जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। योगी जी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया कि पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं आपके ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृत काल में प्रवेश करेगा। वहीं दोस्तों, फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपने एक्स हैंडल पर अपनी मां की फोटो के साथ अपनी फोटो शेयर की और लिखा है, पिछले हफ्ते मां मेरे ऑफिस आई और मेरी कुर्सी पर बैठ गई, फिर खुद ही मुस्कुराकर बोली, ये तो मेरी ही कुर्सी है। मैं भी मुस्कुरा दिया क्योंकि सच यही है, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उनकी दुआओं का नतीजा है, उनके त्याग, उनकी हिम्मत, उनके विश्वास का फल है। उन्होंने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर मेरे सपनों को आगे बढ़ाया, अपने हिस्से की धूप छांव सहकर मेरे रास्ते को आसान बनाया। माएं ऐसी ही होती हैं, अपनी जवानी, अपनी इच्छाएं, अपना आराम सब चुपचाप समर्पित कर देती हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। उनकी मजबूती को सलाम है। FM रेनबो 102.2 से।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें।

पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: पहले प्यार का पहला खुमार, दिल को करता है बेकरार, आंखें ढूंढती हैं उसी को हर पल, कानों को रहता है उसकी आहट का इंतजार। आप सुन रहे हैं कानपुर का पहला पहला प्यार, FM रेनबो 102.2, कानपुर की दिल की धड़कन।
1: चलिए कानपुर, अब थोड़ा सफर करते हैं बीते हुए कल की तरफ और हिस्ट्री के पेज को स्क्रॉल करते हुए बढ़ते हैं सेगमेंट हिस्ट्री नामा की तरफ। दोस्तों, 10 मई वो दिन है जिसने आजादी की लड़ाई में एक नई चिंगारी जलाई। जी हाँ, आज ही के दिन 1857 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई। वही 10 मई 1999 में पेनिसिलिन के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इब्राहिम ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। हर साल 10 मई को ही विश्व ल्यूपस दिवस भी मनाया जाता है और आज ही के दिन मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। शत शत नमन है आपको 102.2 रेनबो कानपुर से। 102.2 रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर और इस प्रोग्राम को लेकर आज आरजे सारिका है आपके साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: Bless your heart. Be on the floor of music. Only on FM Rainbow Kanpur. Kanpur ki dil ki dhadkan. You are listening to FM 102.2 Rainbow Kanpur.
4: हे कानपुर सिटी, आर यू रेडी फॉर ए वर्ल्ड टूर? क्योंकि अब हम निकल पड़े हैं अराउंड द वर्ल्ड, जहां मिलेगी देश दुनिया की इंटरेस्टिंग अपडेट्स। जी, दिस अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट। दोस्तों, कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज कर्नाटक तेलंगाना का दौरा करेंगे। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज कर्नाटक तेलंगाना का दौरा करेंगे। साथ ही बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं कल भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल का उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। दोस्तों, अमेरिकी विभाग की उप सहायक सचिव बेथनी मॉरिसस ने

अमेरिका भारत एआई और उभरती प्रौद्योगिकी फोरम में कहा कि अमेरिका भारत सहित दक्षिण और मध्य एशिया के देशों को विश्व स्तरीय तकनीक तक पहुंच देना चाहता है। भारत सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। साथ ही कल भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और अब ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर। जी हाँ, अब भारतीय रेल 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को बदलने जा रहा है। ये पूरी तरह अपग्रेड किया जाएगा, यानी अब स्लो सर्वर, लंबी वेटिंग लिस्ट या तत्काल टिकट बुक करने में परेशानी नहीं होगी। और अब मई महीने के आखिर तक आप एटीएम यूपीआई से पीएफ की रकम निकाल सकेंगे। You all are listening to FM Rainbow 102.2 कानपुर, जहां म्यूजिक भी कलरफुल है और बातें भी दिल से होती हैं।

जी हाँ, 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट रहना सौदा खरा खरा। तो कानपुर रिलैक्स करो, स्माइल करो और म्यूजिक एंजॉय करो।

0: Because FM Rainbow 102.2 is right here with you.
1: Bless your heart. Be on the floor of music. Only on FM Rainbow Kanpur. Kanpur ki dil ki dhadkan. You are listening to FM 102.2 Rainbow Kanpur.
0: रेनबो कानपुर पर गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में एंजॉय कर रहे हैं आप और अब जुड़ जाइए अपने शहर की धड़कनों से बिकॉज इट्स टाइम फॉर सिटी हाइलाइट्स। जी हां, अब स्पॉटलाइट पड़ेगी अपनी सिटी कानपुर पर। तो दोस्तों, शहर के विभिन्न सेंटरों पर होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा कल से शुरू हो चुकी है और आज भी चलेगी। लगभग 42,000 स्टूडेंट्स अपने कानपुर शहर में शिरकत कर रहे हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयारी से है। वहीं शहर का कानपुर में कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 11 मई से शुरू हो रही है, जो शहर के ऑनलाइन सेंटर्स में कराई जाएगी और इन एग्जाम्स को हेल्ड कर रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। प्रदेश में स्वगणना का पहला चरण 7 मई से शुरू हो गया, जो 21 मई तक चलेगा। जरूरी है हम सभी खुद अपने मोबाइल के माध्यम से जनगणना पोर्टल http://se.census.gov.in पर जाकर आवेदन करें। वहीं GSBM मेडिकल कॉलेज में पहली बार GSBM MUN के मंच से प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट ने वैश्विक मुद्दों पर वाद विवाद किया। वेल, आपके सफर का परफेक्ट कॉम्पेनियन FM रेनबो 102.2 कानपुर, ऑलवेज इंटरटेनिंग।

0: म्यूजिक ऐसा जो सीधे आपके दिल में समाए। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.2 कानपुर की दिल की धड़कन।
1: एनर्जी, एक्साइटमेंट और खेल का पूरा जुनून। स्कोर क्या रहा, किसने मारी सेंचुरी और कौन बनेगा चैंपियन, जाने खेल की दुनिया की हलचल स्पोर्ट्स डेस्क के थ्रू। तो दोस्तों, कल आईपीएल के 52वें मैच में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हराया। वहीं तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भारत के साहिल जाधव ने कांस्य पदक जीत लिया और 24वीं राइफल KSS नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 से 15 मई तक हो रहा है। इसमें शहर के पैराशूटर्स मोहम्मद उमर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए गोल्डन हैट्रिक लगाई, 3 स्वर्ण और 1 कांस्य जीतकर कानपुर शहर का नाम रोशन किया। तो बधाई हो आपको, और जो ये बधाई का टाइम है और खुशी मनाने का टाइम है, तो प्ले करती हूँ ऐसा ही एक खूबसूरत सा ट्रैक।

हर रंग की धुन, हर दिल की आवाज, एफएम रेनबो कानपुर 102.2 प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर, और इस प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे हैं सारिका के साथ।

कानपुर टर्न अप द वॉल्यूम 102.2 रेनबो कानपुर है आपके साथ। टेम्परेचर कितना, हवाओं का मूड क्या और बारिश के क्या हैं चांसेस। जी हाँ, बात होगी मौसम की। दिस इज हाल मौसम। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी और भारत मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं ह्यूमिडिटी मैक्सिमम 71% और मिनिमम 35%। साथ ही एयर स्पीड जो है वो है 6.4 किलोमीटर पर आर रिकॉर्ड की गई है। तो वेदर अपडेट ये है कि जी हाँ, आने वाले 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रहने की पॉसिबिलिटी है, बारिश की कोई भी पॉसिबिलिटी

का मूड क्या और बारिश के क्या हैं चांसेस। जी हाँ, बात होगी मौसम की। दिस इज हाल मौसम। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी और भारत मौसम वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, वहीं ह्यूमिडिटी मैक्सिमम 71% और मिनिमम 35%। साथ ही एयर स्पीड जो है वो है 6.4 किलोमीटर पर आर रिकॉर्ड की गई है। तो वेदर अपडेट ये है कि जी हाँ, आने वाले 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रहने की पॉसिबिलिटी है, बारिश की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो फ्रेंड्स, पानी खूब पीजिए, खुद को कूल रखिए और अपनी एनर्जी हाई रखिए विद 102.2 रेनबो कानपुर।

तो इस खूबसूरत सुबह में बस यही कहूंगी, अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाइए और जिंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी का वॉल्यूम हाई रखिए। मैं सारिका शुक्ला लेती हूँ इजाजत प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर को यही वाइंड अप करने की। स्टे हैप्पी, स्टे एनर्जेटिक एंड कीप शाइनिंग कानपुर। जी हाँ, देश दुनिया की खबरों के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मामकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
9: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
10: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
12: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांत शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की यह खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or meditation hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Pet and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
13: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. Mr. Modi will lay the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 from Guddebellur to Mehboob Nagar on the Hyderabad-Panaji Economic Corridor at a total project cost of over 3,175 crore rupees. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. In a major milestone for India's healthcare infrastructure, Mr. Modi will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-specialty quaternary care, not-for-profit hospital. Founder of Tamil Nadu Vetri Kadagam, TVK, C. Joseph Vijay, will be sworn in as the Chief Minister of the state today. The swearing-in ceremony will be held at Nehru Indoor Stadium in Chennai at 10 a.m. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, 9 ministers will also be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony as a huge crowd is expected to turn up for the event. More from our correspondent.
14: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to film world through Nalaya Teerpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh Beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Varan was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
13: President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as chief minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailashnathan invited Mr. Rangasamy to form a new government in the Union Territory. More from our correspondent.
15: With the approval of the President, decks are cleared for the swearing-in ceremony of N. Rangasamy as the new Chief Minister of Puducherry on May 13. Mr. Rangasamy is set to assume office for a record fifth term after the ANRC-led National Democratic Alliance secured a comfortable victory in the Assembly elections. 76-year-old N. Rangasamy had earlier served as the Chief Minister of Puducherry from 2001 to 2006 and again from 2006 to 2008 as a Congress leader. After founding the All India NR Congress, he served as Chief Minister from 2000 2011 to 2016 and later headed the ANRC-BJP alliance government from 2021 to 2026. In the recently held assembly elections, Mr. Rengasamy was elected from both the Thattanchavadi and the Mangalam constituencies. In the 30-member assembly, NDA has got the support of 18 MLAs, two more than the majority mark. Vibhinasnath, Akashwani News, Puducherry.
13: Assam BJP Legislature Party will meet in Guwahati today to elect its leader. The newly elected BJP MLAs will meet at the Atal Bihari Vajpayee Bhavan at 9 this morning. Meanwhile, preparations are in full swing for the swearing-in of the NDA government for a third consecutive term in Assam. More from our correspondent.
6: The BJP Legislature Party meeting will be held in presence of BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda and Co-Observer Naib Singh Saini. Following the meeting, the NDA Legislature Party meeting will be held at the same venue. Thereafter, the NDA Legislature Party will meet Governor Laxman Prasad Chaya to stake claim to form the government. Meanwhile, preparations are being carried out on war footing at the Veterinary College ground in Khanapara for the oath-taking ceremony scheduled to be held on May 12. The Kamrup Metro District Administration has also issued a set of traffic regulations in the city for the day. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the swearing-in ceremony. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
13: The top brass of the Congress Party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, General Secretary, Organization K.C. Venugopal and Senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and V.D. Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures under the Labour Codes. By linking labour law compliance directly with eligibility for government contracts and bidding, the measures seek to curb delays in wage payments and defaults in statutory dues affecting contract workers. A report.
16: The new framework operationalizes worker protection envisaged under the four labor codes while introducing stricter penalties including debarment and blacklisting for firms violating timely wage and social security contributions. Under fresh instructions issued on Friday, ministries, departments, statutory, autonomous bodies and central public sector enterprises have been directed to strictly ensure that contractors disburse wages within prescribed timelines and the drawing and disbursing officers verify compliance every month. Daily wages should be paid by the end of shift, weekly wages before weekly holiday, fortnightly wages within 2 days of end of fortnight and monthly wages within 7 days of the succeeding month. The government has further directed that wage payment should be made only through bank transfer or electronic mode and contractors must electronically inform principal employers after the payment. It said that contracts must contain penalty clauses for delayed wage payments and further ask ministries to ensure adequate fund availability before awarding manpower contracts. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
13: Defence Research and Development Organisation has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar jointly handed over an agro-processing facility in South Trinidad along with the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar. In a social media post, Dr. Jaishankar said that the facility, powered by India's SEEDS initiative, will strengthen Trinidad and Tobago's small and medium-sized enterprises ecosystem, providing fresh impetus to its farming sector. He also launched a permanent prosthetic center in Pinal, Trinidad and Tobago. Dr. Jaishankar said that the center is a gift of mobility and dignity for the country and wider Caribbean.

नमस्कार, आकाशवाणी से लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण

Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.

नमस्कार दोस्तों, एफएम रेनबो 102.2 कानपुर पर मैं हूं आपकी अपनी आरजे सारिका शुक्ला। और आज सुरों की पुरानी महफिल सजी है एक ऐसे अजीम शायर की याद में जिनके अल्फाज मोहब्बत, एहसास और इंसानियत की खुशबू से हमेशा महकते रहे। जी हां, आज की ये महफिल समर्पित है कैफी आजमी की पुण्यतिथि को। इनकी लिखी नज़में और गीत सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि दिल की आवाज थे, जो आज भी उतनी ही शिद्दत से महसूस किए जाते हैं जितना कि पहले हम महसूस करते थे। तो आइए कैफी आजमी साहब के यादगार नगमों और खूबसूरत अल्फाज से शुरू करते हैं सुरों की पुरानी महफिल सिर्फ एफएम रेनबो 102.2 कानपुर से।

जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकलकर उन्होंने उर्दू शायरी और हिंदी फिल्म संगीत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कैफी आजमी की लेखनी में मोहब्बत की नजाकत भी थी और देशभक्त की गहराई भी। फिल्म हकीकत का गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों आज भी सुनते ही दिल में देश प्रेम की भावना जागा देती है। वहीं वक्त ने किया क्या हंसी सितम जैसे गीत मोहब्बत के एहसास को बेहद खूबसूरती से बयां करते हैं। और एक खूबसूरत बात यह भी कि इनकी शायरी में हमेशा इंसानियत और उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है। फिल्म लिखा कैफी आजमी ने, आवाज मोहम्मद रफी की, संगीत मदन मोहन का।

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल और आज का ये कार्यक्रम समर्पित है शायर कैफी आजमी को। दोस्तों, कैफी आजमी उन शायरों में थे जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत को नहीं लिखा, इन्होंने इंसान के दर्द, उम्मीद और समाज की सच्चाइयों को भी अपनी कलम की आवाज बनाया। कहा जाता है कि वो मानते थे शायरी सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक सच पहुंचाने का जरिया भी होनी चाहिए। इनकी नज्मों में एक अजीब सी सादगी थी, लेकिन वही सादगी सीधे दिल पर असर कर जाती थी। इन्होंने कभी शब्दों को भारी बनाने की कोशिश नहीं की बल्कि एहसासों को सच्चा रखा, और शायद इसी वजह से इनके लिखे गीत

आखिरी फिल्म का गीत लिखा कैफी आजमी ने और आवाज़ लता मंगेशकर की, और फिल्म आखिरी खत।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
3: वन जीरो टू पॉइंट टू एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है शायर कैफी आजमी को।

दोस्तों, कैफी आजमी साहब के यादगार अल्फाज और सदाबहार नगमों से सजी सुरों की पुरानी महफिल आज बस इतना ही कहती है। इनकी शायरी में हमें आज भी मोहब्बत, इंसानियत और उम्मीद के खूबसूरत मायने सिखा गए। उम्मीद है ये महफिल आपके दिल के किसी कोने को जरूर छू गई होगी। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सारिका शुक्ला। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, ब्रेक के उस पार मिलती हूं मदर्स डे स्पेशल रसबहार के साथ।

Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.

0: प्यार का पहला खुमार दिल को करता है बेकरार, आंखें ढूंढती हैं उसी को हर पल, कानों को रहता है उसकी आहट का इंतजार। आप सुन रहे हैं कानपुर का पहला प्यार FM रेनबो 102.2 कानपुर की दिल की धड़कन।
1: नमस्कार दोस्तों, 102.2 FM रेनबो कानपुर पर मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सारिका शुक्ला। जी हाँ, और आज का ये पूरा सफर समर्पित है उस रिश्ते को जिसके बिना जिंदगी की कोई सुबह पूरी नहीं होती, जिसके बिना घर सिर्फ दीवारें लगता है और जिसका नाम आते ही दिल अपने आप नरम पड़ जाता है। माँ।

कहते हैं ना, ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। और सच मानिए, हमारी जिंदगी का पहला स्कूल, पहली दोस्त, पहली डॉक्टर, पहली टीचर, सब कुछ माँ ही तो होती है। आज का ये पहला गीत उसी माँ के नाम।

102.2 एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और आज का ये प्रोग्राम मदर्स डे स्पेशल है। तो अगर आप भी अपनी माँ को विश करना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं इस 102.2 रेनबो कानपुर की फ्रिक्वेंसी पर, तो आप हमें अपने ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है airkansomedia@gmail.com।

0: दोस्तों, जब हम इस दुनिया में पहली बार आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले जो चेहरा हमें दिखाई देता है वो प्यार वाला चेहरा माँ का ही होता है। हम बोलना नहीं जानते, चलना नहीं जानते, लेकिन वो माँ होती है जो हमारे रोने की आवाज से समझ जाती है कि हमें भूख लगी है या डर लगा है या फिर हमें सिर्फ उनकी गोद चाहिए। वो खुद रात भर जागकर हमें चैन की नींद सुला जाती है। हमारी जरा सी छींक या खांसी तक उनकी चिंता बढ़ा देती है और शायद इसीलिए माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी हर तकलीफ से हमें हमारे लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ, हर तकलीफ से पहले वो आ जाती है और किसी ने माँ पर क्या खूब लिखा है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है।
1: तो फिर

वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती हैं। दोस्तों याद कीजिए स्कूल का वो पहला दिन जब हम रो रहे थे, लेकिन माँ मुस्कुराकर कह रही थी, कुछ नहीं होगा, जाओ मैं यही हूँ। सुबह जल्दी उठकर टिफिन बनाना, हमारी यूनिफॉर्म प्रेस करना, एग्जाम के दिनों में हमारे साथ देर रात तक जागना और रिजल्ट वाले दिन खुद हमसे ज्यादा नर्वस हो जाना, ये सिर्फ माँ ही तो कर सकती है। घर लौटते ही वो पहला सवाल, खाना खाया? और ये सवाल जिंदगी भर नहीं बदलता। मुनव्वर राणा ने माँ पर क्या खूब लिखा है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई।

जी हाँ, ऐसी ही शिकवा शिकायत करते हुए एक दिन हम बड़े हो जाते हैं। कॉलेज, नौकरी, करियर, सपने और जिंदगी की भागदौड़ में कहीं दूर निकल जाते हैं, लेकिन माँ वो वहीं रहती है, उसी दरवाजे पर, उसी इंतजार में, फोन की एक रिंग पर पूछने के लिए, थक गए हो क्या, खाना खाया। दोस्तों, हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, पर माँ के लिए हमेशा वही छोटे बच्चे रहते हैं। जिंदगी हर किसी को कभी ना कभी परखती जरूर है, कभी हार मिलती है, कभी अकेलापन तो कभी थकान, लेकिन ऐसे हर मोड़ पर अगर कोई बिना बोले हमारे साथ खड़ा होता है तो वो माँ होती है। वो हमें चाहे गिरने से ना रोके, पर गिरकर उठना जरूर सिखाती है। और शायद इसीलिए माँ सिर्फ रिश्ता नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। कहते हैं ना, चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया, ये नालायक विवेक बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक? अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो, आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
2: वही काम सब तो मैं ही करूंगा ना मामा, तो लाओ इधर। चलो मामा, जल्दी लगाओ।

मेरी माँ, प्यारी माँ मम्मा। दोस्तों, मदर्स डे सिर्फ माँ तक सीमित नहीं, ये दिन हर उस ममता के नाम है जो हमें बिना शर्त प्यार करना सिखाता है। वो दादी जो अपने हाथों से हमारे लिए गर्म रोटियां बनाती हैं, वो नानी जिनकी कहानियों में पूरा बचपन बसता है, या फिर वो हर महिला जो किसी बच्चे की जिंदगी में माँ यशोदा की तरह ममता, सुरक्षा और अपनापन भर देती है। तो आज का ये कार्यक्रम और आज का ये दिन उन सब के लिए एक खूबसूरत जश्न है, और सलाम उन सभी मदर्स को जो घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने बच्चे की मुस्कान, उसकी ज़रूरतें और उनकी खुशियां कभी नहीं भूलती। सच में दोस्तों, माँ सिर्फ रिश्ता नहीं, एक ऐसी ताकत है जो हर रूप में बस प्यार ही प्यार बांटती है। राहत इंदौरी ने क्या खूब लिखा है, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती।

जी हाँ, माँ ऐसी ही होती है, हर मुश्किल में हमें थाम लेती है। दोस्तों, मदर्स डे आते ही पूरा सोशल मीडिया जैसे भावनाओं से भर गया है। मोस्टली हर कोई अपनी माँ के साथ फोटो शेयर कर रहा है, किसी ने पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज निकाली तो कोई माँ के हाथ के खाने को याद कर रहा, कहीं माँ की मुस्कान है तो कहीं उनकी डांट में छुपा प्यार। दोस्तों, बॉलीवुड हमेशा इन चीज़ों के लिए जो शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, उनके लिए भी बहुत आगे रहता है। तो ऐसा ही एक इमोशनल पोस्ट और फोटो शेयर की है बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने। इन्होंने अपनी माँ के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है और साथ में लिखा है हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू, और साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि मेरी दुनिया है माँ, और साथ में इस गाने को इंक्लूड भी किया है। तो अगर आप भी अपनी माँ से कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें विश करना चाहते हैं, तो हमें अपनी मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aikansomedia@gmail.com। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और आज का ये प्रोग्राम समर्पित है हर माँ को। दोस्तों, सच कहूँ तो दुनिया में सारी मैच्योरिटी के बाद भी माँ के सामने आकर ना इंसान बच्चा ही बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने माँ के लिए क्या क्या किया, लेकिन अगर एक दिन बैठकर हिसाब करेंगे ना तो समझ आएगा कि उन्होंने तो बिना हिसाब के पूरी जिंदगी हमारे नाम कर दी। माँ सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो हर रोटी में अपना सुकून रखती है, हर दुआ में हमारी सलामती, और हर चिंता में हमारे आने वाले कल की चिंता। और सबसे प्यारी बात, माँ को महंगे गिफ्ट से ज्यादा बस ये सुनना अच्छा लगता है कि माँ आप अपना ख्याल रखना। कभी गौर कीजिएगा, घर में चाहे कितनी भी रोशनी क्यों ना हो, अगर माँ मुस्कुरा देना तो पूरा घर रोशनी से भर जाता है। दोस्तों, माँ वो किताब है जिसमें मोहब्बत का हर सबक बिना पढ़े समझ आता है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और आज इस कार्यक्रम को लेकर सारिका है आपके साथ।

दोस्तों आज का दिन बहुतों के लिए मुस्कुराहट लेकर आता है, लेकिन कुछ दिल ऐसे भी हैं जिनकी माँ आज उनके पास नहीं है। शायद उनकी आवाज अब सुनाई नहीं देती, लेकिन उनकी बातें आज भी कानों में गूंजती हैं। उनका हाथ सिर पर महसूस नहीं होता, लेकिन उनकी दुआएं आज भी हर मुश्किल में ढाल बनकर साथ चलती हैं। अगर आज आपकी आंखें नम हैं, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। आज आपकी हर फीलिंग, हर थॉट और एक एक हार्ट बीट के साथ है 102.2 रेनबो कानपुर। माँ कहीं भी हो दोस्तों, इस दुनिया में या सितारों के उस पार, माँ कभी दूर नहीं जाती। वो हमारी आदतों में रहती और सबसे ज्यादा हमारी दुआओं में रहती। जब भी जिंदगी थकती है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है जैसे माँ कह रही हो, घबराना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप।

दोस्तों, माँ वो छांव है जिसके होने से जिंदगी हमेशा ठंडी और खूबसूरत लगती है, जस्ट लाइक ए ट्री। तो दोस्तों, क्यों ना आज अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाया जाए, जैसा कि यूपी में एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम भी चल रही है, जहाँ लोग अपनी माँ के सम्मान में जीवन दायिनी पेड़ लगा रहे हैं, ताकि आने वाली हर सुबह में माँ की ममता की हरियाली महसूस हो सके। वैसे दोस्तों, आज का ये सफर बस एक दिन की बात नहीं, ये उन तमाम एहसासों का जश्न है जो हम रोज महसूस तो करते हैं लेकिन अक्सर कह नहीं पाते। दोस्तों, वक्त बीत जाता है, तस्वीरें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन माँ की ममता हर मौसम में नई लगती है। तो अगर आज मौका मिले तो अपनी माँ के पास बैठिए, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। आज दोस्तों मदर

0: डे के मौके पर सोचने वाली बात उन वृद्धाश्रमों की भी है, जहां कई माएं ऐसी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार दी, लेकिन आज वही बच्चे उन्हें अकेला छोड़ आए। किसी की आंखें आज भी दरवाजे पर टिक जाती हैं कि शायद आज उनका बच्चा उनसे मिलने आए। और सच कहें तो वृद्धाश्रम में सबसे ज्यादा जो चीज सुनाई देती है वो खामोशी नहीं बल्कि इंतजार है। तो अगर आप जो आपकी माँ आपके साथ है तो उन्हें थोड़ा सा वक्त जरूर दें, उनकी बातें सुने, और अगर हो सके तो किसी वृद्धाश्रम जाकर कुछ पल वहां की माओं के साथ भी बिताइए। आपका थोड़ी देर बैठकर मुस्कुरा देना भी किसी माँ के चेहरे पर खुशी ला सकता है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और आज का ये प्रोग्राम हर माँ को समर्पित है।
1: सुर में गाना सीखिए AI powered personal music।

माँ के कदमों के निशान हैं कि दिए रोशन हैं, माँ के कदमों के निशान हैं कि दिए रोशन हैं, गौर से देख यहीं पर कहीं जन्नत होगी। इन्हीं खूबसूरत एहसासों माँ की दुआओं के साथ दीजिए इजाजत सारिका शुक्ला को मदर्स डे स्पेशल रस बहार से। गाने के उस पार मिलती हूँ पॉप टाइम के साथ।

0: Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.
1: वन जीरो टू पॉइंट टू FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप. बारी है विविधा की. विविधा के अंतर्गत लीजिए सुनिए कार्यक्रम पॉप टाइम.

0: इसी पॉप गीत के साथ दीजिए इजाजत, कार्यक्रम पॉप टाइम से ब्रेक के उस पार ले चलेंगे कुछ खबरों के लिए।
1: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
0: हमारी अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत परिवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले के बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल हैं। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में 1 बच्चा और 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहे एक टैंकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गया, जिसमें 3 लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आईपीएल क्रिकेट में कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को

77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 152 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के लिए रशीद खान ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल में आज चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम मोर पंख। अपरिचित सुप्रसिद्ध लेखक नाटककार उपन्यासकार मोहन राकेश की कहानी। वाचन संपादन और प्रस्तुति है सुरेंद्र राजेश्वरी जी की।

मोर पंख के आज की इस घड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओं, आइए आज आपको सुनवाते हैं सुप्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार, नाटककार मोहन राकेश की लिखी हुई एक कहानी, जिसका शीर्षक है अपरिचित।

कोहरे की वजह से खिड़कियों के शीशे धुंधले पड़ गए थे। गाड़ी 40 की रफ्तार से सुनसान अंधेरे को चीरती चली जा रही थी। खिड़की से सिर सटाकर भी बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर भी मैं देखने की कोशिश कर रहा था। कभी किसी पेड़ की हल्की गहरी रेखा ही गुजरती नजर आ जाती तो कुछ देख लेने का संतोष होता। मन को उलझाए रखने के लिए इतना ही काफी था। आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। गाड़ी को जाने कितनी देर बाद कहीं जाकर रुकना था। जब और कुछ दिखाई न देता तो अपना प्रतिबिंब तो कम से कम देखा ही जा सकता था। अपने प्रतिबिंब के अलावा और भी कई प्रतिबिंब थे। ऊपर की बर्थ पर सोए व्यक्ति का प्रतिबिंब अजब बेबसी के साथ हिल रहा था। सामने बर्थ पर बैठी स्त्री का प्रतिबिंब बहुत उदास था। उसकी भारी पल गई, पल भर के लिए ऊपर उठती फिर झुक जाती। आकृतियों के अलावा कई बार नई नई आवाजें ध्यान बढ़ा देती जिससे पता चलता गाड़ी पुल से जा रही है या मकानों की कतार के पास से गुजर रही है। बीच में सहसा

जन की चीख सुनाई दे जाती, जिससे अंधेरा और एकांत और गहरे महसूस होने लगते। मैंने घड़ी में वक्त देखा, 11:15 बजे थे। सामने बैठी स्त्री की आंखें बहुत सुनसान थी, बीच बीच में उनमें एक लहर सी उठती और विलीन हो जाती। वो जैसे आंखों से देख नहीं रही थी, सोच रही थी। उसकी बच्ची, जिसे फर के कंबलों में लपेट कर सुलाया गया था, जरा जरा कुनमुनाने लगी। उसकी गुलाबी टोपी सिर से उतर गई थी। उसने दो एक बार पैर पटके, अपनी बधी हुई मुठ्ठियां ऊपर उठाई और रोने लगी। स्त्री की सुनसान आंखें सहसा उमड़ आईं। उसने बच्चे के सिर पर रखी टोपी ठीक कर दी और उसे कंबलों समेत उठाकर छाती से लगा लिया। मगर इससे बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। उसने उसे हिलाकर और दुलारकर चुप कराना चाहा, मगर वो फिर भी रोती रही। इस पर उसने कंबल थोड़ा हटाकर बच्चे के मुंह में दूध दे दिया और उसे अच्छी तरह अपने साथ सटा लिया। मैं फिर खिड़की से सिर सटाकर बाहर देखने लगा। दूर बत्तियों की कतार नजर आ रही थी, शायद कोई आबादी थी या सिर्फ सड़क ही थी। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी और इंजन बहुत पास होने से कोहरे के साथ धुआं भी खिड़की के शीशों पर जमता जा रहा था। आबादी या सड़क, जो भी वो थी, अब धीरे धीरे पीछे रही जा रही थी। शीशे में दिखाई देते प्रतिबिंब पहले से गहरे हो गए थे। स्त्री की आंखें मूंद गई थी और ऊपर लेटी व्यक्ति की बांह जोर जोर से हिल रही थी। शीशे पर मेरी सांस के फैलने से प्रतिबिंब और धुंधले हो गए, यहां तक कि धीरे धीरे सब प्रतिबिंब अदृश्य हो गए। मैंने तब रुमाल निकालकर शीशे को अच्छी तरह पोंछ दिया। स्त्री ने आंखें खोल ली थी और एकटक सामने देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी रेखा फैली थी, जो ठीक मुस्कुराहट नहीं थी। मुस्कुराहट से बहुत कम व्यक्त उस रेखा में कहीं गंभीरता भी थी और अवसाद भी, जैसे वह अनायास उभर आई किसी स्मृति की रेखा थी। उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न पड़ गई थी। बच्चे जल्दी ही दूध से हट गई। उसने सिर उठाकर अपना बिना दांत का मुंह खोल दिया और किलकारी भरती हुई मां की छाती पर मुट्ठियों से चोट करने लगी। दूसरी तरफ से आती एक गाड़ी तेज रफ्तार से पास से गुजरी तो वो जरा सहम गई, मगर गाड़ी के निकलते ही और भी मुंह खोलकर किलकारी भरने लगी। बच्ची का चेहरा गदराया हुआ था और उसकी टोपी के नीचे से भूरे रंग के हल्के हल्के बाल नजर आ रहे थे। उसकी नाक जरा छोटी थी पर आंखें मां की ही तरह गहरी और फैली हुई थी। मां के गाल और कपड़े नोचकर उसकी आंखें मेरी तरफ घूम गई और वो बाहें हवा में पटकती हुई मुझे अपनी कीलकारियों का निशाना बनाने लगी। स्त्री की पलकें उठी और उसकी उदास आंखें क्षण भर मेरी आंखों से मिली रही। मुझे उस क्षण भर के लिए लगा कि मैं एक ऐसे क्षितिज को देख रहा हूं जिसमें गहरी सांच के सभी हल्के गहरी रंग झिलमिला रहे हैं। बच्चे मेरी तरफ देखकर बहुत हाथ पटक रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, आओ बेटा आओ। मेरे हाथ पास आ जाने से बच्चे के हाथों का हिलना बंद हो गया और उसके होंठ रुआंसे हो गए। स्त्री ने बच्चे के होंठों को अपने होंठों से छुआ और कहा, जा बिट्टू, जाएगी उनके पास। लेकिन बिट्टू के होंठ और रुआंसे हो गए और वो माँ के साथ सट गई। गैर आदमी से डरती है, मैंने मुस्कुरा कर कहा और हाथ हटा लिए। स्त्री के होंठ भींच गए और माथे की खाल में थोड़ा खिंचाव आ गया। उसकी आंखें जैसे अतीत में चली गईं, फिर सहसा वहां से लौट आई और वो बोली, नहीं डरती नहीं है, इसे दरअसल आदत नहीं है। यह आज तक या तो मेरे हाथों में रही या नौकरानी के। और वो उसके सिर पर झुक गई। बच्ची उसके साथ सटकर आंखें चपकने लगी। महिला उसे हिलाती हुई थपकियां देने लगी। बच्चे ने आंखें मूंद ली। महिला उसकी तरफ देखती हुई जैसे चूमने के लिए होंठ बढ़ाए उसे थपकियां देती रही। फिर एकाएक उसने झुककर उसे चूम लिया। बहुत अच्छी है हमारे बिट्टू, झट से सो जाती है, ये उसने जैसे अपने से कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उदास सा उत्साह भर रहा था। कितनी बड़ी है बच्ची, मैंने पूछा। 10 दिन बाद पूरे 4 महीने की हो जाएगी, वो बोली, पर देखने में भी उससे छोटी लगती है।
मैंने

आंखों से उसकी बात का समर्थन किया। उसके चेहरे में एक अपनी सी सहजता थी, विश्वास और सादगी की। मैंने सोए ही बच्चे के गाल को जरा सा सहला दिया। स्त्री का चेहरा और भावपूर्ण हो गया। लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है, वो बोली। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी आंखें उसके चेहरे से हट गईं। बिजली की बत्ती के पास एक कीड़ा उड़ रहा था। मेरे? मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। अभी तो कोई नहीं, मगर मतलब ब्याह हुआ है, अभी बच्चे बच्चे नहीं हैं। वो मुस्कुराई। आप मर्द लोग तो बच्चों से बचे ही रहना चाहते हैं ना? मैंने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, नहीं ये बात नहीं है, हमारे ये तो बच्चे को छूते भी नहीं। वो बोली, कभी दो मिनट के लिए भी उठाना पड़ जाए तो झल्लाने लगते हैं। अब तो खैर वो इस मुसीबत से छूटकर बाहर ही चले गए हैं। और सहसा उसकी आंखें छलछला आईं। रुलाई की वजह से उसके होंठ बिल्कुल उस बच्चे जैसे हो गए थे। फिर सहसा उसके होंठों पर मुस्कुराहट लौट आई, जैसा अक्सर सोए ही बच्चों के साथ होता है। उसने आंखें झपकर अपने को सहेज लिया और बोली, वो डॉक्टरेट के लिए इंग्लैंड चले गए हैं। मैं उन्हें मुंबई में जहाज पर चढ़ा कर आ रही हूँ। वैसे 6-8 महीने की तो बात है, फिर मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। फिर उसने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे उसे शिकायत हो कि मैंने उसकी इतनी व्यक्तिगत बात उससे क्यों जान ली। आप बाद में अकेली जाएंगी? मैंने पूछा। इससे तो आप अभी साथ चली जाती? उसके होंठ से सिकुड़ गए और आंखें फिर अंतर्मुख हो गईं। वो कई पल अपने में डूबी रही और उसी भाव से बोली, साथ तो नहीं जा सकती थी क्योंकि अकेले उनके जाने की भी सुविधा नहीं थी, लेकिन उनको मैंने किसी तरह भेज दिया। चाहती थी कि उनके कोई तो चाह मुझसे पूरी हो जाए। देशी के बाहर जाने की बहुत इच्छा थी। अब 6-8 महीने में अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसा बचाऊंगी और थोड़ा बहुत कहीं से उधार लेकर अपने जाने का इंतजाम करूंगी। उसने सोच में डूबती उतराती अपनी आंखों को सहसा सचेत कर लिया और फिर कुछ क्षण शिकायत की नज़र से मुझे देखती रही। फिर बोली, अभी बिट्टू भी बहुत छोटी है ना, 6-8 महीने में ये बड़ी हो जाएगी और मैं भी तब तक थोड़ा और पढ़ लूँगी। दीशी की बहुत इच्छा है कि मैं MA कर लूँ, मगर मैं ऐसी जड़ और नकारा हूँ, उनकी कोई भी चाह पूरी नहीं कर पाती। इसलिए इस बार उन्हें भेजने के लिए मैंने अपने सब गहने बेच दिए हैं। अब मेरे पास बस मेरी बिट्टू है और कुछ नहीं।

बाहर वही सुनसान अंधेरा था, वही लगातार सुनाई देते इंजन के भक भक। शीशे से आंख गड़ा लेने पर भी दूर तक वीरानगी ही वीरानगी नजर आती थी, मगर उस स्त्री की आंखों में जैसे दुनिया भर की वत्सलता सिमट आई थी। वो फिर कई क्षण अपने में डूबी रही, फिर उसने एक उसास ली, बच्ची को अच्छी तरह कंबल में लपेट कर सीट पर लेटा दिया। ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ आदमी खर्राटे भर रहा था। एक बार करवट बदलते हुए वो नीचे गिरने को हुआ, पर सहसा हड़बड़ाकर संभल गया। फिर कुछ ही देर में वो और जोर से खर्राटे भरने लगा। लोगों को जाने सफर में कैसे इतनी गहरी नींद आ जाती है, वो स्त्री बोली। मुझे दो दो रातें सफर करना हो तो भी मैं एक पल नहीं सो पाती, अपनी अपनी आदत होती है। हाँ, आदत की ही बात है, मैंने कहा। कुछ लोग बहुत निश्चिंत होकर जीते हैं और कुछ होते हैं कि बगैर चिंता के जी ही नहीं सकते। और वह हंसती, उसके हंसी का स्वर भी बच्चों जैसा ही था। उसके दांत बहुत छोटे छोटे और चमकीले थे। मैंने भी उसकी हंसी में साथ दिया। मेरी बहुत खराब आदत है, वो बोली, मैं बात बेबात के सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। ये मुझसे कहते हैं कि मुझे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, खुलकर हंसना और बात करना चाहिए, मगर इनके सामने मैं ऐसे गुमसुम हो जाती हूँ कि क्या कहूँ। वैसे और लोगों से भी मैं ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन इनके सामने तो ऐसी चुप्पी छा जाती है जैसे मुंह में जबान ही नहीं है। अब देखे ना, इस वक्त कैसे लतर लतर बात कर रही है। और वो मुस्कुराई, उसके चेहरे पर हल्की सी संकोच की रेखा आ गई। रास्ता काटने के लिए बात करना जरूरी हो जाता है, मैंने कहा, खासतौर से तब जब नींद ना आ रही हो। उसकी आंखें पल भर फैली रही, फिर वो गर्दन जरा झुकाकर बोली, ये कहते हैं कि जिसके मुंह में जबान ही ना हो उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे काटी जा सकती है। ऐसे इंसान में और एक पालतू जानवर में क्या फर्क है। मैं हजार चाहती हूँ कि इन्हें खुश दिखाई दूं और इनके सामने कोई ना कोई बात करती रहूं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। इन्हें फिर गुस्सा आ जाता है और मैं रो देती हूँ। इन्हें मेरा रोना बहुत बुरा लगता है, ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक आए, जिन्हें उसने अपनी साड़ी के पल्ले से पोंछ लिया। मैं बहुत पागल हूँ, वो फिर बोली, ये जितना मुझे टोकते हैं ना, मैं उतना ही ज्यादा रोती हूँ। दरअसल ये मुझे समझ ही नहीं पाते, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, फिर जाने क्यों ये मुझे बात करने के लिए मजबूर करते हैं। और फिर माथे को हाथ से दबाई हुई बोली, आप भी अपनी पत्नी से जबरदस्ती बात करने के लिए कहते हैं। मैंने पीछे टेक लगाकर कंधे से कोड़ लिए और हाथ बगलों में दबाई बत्ती के पास उड़ते कीड़े को देखने लगा। फिर सिर को जरा सा झटक कर मैंने उसकी तरफ देखा। वो उत्सुक नजर से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे ये कहने का कभी मौका ही नहीं मिल पाता। मैं बल्कि 5 साल से ये चाह रहा हूँ कि वो जरा कम बात किया करे। मैं समझता हूँ कि कई बार इंसान चुप रहकर ज्यादा बात कह जाता है। जबान से कही बात में वो रस नहीं होता जो आंख की चमक से या होंठों के कंपन से या माथे के एक लकीर से कही गई बात में होता है। मैं जब उसे समझाना चाहता हूँ तो मुझे विस्तार पूर्वक बता देती है कि ज्यादा बात करना इंसान की निश्चलता का प्रमाण है और कि मैं इतने सालों में अपने प्रति उसकी भावना को समझ ही नहीं सका। वो दरअसल कॉलेज में एक लेक्चरर है और अपनी आदत की वजह से घर में भी लेक्चर देती रहती है। वो थोड़ी देर दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाए रही, फिर बोली, ऐसा क्यों होता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। मुझे देशी से यही शिकायत है कि वो मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं कई बार उनके बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर उनसे बात करना चाहती हूँ, कई बार उसके घुटनों पर सिर रखकर मुदी हुई आंखों से उनसे कितना कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ये सब गुड़ियों का खेल है, उनकी पत्नी को जीता जागता इंसान होना चाहिए और मैं इंसान बनने की बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं बन पाती, कभी नहीं बन पाती। इन्हें मेरी कोई आदत अच्छी लगती ही नहीं है। मेरा मन होता है कि चांदनी रात में खेतों में घूमूं या नदी में पैर डालकर घंटों

ये कहते हैं ये सब आइडल मन की वृत्तियां हैं। इन्हें क्लब, संगीत सभाएं और डिनर पार्टी अच्छी लगती है। मैं इनके साथ वहां जाती हूं तो मेरा दम घुटने लगता है, मुझे वहां जरा भी अपनापन महसूस नहीं होता। ये कहते हैं कि तू पिछले जन्म में मेढकी थी, तुझे क्लब में बैठने के बजाय खेतों में मेढकों की आवाजें सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि मैं इस जन्म में भी मेढकी हूँ, मुझे बरसात में भीगना बहुत अच्छा लगता है और भीग कर मेरा मन कुछ न कुछ गुनगुनाने को करने लगता है।

उस थोड़े से समय में ही मुझे उसके चेहरे का उतार चढ़ाव काफी परिचित लगने लगा था। उसकी बात सुनते ही मेरे मन पर हल्की उदासी छाने लगी। हालांकि मैं जानता था कि वो कोई भी बात मुझसे नहीं कर रही है, वो अपने से बात करना चाहती है और मेरी मौजूदगी उसके लिए सिर्फ एक बहाना है। मेरी उदासी भी उसके लिए ना होकर अपने लिए थी, क्योंकि बात उससे करते हुए भी मुख्य रूप से मैं सोच अपने विषय में रहा था। मैं 5 साल से मंजिल दर मंजिल विवाहित जीवन से गुजरता आ रहा था, रोज यही सोचते हुए कि शायद आने वाला कल जिंदगी के इस ढांचे को बदल देगा। सतह पर हर चीज ठीक थी, कहीं कुछ गलत नहीं था, मगर सतह से नीचे जीवन कितनी उलझनों और गांठों से भरा था। मैंने विवाह के पहले दिनों में ही जान लिया था कि नलिनी मुझसे विवाह करके सुखी नहीं हो सकी, क्योंकि मैं उसकी कोई भी महत्वाकांक्षा पूरी करने में सहायक नहीं हो सकता। वो एक भरा पूरा घर चाहती थी जिसमें उसका शासन हो और ऐसा सामाजिक जीवन जिसमें उससे महत्व का दर्जा प्राप्त हो। वो अपने से स्वतंत्र अपने पति के मानसिक जीवन की कल्पना नहीं करती थी। उसे मेरी भटकने की वृत्ति और साधारण का मोह मानसिक विकृतियां लगती थी, जिन्हें वो अपने अधिक स्वस्थ जीवन दर्शन से दूर करना चाहती थी। उसने इस विश्वास के साथ जीवन आरंभ किया था कि वो मेरी त्रुटियों की क्षतिपूर्ति करती हुई बहुत शीघ्र मुझे सामाजिक दृष्टि से सफल व्यक्ति बनने की दिशा में ले जाएगी। उसकी दृष्टि में ये मेरे संस्कारों का दोष था जो मैं इतना अंतर्मुख रहता था और इधर उधर मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करता था। वो इस परिस्थिति को सुधारना चाहती थी, पर परिस्थिति सुधरने की जगह और बिगड़ती चली गई। वो जो कुछ चाहती थी वो मैं नहीं कर पा रहा था और जो कुछ मैं चाहता था वो उससे होता नहीं था। इससे हम में अक्सर चकचक होने लगती थी और कई बार दीवारों से सर टकराने की नौबत आ गई थी। मगर यह सब हो चुकने पर नलिनी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाती थी और उसे फिर मुझसे ये शिकायत होती थी कि मैं 2-2 दिन अपने को उन साधारण घटनाओं के प्रभाव से मुक्त क्यों नहीं कर पाता। मगर मैं 2-2 दिन क्या, कभी उन घटनाओं के प्रभाव से मुक्त ही नहीं हो पाता। और रात को जब वो सो जाती थी तो घंटों तकिए में मुंह छिपाए कराहता रहता था। नलिनी आपसी झगड़े को उतना अस्वाभाविक नहीं समझती थी जितना मेरे रात भर जागने को, और उसके लिए मुझे नर्व टॉनिक लेने की सलाह दिया करती थी। विवाह के पहले 2 वर्ष इसी तरह बीते थे और उसके बाद हम अलग अलग जगह काम करने लगे। हालांकि ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रही और जब भी हम इकट्ठे होते वही पुरानी जिंदगी लौट आती थी। फिर भी नलिनी का यह विश्वास अभी कम नहीं हुआ था कि कभी न कभी मेरे सामाजिक संस्कारों का उदय अवश्य होगा और तब हम साथ रहकर सुखी विवाहित जीवन व्यतीत करेंगे। आप कुछ सोच रहे हैं, उस स्त्री ने अपनी बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैंने सहसा अपने को सहेजा और कहा, हाँ मैं आप ही की बात को लेकर सोच रहा था। कुछ लोग होते हैं जिनसे दिखावटी शिष्टाचार आसानी से नहीं उड़ा जाता, आप भी शायद उन्हीं लोगों में से हैं। मैं नहीं जानती, वो बोली, मैं इतना जानती हूँ कि मैं बहुत से परिचित लोगों के बीच अपने को अपरिचित, बेगाना और अनमेल अनुभव करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है। मैं इतनी बड़ी होकर भी वो कुछ नहीं जान समझ पाई जो लोग छुटपन में ही सीख जाते हैं। देशी का कहना है कि मैं सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल मिसफिट हूँ। आप भी यही समझती हैं, मैंने पूछा। कभी समझती हूँ, कभी नहीं भी समझती, वो बोली। एक खास तरह के समाज में मैं जरूर अपने को मिसफिट अनुभव करती हूँ, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बीच जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्याह से पहले मैं 2-1 बार कॉलेज की पार्टियों के साथ पहाड़ों पर घूमने चली गई थी। वहां सब लोगों को मुझसे यही शिकायत होती थी कि मैं जहां बैठ जाती हूँ वहीं की हो रहती हूँ। मुझे पहाड़ी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मैं उनके घर के लोगों से भी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती। एक पहाड़ी परिवार की मुझे आज तक याद है। उस परिवार के बच्चे मुझसे इतना घुल मिल गए थे कि मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें छोड़कर यहाँ चली आई। मैं कुल 2 घंटे उन लोगों के पास रही। 2 घंटे में मैंने उन्हें नहलाया धुलाया भी और उनके साथ खेलती भी रही। बहुत ही अच्छे बच्चे थे वो। हाय, उनके चेहरे इतनी लाल थे कि क्या कहूँ। मैंने उनकी माँ से कहा कि वो अपने छोटे लड़के कृष्णु को मेरे साथ भेज दे। वो हंसकर बोली कि तुम सभी को ले जाओ, यहाँ कौन इसके लिए मोती रखे हैं, यहाँ तो 2 साल में

इसकी हड्डियां निकल आएंगी, वहां खा पीकर अच्छे तो रहेंगे कम से कम। मुझे उसकी बात सुनकर रुलाई आने को हुई। मां अकेले होती तो शायद कई दिनों के लिए उन लोगों के पास रह जाती। ऐसे लोगों में जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो आपको भी लग रहा होगा कि कितने अजीब हूं मैं ना। ये कहा करते हैं कि मुझे किसी अच्छे मनोविद से अपना विश्लेषण कराना चाहिए, नहीं तो किसी दिन मैं पागल होकर पहाड़ों पर भटकती फिरूंगी। ये तो अपने अपनी बनावट की बात है, मैंने कहा। मुझे खुद आदिम संस्कारों के लोगों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज तक एक जगह घर बनाकर नहीं रह सका और नहीं आशा है कि कभी रह सकूंगा। मुझे अपनी जिंदगी की जो रात सबसे ज्यादा याद आती है, वो रात मैंने पहाड़ी गुजरों की एक बस्ती में बिताई थी। उस रात उस बस्ती में एक ब्याह था, इसलिए सारी रात वो लोग नाचते रहे, गाते रहे।

आपको सचमुच हर तरह की जिंदगी अच्छी लगती है? उसने कुछ आश्चर्य और अविश्वास के साथ पूछा। आपको शायद खुशी हो रही है कि पागल होने के उम्मीदवार आप अकेले ही नहीं हैं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वो भी मुस्कुराई, उसकी आंखें भावनापूर्ण हो उठी। उस एक क्षण में मुझे उन आंखों में न जाने कितना कुछ दिखाई दिया, करुणा, क्षोभ, ममता, आर्द्रता, ग्लानी, भय, असमंजस और स्नेह। उसके होंठ कुछ कहने के लिए कांपे, लेकिन कांप कर ही रह गए। मैं भी चुपचाप उसे देखता रहा। कुछ क्षणों के लिए मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है और मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था और आगे क्या करना चाहता था। सहसा उसकी आंखों में फिर वही सोनापन भरने लगा और क्षण भर में ही वो इतना बढ़ गया कि मैंने उसकी तरफ से आंखें हटा ली। बत्ती के पास उड़ता कीड़ा उसके साथ सटकर झुलस गया था। बच्ची नींद में मुस्कुरा रही थी। खिड़की के शीशे पर इतनी धुंध जमा हो गई थी कि उसमें अपना चेहरा भी दिखाई नहीं देता। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो रही थी, कोई स्टेशन आ रहा था। दो एक बत्तियां तेजी से निकल गईं। मैंने खिड़की का शीशा उठा दिया। बाहर से आती बर्फानी हवा के स्पर्श से स्नायुओं को थोड़ा सचेत कर दिया। गाड़ी एक बहुत नीचे प्लेटफॉर्म के पास आकर खड़ी हो रही थी। यहां कहीं थोड़ा पानी मिल जाएगा, मैंने चौंककर देखा कि वो अपनी टोकरी में से कांच का गिलास निकालकर अनिश्चित भाव से हाथ में लिए है। उसके चेहरे की रेखाएं पहले से गहरी हो गई थी। पानी आपको पीने के लिए चाहिए? मैंने पूछा। हाँ, कुल्ला करूंगी और पियूंगी भी। न जाने क्यों होंठ कुछ चपक से रहे हैं। बाहर इतनी ठंड है, फिर भी देखता हूं अगर यहां कोई नलवल हो तो। मैंने गिलास उसके हाथ से ले लिया और जल्दी से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। न जाने कैसा मनहूस स्टेशन था कि कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही हवा के झोंकों से हाथ पैर सुन्न होने लगे। मैंने कोट के कॉलर ऊंची कर लिए। प्लेटफॉर्म के जंगली के बाहर से फैलकर ऊपर आए दो एक पेड़ हवा में सरसरा रहे थे। इंजन के भाप छोड़ने से लंबे शूं की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद वहां गाड़ी सिग्नल न मिलने की वजह से रुक गई थी। दूर कई डिब्बे के पीछे एक नल दिखाई दिया, तो मैं तेजी से उस तरफ चल दिया। ईंटों के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते का शब्द मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने चलते चलते गाड़ी की तरफ देखा, किसी खिड़की से कोई चेहरा बाहर नहीं झांक रहा था। मैं नल के पास जाकर गिलास में पानी भरने लगा, तभी हल्के से सीटी देकर गाड़ी एक झटके के साथ चल पड़ी। मैं भरा हुआ पानी का गिलास लिए अपने डब्बे की तरफ दौड़ा। दौड़ते हुए मुझे लगा कि मैं उस डब्बे तक नहीं पहुंच पाऊंगा और सर्दी में उस अंधेरे और सुनसान प्लेटफॉर्म पर ही मुझे बिना सामान के रात बितानी होगी। ये सोचकर मैं और तेज दौड़ने लगा। किसी तरह अपने डब्बे के बराबर पहुंच गया। दरवाजा खुला था और वो दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर गिलास मुझसे ले लिया। फुटबोर्ड पर चढ़ते हुए एक बार मेरा पैर जरा सा फिसला, मगर अगले ही क्षण मैं स्थिर होकर खड़ा हो गया। इंजन तेज होने की कोशिश में हल्के हल्के झटके दे रहा था और ईंटों के प्लेटफॉर्म की जगह अब नीचे स्पष्ट गहराई दिखाई देने लगी थी। अंदर आ जाइए, उसके ये शब्द सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे फुटबोर्ड से आगे भी कहीं जाना है। डब्बे के अंदर कदम रखा तो मेरे घुटने जरा जरा कांप रहे थे। अपनी जगह पर आकर मैंने टांगे सीधे करके पीछे टेक लगा ली। कुछ पल बाद आंखें खोली तो लगा कि वो इस बीच मुंह धो आई है। फिर भी उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा रही थी। मेरे होंठ सूख रहे थे, फिर भी मैं थोड़ा मुस्कराया। क्या बात है, आपका चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पूछा। मैं कितनी मनहूस हूं, कहकर उसने अपना निचला होंठ जरा सा काट लिया। क्यों, अभी मेरी वजह से आपको कुछ हो जाता तो? ये खूब सोचा आपने। नहीं, मैं हूं ही ऐसी, वो बोली। जिंदगी में हर एक को दुख ही तो दिया है, अगर कहें आप ना चढ़ पाते तो? उसने होंठ जरा सिकोड़े। तो मुझे पता नहीं, पर

खामोश होकर आंखें झुका ली। मैंने देखा कि उसकी सांस जल्दी जल्दी चल रही है। महसूस किया कि वास्तविक संकट की अपेक्षा कल्पना का संकट कितना बड़ा और खतरनाक होता है। शीशा उठा रहने से खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने खींचकर शीशा नीचे कर दिया। आप क्यों गए पानी लाने के लिए? आपने मना क्यों नहीं कर दिया? उसने पूछा। उसके पूछने के लहजे से मुझे हंसी आ गई। आप ही ने तो कहा था। मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ भी कह देती हूँ। आपको तो सोचना चाहिए था ना। अच्छा, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इससे उसके मुरझाए होंठ पर भी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, आप भी कहेंगे कैसी लड़की है, उसने आंतरिक भाव के साथ कहा। सच कहती हूँ, मुझे जरा भी अक्ल नहीं। इतनी बड़ी हो गई हूँ पर अक्ल रत्ती भर नहीं। सच, मैं फिर हंस दिया। आप क्यों हंस रहे हैं? उसके स्वर में फिर शिकायत का स्पर्श आ गया। मुझे हंसने की आदत है, मैंने कहा। हंसना अच्छी आदत नहीं है, मुझे इस पर फिर हंसी आ गई। वो शिकायत भरी नज़र से मुझे देखती रही। गाड़ी की रफ्तार फिर तेज हो गई। ऊपर की बर्थ पर लेटा आदमी सहसा हड़बड़ाकर उठ बैठा और जोर जोर से खांसने लगा। खांसी का दौरा शांत होने पर उसने कुछ पल छाती को हाथ से दबाए रखा, फिर भारी आवाज में पूछा, क्या वजह है? 12:15। मैंने उसकी तरफ देखकर उत्तर दिया। कुल 12:15, उसने निराश स्वर में कहा और फिर लेट गया। कुछ ही देर में वो फिर खर्राटे भरने लगा। आप भी थोड़ी देर सो जाइए, वो पीछे टेक लगाए शायद कुछ सोच रही थी या केवल देख रही थी। आपको नींद आ रही है ना, आप सो जाइए, मैंने कहा। मैंने आपसे कहा था कि मुझे गाड़ी में नींद नहीं आती, आप सो जाइए। मैंने लेटकर कंबल ले लिया। मेरी आंखें देर तक ऊपर की बत्ती को देखती रहीं, जिसके साथ झुलसा हुआ कीड़ा चिपक कर रह गया था। रजाई भी ले लीजिए, काफ़ी ठंड है, उसने कहा। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत से गर्म कपड़े पहने हूँ। ले लीजिए। नहीं, बाद में ठिठुरते रहिएगा। नहीं, ठिठुरूंगा नहीं, मैंने कंबल गले तक लपेटते हुए कहा। और थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होती रहे तो अच्छा लगता है। बत्ती बुझा दूं? कुछ देर बाद उसने पूछा। नहीं, रहने दीजिए। नहीं, बुझा देती हूँ, ठीक से सो जाइए। और उसने उठकर बत्ती बुझा दी। मैं काफ़ी देर अंधेरे में छत की तरफ देखता रहा। फिर मुझे नींद आने लगी। शायद रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी जब इंजन के भौंपों की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो आवाज़ कुछ ऐसी भारी थी कि मेरे सारे शरीर में एक झुरझुरी सी भर गई। पिछले किसी स्टेशन पर इंजन बदल गया था। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी तो मैंने सिर थोड़ा ऊंचा उठाया। सामने की सीट खाली थी। वो स्त्री न जाने किस स्टेशन पर उतर गई थी। इसी स्टेशन पर न उतरी हो, ये सोचकर मैंने खिड़की का शीशा उठा दिया और बाहर देखा। प्लेटफॉर्म बहुत पीछे रह गया था और बत्तियों की कतार के सिवा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने शीशा फिर नीचे खींच लिया। अंदर की बत्ती अब भी बुझी हुई थी। बिस्तर में नीचे को सरकते हुए मैंने देखा कि कंबल के अलावा मैं अपने रजाई भी लिए हूँ, जिसे अच्छी तरह कंबल के साथ मिला दिया गया है। गर्मी की कई एक सिहरनें एक साथ शरीर में भर गईं।

अपरिचित। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार मोहन राकेश की लिखी हुई ये कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। अब मोर पंख के इस कार्यक्रम से सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोर पंख। अपरिचित सुप्रसिद्ध लेखक, नाटककार, उपन्यासकार मोहन राकेश की कहानी। वाचन, संपादन और प्रस्तुति थी सुरेंद्र राजेश्वरी जी की।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर आप विनय के साथ, और आप जानते हैं कि आज है दिन रविवार। हेल्थ एंड फिटनेस का विशेष कार्यक्रम हम आपके लेकर आते हैं दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच, और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, डायबिटीज़ एवं हाइपरटेंशन। और इस विषय पर आप हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद रहेंगे दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद तौफीक खान जी, जो कि MBBS MD हैं मेडिसिन विभाग से। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर है 0522 2238 852, और दूसरा नंबर है 0522 2238 845। इसी के साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं FM रेनबो हेल्पलाइन, दूसरा हमारी मेल ID है FM आकाशवाणी लखनऊ@gmail.com। तो इस कार्यक्रम से जुड़ना ना भूलें।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़ी की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के प्रवक्ता संवर्ग के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का 2रा चरण जारी है। आज की पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कल शाहजहांपुर में शहर की ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य मार्गों पर दुकानों के बाहर सामान रखने और अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री खन्ना ने कहा कि रात 10 बजे के बाद DJ बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी नियम न मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में रेडी ठेला संचालकों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। उत्तर मध्य रेलवे के जौनपुर सेक्शन में चल रहे तकनीकी और रखरखाव कार्य के कारण मानिकपुर जंक्शन से गुजरने वाली 3 ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। इनमें सुपरफास्ट ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस और एक विशेष ट्रेन शामिल है। मानिकपुर स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक शिवेश मालवीय ने बताया कि ये ट्रेनें मानिकपुर जंक्शन के बजाय ओहन बांसा बाईपास मार्ग से चित्रकूट, बांदा और कानपुर होते हुए प्रयागराज की ओर जाएंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और रूट की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगह।
0: रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
4: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
5: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki. जब स्वास्थ्य साथ होता है तो हर सपना आसान लगता है, लेकिन जब यही सेहत साथ छोड़ दे तो जिंदगी कठिन परीक्षा बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 100.7 MHz पर आपका वीकली हेल्थ शो हेल्थ एंड फिटनेस। श्रोताओं, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने काम, जिम्मेदारियों और सपनों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत को ही पीछे छोड़ देते हैं, और शायद यही वजह है कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां धीरे धीरे बिना आहट के लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन अच्छी बात है ये कि अगर जागरूकता हो, जानकारी हो और सही वक्त पर सही गाइडेंस हो तो इन बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसी थॉट के साथ, इसी सोच के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है आपकी बेहतर सेहत और बेहतर जीवन को। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, यानी मधुमेह और उच्च रक्तचाप की, और इन महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान, चरक के मेडिसिन विभाग से। डॉक्टर साहब, FM रेनबो लखनऊ के इस मंच पर आपका दिल से स्वागत है।
6: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और आज हम बात करेंगे डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जुड़े कुछ सवालों की, उसके बारे में जानने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अपने शो पे।
3: तो श्रोता, ये तो आप जानते ही हैं कि एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो अगर आपके मन में डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो बिना झिझक हमें कॉल करिए। हमारे फोन नंबर वही पुराने वाले 0522-223-8852 और 0522-223-8845। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। दोपहर 1 बजे तक हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर खान से बात करें और अपने सवालों के जवाब पाएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, जो कि एक टाइम ये बोला जाता था कि बहुत कम लोगों में होने वाली बीमारी है, कुछ लोग इसे हंसते गाते हुए बहुत सोफिस्टिकेटेड बीमारियों में से भी गिनते थे, ये आज इतनी कॉमन कैसे हो गई है?
6: देखिए, इसका मुख्य कारण जो इस वक्त हमें देखने को मिलता है वो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। जैसे बहुत देर तक ऑफिस में बैठे रहने से, जिसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, या कोई भी ऐसा मेहनत वाला काम जिससे हमारा पसीना बहे शरीर से, वो अब कम हो गया है। लग्जरीज या विलासिता जिसे कहें, वो हमारे जीवन में ज़्यादा आ गई है, जिस वजह से ये सारी बीमारियों का जो प्रेवलेंस है, जो इंसिडेंस है, वो पिछले कई सालों से, पिछले 2 डेकेड

0: से बढ़ गया है।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं? कई बार पता ही नहीं चलता है। कहा जाता है कि साइलेंट किलर्स होती हैं ये बीमारियां, क्योंकि आप ठीक ठाक हैं, आप काम भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर एक दिन आपको पता चलता है कि आपको तो हाइपरटेंशन है या आप तो डायबिटिक हो गए। तो क्या लक्षण होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है?
0: जी, देखिए, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, मधुमेह की बात करें, तो इसमें जो सबसे उसके लिए जो सबसे खतरनाक लक्षण या शुरुआती लक्षण जिसे हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा यूरिन होना, ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, और ज़्यादा भूख लगने के बावजूद भी शरीर का वज़न कम होना, और ज़्यादा प्यास लगना, इन स्पाइट कि हम एडिक्वेट अमाउंट में हम पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें ज़्यादा प्यास लगना, ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं डायबिटीज़ के। जल्दी थक जाना, कई बार गांव के जो हमारे श्रोता जो गांव में हैं, उन्होंने अक्सर ये चीज़ इसको नज़रअंदाज ना करें कि अगर वो वॉशरूम जाते हैं, अगर उनके यूरिन में चींटियाँ लग जाती हैं, तो ये संकेत देता है कि आपको डायबिटीज़ है, आपको मधुमेह है, और आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से जाके अपने शुगर की जाँच जितनी जल्दी हो सके वो कराएं। और अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें, तो हाइपरटेंशन में जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जो आज के समय में हमें देखने को मिलता है, वो स्ट्रेस है, तनाव है, नींद का पूरा ना होना है, और बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड है। मैं ये नहीं कहता कि बाहर का खाना खाना गलत है या ख़राब है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना, स्पाइसी फूड खाना, ये धीरे धीरे हमारे शरीर में हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे रक्तचाप को बढ़ा देता है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे कॉल्स हमें आ रहे हैं, और इससे पहले कि हम अपने पहले कॉलर से बात करें, एक बहुत छोटा सा इम्पॉर्टेंट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारे पहले कॉलर से कनेक्ट होते हैं।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: आपको अपडेटेड रखने के लिए, आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए ही तो लेकर आते हैं हम ये प्रोग्राम हर संडे। ये प्रोग्राम यानी कि हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें खास तौर पर आप ही के लिए तो हम इनवाइट करते हैं एक्सपर्ट को, एक ऐसे एक्सपर्ट को जिनसे आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं, अपनी शंकाओं के समाधान जान सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान, और डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो चलिए जानते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है और उनका क्या सवाल है। हेलो।
5: हेलो मैम, नमस्ते। पूरी टीम को हम श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर रहे हैं।
1: धन्यवाद, आपने इतना इंतजार किया। आप अपने सवाल पूछें सर।
5: हाँ मैम, हमारा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि जो हाइपरटेंशन है, ये लाइफ स्टाइल बीमारी डॉक्टर साहब बता रहे हैं
1: जी,
5: इसमें डॉक्टर साहब हम क्या अंतर खाएं मुख्य रूप से, इस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालें। और लाइफ स्टाइल तो हम गांव में रहते हैं, ताजी हवा रहती है हम लोगों के आसपास, और कोई खास दिक्कत नहीं है, कोई नशा पत्ती भी भगवान की दया से नहीं है।
1: नहीं तो आपको हाइपरटेंशन है क्या? क्या डायग्नोज हुई आपको हाइपरटेंशन?
5: बहुत बहुत ज्यादा, 190 बता रही रीडिंग। अब हम यहाँ कार्डियोलॉजी में भी कराया और यहाँ अपने सतीपुर में भी सरकारी अस्पताल में
1: जी।
5: तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए डॉक्टर साहब, क्या चीज हम न खाएं जिससे कि ये हाइपरटेंशन?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है। आप एक बार अपनी उम्र भी बता दीजिए डॉक्टर साहब को।
5: हमारी उम्र 50 से ऊपर है, 52-53 साल है डॉक्टर।
1: ओके, सो सर 52-53 इयर्स की एज, और जैसा कि आपने शुरू में बोला कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं। अब हम इनकी बात करें तो गांव में रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, किसी तरह का व्यसन नहीं है, हेल्दी खाते हैं, हेल्दी हवा में सांस लेते हैं, उसके बाद भी हाइपरटेंशन हो गई, अब ऐसे में क्या किया जाए?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा इनका सवाल है कि ये गांव में रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी है इनकी। देखिए, मात्र काम करना, जो फार्मर्स है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो खेतों में काम करते हैं, इसको

0: हम एक उसमें नहीं ले सकते, व्यायाम की श्रेणी में नहीं ले सकते। जो बताया गया है उस व्यायाम के लिए, उसको ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग ऐसा है कि इतना चलना, इतना तेज चलना, अपनी कदम ताल को इतना तेज चलना कि चलते चलते हल्की सी सांस आपकी फूलने लगे। आप इतना चले, इतना इतनी अपनी स्पीड को रखें कि आप, कहते हैं हम लोग समझाने के लिए, कि आप गाना ना गा सकें। मैं FM रेडियो पे हूं तो गाने से रिलेटेड ही बता रहा हूं कि आप इतना चलें कि आप तेजी से चलें कि आप गाना ना गा सकें। इसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, ये जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि खाने में, खास करके आप किसान भाई हैं हमारे जो हैं, जो गांव में रहते हैं, तो जैसे पापड़ हो गया, नींबू हो गया, अचार हो गया, ये चीजों का सेवन कम करें या ना करें। तीसरी चीज जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड रहती है, वो जेनेटिक्स रहती है। कई बार कुछ बीमारियां हमें विरासत में, जैसे हमारे क्या कहते हैं कि केवल प्रॉपर्टी ही नहीं विरासत में मिलती, बीमारियां भी मिलती हैं। तो हाइपरटेंशन कई बार, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो जेनेटिक भी होता है। वो चूंकि हमारे फैमिली हिस्ट्री रहती है, हमारे परिवार में हमारे माता पिता को किसी को रही होती है, वो हमारे जीन्स में ट्रांसफर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपना ख्याल ना रखें, अपना देखभाल ना रखें, तो ये हो जाएगी। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको इससे हम बचाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने आमतौर पे मरीजों से जब हम देखते हैं तो सुनने में मिलता है कि ऊपर से नमक डालने की एक प्रचलन है, खास करके गांव में, कि जो खाना बनाए, जो भोजन बनाए, उसमें नमक जो पड़ता है, वो पड़ता है उसके ऊपर से एक्स्ट्रा नमक जिसे कहते हैं वो डाल देते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है भाई साहब। आपने बिल्कुल आपने अच्छा काम किया कि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य में जाके अपने आप को दिखाया, और मेरी यही कामना है कि आप दवाओं से और जो मैंने बताया एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के नाम पे जैसे योगा है, योगा का बहुत अच्छा प्रभाव आता है हमारे शरीर पे बीपी को कंट्रोल करने में, खास करके जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, इनहेल एक्सहेल करना, खास करके सुबह में अगर 10 से 15 मिनट अगर हम रेगुलर करेंगे तो इससे हमारे शरीर के अंदर मन शांत रहेगा। जब मन शांत रहेगा तो चीजें भी, हमारी बीपी भी कंट्रोल रहेगा। धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब आपको और भी कई उपाय बताएंगे जिससे कि आप कंट्रोल कर सकें अपने बीपी को, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि 1 बजे तक लगातार आपके साथ हम बने हुए हैं इन द प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, तो चलिए जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार।
2: हेलो
1: जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। इनका फोन तो कट गया, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि जो रेगुलर काम आप करते हैं, गांव में गए खेत पर काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमारा तो घर 3 मंजिल का है, हमने 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ ली, हमारी एक्सरसाइज हो गई, इतना काफी नहीं है, तो क्या कॉन्शियसली सोच करके पूरी प्लानिंग से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या उसका दूसरा असर होता है शरीर के ऊपर?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, बीपी और शुगर ये जो बीमारियां हैं,
1: जी
0: तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कुछ जेनेटिक्स से भी रिलेटेड है। इंस्पाइट के हम सारा प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बावजूद भी ये बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग मैंने बात करी, साथ में ही एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं,
1: जी
0: जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो नया ट्रीटमेंट का गाइडलाइंस आया है, उसमें ये है कि 150 मिनट्स टोटल पर वीक, यानी डेली 20 से 25 मिनट व्यायाम करना, करने से हम डायबिटीज़ और बीपी के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर काबू पा सकते हैं।
1: तो सीधी सी बात है ये कि रेगुलर जो आप काम करते हैं उसे एक्सरसाइज में बिल्कुल मत गिनिए, सोच कर समझ कर जितना डॉक्टर साहब कह रहे हैं उतना टाइम जरूर डिवोट करिए एक्सरसाइज के नाम। डॉक्टर साहब एक और कॉलर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले हम ले लेते हैं एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
3: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
4: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में, एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: 12:19 और ठीक 45 सेकंड्स। प्रोग्राम का नाम हेल्थ एंड फिटनेस, चैनल का नाम FM रेनबो। मेरा नाम ज्योति और आज खास तौर पर आपके लिए, जी हाँ आप ही के लिए, हमने इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान जी को, जो कि बात कर रहे हैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन से जुड़े हुए आपके सवालों के बारे में, आपकी शंकाओं के समाधान कर रहे हैं, आपके सवालों के लगातार जवाब दे रहे हैं। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, हमें जल्दी से डायल करिए 2238852 पर या फिर 2238845 पर। इन नंबर से पहले जो लखनऊ का कोड है 0522, इसको ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल इनकी ही तरह। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं और अपना सवाल पूछें।
1: नमस्कार मैम जी, हम जगमोहन बोल रहे हैं।
0: जी जगमोहन साहब
1: जी, हम ये जानकारी चाहते हैं
0: जी
1: कि जैसे शरीर में मोटापे की भी कमी ज्यादा चल रही है और जब शरीर ठीक ठाक है और चलने में जैसे थकान सी महसूस होती है और नसें जो है
0: झटपट
1: की आवाज आती है।
0: मतलब आपको थकान सी महसूस होती है, अपनी उम्र भी बता दीजिए एक बार आप।
1: हमारी उम्र 18 वर्ष है
0: जी। कितनी है आपकी उम्र?
1: जी 18 वर्ष की उम्र है और हड्डियां जैसे लगता है कि कमजोर होती जाती है।
0: तो 18 साल की उम्र में ही आपको बहुत लो एनर्जी फील होती है, हड्डियों में तकलीफ महसूस होती रहती है। और भी कोई परेशानी है जगमोहन जी?
1: जी और तो कोई परेशानी नहीं है
0: जी। बहुत अच्छी बात है कि और कोई परेशानी नहीं है, डॉक्टर साहब हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे, 18 साल की उम्र में तो ये बोला जाता है कि इस एज में एक्सेसिव एनर्जी रहती है बच्चों में, स्पेशली जो प्री टीन्स हैं या टीन एजर्स हैं या यूथ, वो तो बबल करता है एनर्जी से। और अगर इसी उम्र में आपको ये महसूस होने लगे कि ताकत ही नहीं है, बड़ी थकान हो रही है, हड्डियाँ तकलीफ दे रही हैं, तो क्या वजह हो सकती है?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल जगमोहन जी, जो उन्होंने अपनी उम्र बताई 18 साल, तो काफ़ी यंग है। लेकिन हमें एक चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें चाहे हाइपरटेंशन की बात करें, ये कहीं नहीं लिखा है कि ये यंग्स में नहीं हो सकता है। जगमोहन जी ने बताया कि उनके हड्डियों में दर्द रहता है, उनको थकान सी, जिसको हम बोलते हैं मैलेज एंड फटीग बोलते हैं, तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिए जगमोहन जी। आप अपना एक रूटीन चेकअप करा लीजिए। रूटीन चेकअप में आप अपना एक रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग शुगर एंड पोस्ट प्रांडल शुगर, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद का शुगर, और एक HbA1c, और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से जाके अपना एक BP नपवा लें। इन जांचों को कराने का मकसद ये है कि हम आप में शुगर और हाइपरटेंशन के लक्षण, क्योंकि ये लक्षण और भी कई बीमारियों में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर ये सिर्फ हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के ही लक्षण हैं, और भी कोई शरीर में, जो कि आप यंग है, हो सकता हो कैल्शियम की कमी हो, तो अपने विटामिन डी लेवल्स भी करा लें, क्योंकि विटामिन डी लेवल का भी डायबिटीज़ से रिलेशन देखा गया है। तो आप विटामिन डी लेवल्स करा लें, अपने HbA1c लेवल्स हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग एंड पोस्ट प्रांडल शुगर्स हैं, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से अपना BP नपवा लें, और इन रिपोर्ट्स को अपने जो भी डॉक्टर को आप दिखाना चाहें या चरक अस्पताल आना चाहें बिल्कुल आ सकते हैं। उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर आपके डायग्नोसिस या आपके आगे का इलाज किया जाएगा।
0: तो जगमोहन जी बिल्कुल इग्नोर मत करिए अपने लक्षणों को, जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से सलाह लें और बहुत जल्दी से आप अच्छे हो जाए, ये हमारी शुभकामना है। हेलो। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं, आपकी आवाज बड़ी हल्की आ रही है।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ अब बेटर है। हाँ जी बताएं।
3: मेरा सवाल ये है कि डायबिटीज कैसे हो जाती है, अगर हो भी जाती है तो उससे बचने के उपाय क्या?
0: आपकी उम्र कितनी है?
3: उम्र है 16।
0: और आपको कोई परेशानी तो नहीं है, स्वास्थ्य एकदम ठीक है आपका?
3: हाँ स्वास्थ्य तो ठीक है,
0: लेकिन हमारे जागरूक श्रोता होने के नाते ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि डायबिटीज हो क्यों जाती है?
2: जी देखिए, डायबिटीज होने का मुख्य कारण ये है कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, उससे हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इन साहब की उम्र 16 साल है, काफ़ी यंग है, तो डायबिटीज की जो एक

0: मिथ्या है कि डायबिटीज केवल बूढ़े अधेड़ उम्र के लोगों में होती है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज इन यंग भी होती है, जिसको हम टाइप वन डायबिटीज कहते हैं, और ये टाइप टू, मैं अपने श्रोताओं से बताना चाहूंगा कि ये टाइप वन ज्यादा खतरनाक है। अगर अगर आपको अगर आपको आपकी उम्र कम है, मतलब 25 साल के नीचे हैं, और आपको ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा पेशाब, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पानी पीने की वो हो रही है जबकि आप पी रहे हैं पानी, शरीर का वज़न कम होना, जल्दी थकान आना, सांस का फूलना, तो उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। इसको हम टाइप वन डायबिटीज़ कहते हैं और ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जैसा कि भाई साहब का सवाल था कि ये हो कैसे जाती है, तो जब इंसुलिन की मात्रा, जो कि हमारा बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज रिलीज़ करता है, ये शरीर में कम होने लगता है, तब शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए खान पान पर ध्यान रखना रहता है, और व्यायाम करना पड़ता है, और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना होता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर है। हालांकि मैंने आपका गाना बिल्कुल क्यू कर रखा है, आपने दो बेहद खूबसूरत गानों की फरमाइश की हुई है, तो वो गाने जरूर प्ले किए जाएंगे। लेकिन हमारे ये श्रोता जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इनसे हम बात कर लें उसके बाद। हेलो जी, बताएं। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल भी पूछें प्लीज।
2: विमल सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी सिंह साहब,
2: ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरे पेट में दर्द है, खाना खाता हूँ तब भी दर्द, नहीं खाता तब भी दर्द, ये लैटिन कई बार कमजोरी बहुत ज्यादा है।
1: उम्र कितनी है आपकी?
2: हमारी इसमें 29 है।
1: 29 इयर्स की एज। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, पेट में दर्द रहता है, खाना खाते हैं तब भी, नहीं खाते हैं तब भी, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है आज के टाइम में।
0: जी जी जी, तो मैं भी हो सकता हूँ कि

0: और क्यों सुनना चाहते हैं?
1: देखिए, आज चूंकि मदर्स डे है तो मैं मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं एक गाना मेरी माँ, अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि माता ही एक जीवन में एक ऐसा इंसान के वो रहता है कि जो उसके पूरे फ्यूचर को शेप करता है। तो आज मदर्स डे के, हालांकि हर दिन हमें मदर्स डे मनाना चाहिए, पर चूंकि एक स्पेशल डे है तो मैं जो गाना मैंने बताया आपको, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए बजा दिया जाए।
0: तो डॉक्टर साहब की माता जी को हम सबकी तरफ से भी मदर्स डे की ढेर सारी बधाइयां, और डॉक्टर साहब के साथ साथ हम सबकी भी तरफ से मदर्स डे का ये प्यारा सा गिफ्ट।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: आपकी धड़कन हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहे, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जरूर जो आपको अवेयर करें, आपको अपडेटेड रखें और आपकी लाइफ की क्वालिटी को सुधारने में मदद करें। हमारे साथ एक कॉलर बड़ी देर से है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या सवाल है। हेलो।
4: हेलो
3: जी, नमस्कार।
4: मैम नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
5: नमस्कार नमस्कार।
4: मास्टर राधेश्याम बोल रहे डिस्ट्रिक्ट कारसन से।
3: जी राधेश्याम जी बताएं।
4: मुझे डायबिटिक है।
3: ओके।
4: उसकी सुबह एक गोली लेता हूँ जो वो जेमर 2, और शाम को जल्ला ट्राई हो टेबलेट लेता हूँ।
3: ओके।
4: मेरा जो पीपी शुगर तो 121.3 है, लेकिन मेरे जो शरीर में हर समय जो थकान और कमजोरी बनी रहती है।
3: अच्छा, आपका ईमेल भी आया हुआ है राधेश्याम जी।
4: हाँ जी जी जी
3: जी। अच्छा हुआ आपका फोन लग गया, मैं बस आपका ईमेल लेने ही वाली थी।
4: चलो कोई बात नहीं, थैंक्स मैम।
3: तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे राधेश्याम जी को?
5: जी राधेश्याम जी, आपका पीपी तो ठीक है, आपने बताया 121 है तो ठीक है। जो थकान और कमजोरी की बात चल रही है, तो देखिए डायबिटीज का मतलब भूखे रहना नहीं होता है। ये हमारे समाज में एक कॉमन वो है कि हम भूखे रहेंगे तो शुगर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। डाइट में आपको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखनी है एज कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट। अब सवाल उठता ये है कि प्रोटीन में आता क्या है, तो अगर आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, तो शाकाहारी में जैसे पनीर हो गया और सोयाबीन हो गया, है ना, तो और जैसे सादा दही हो गया, है ना, बिना शक्कर वाला जो सादा दही घर का है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन से रिलेटेड हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेड मीट को अवॉइड करना है एंड फिश जो है फिश ज़्यादा मात्रा में लेनी है। तीसरी जो बात आती है कि विटामिन डी लेवल्स देखा गया है, जो भी स्टडी हुई है रिसेंटली, कि विटामिन डी लेवल्स कम पाए गए हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, तो विटामिन डी लेवल का कम होना भी एक कारण हो सकता है आपको थकान और कमजोरी लगना। तो मेरा आपसे जो आपको सजेशन रहेगा, सुझाव रहेगा, वो ये है कि अपनी प्रोटीन डाइट को बढ़ा दें, अपने विटामिन डी लेवल्स चेक करा लें, अगर वो कम है तो उसकी दवाई आती है उसको लेंगे तो इससे आपको मदद मिलेगी।
3: डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो।
6: हेलो नमस्कार मैडम
3: जी, कौन बोल रहे?
6: मैडम संजय बोल रहे।
3: संजय जी एक रिक्वेस्ट करूं?
6: हेलो
3: संजय जी एक रिक्वेस्ट करूं, मानेंगे आप?
6: हाँ बताइए मैडम।
3: प्लीज रेडियो से दूर हो जाइए।
6: ठीक मैडम, हाँ दूर हो
3: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपना सवाल पूछे प्लीज।
6: मैडम हमको डॉक्टर गुड आफ्टरनून।
5: गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून
6: डॉक्टर। हमको आपसे ये सवाल पूछना है कि जैसे बीपी का जो एक नॉर्मल रेंज कितना होता है और कितने के बाद वो रिस्की हो जाता है
5: जी।
6: और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुगर जो आजकल बहुत एक कॉमन बीमारी हो गई है
5: जी।
6: तो इसका क्या ये प्रोग्रेसिव बीमारी है कि रिवर्स नहीं हो सकती अगर एक बार हो जाती है तो?
5: अच्छा,
3: दोनों ही सवाल बहुत अच्छे हैं इनके कि क्या शुगर हो गई या हाइपरटेंशन हो गई तो क्या सारी जिंदगी वो रहती है। बहुत अच्छे सवाल आपके।
6: इसका रेंज क्या है बीपी का जो है?
5: जी जी जी, देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो नॉर्मल बीपी हम लोग मानते हैं वो 120/80 ऊपर, जैसे हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, एंड 80 जो नीचे का डायस्टोलिक होता है, तो इसकी एक रेंज होती है 100-120 एंड 60-80 डायस्टोलिक जो है। तो जब बीपी हमारा 120 अबव, 120 और 130 की रेंज में रहता है तो ये नॉर्मल हम मानते हैं। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर 126, 128, 129 या 130 तक आ रहा है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं कि भाई बीपी आपका सही चल रहा है। जब बीपी आपका जो है 130 अबव होने लगता है धीरे धीरे, तब जो है आप खतरे के उसमें आते हैं। तो एकदम से अगर बीपी आपका 130 अबव आ रहा है तो दवा देने की जरूरत नहीं है, उसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और डाइट पे, इन सब पे ध्यान दे के हम बीपी को वापस कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा सवाल जो आपका था कि शुगर क्या प्रोग्रेसिव बीमारी है, बिल्कुल शुगर जो है देखिए शुगर और नॉर्मल हो जाती है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें आप दवा लेते रहें और अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। दवा की डोज कम हो जाती है, दवा की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वो आप कम मात्रा में लेते रहे, परहेज करते रहे, शुगर कंट्रोल रहेगी और अपना जीवन व्यापन आराम से कर सकते हैं।
3: मतलब आपको अपनी लाइफ को लीड करने में कोई समस्या नहीं होगी,
5: कोई समस्या नहीं,
3: लेकिन दवा लेते रहना जरूरी
5: है। दवा लेते रहना जरूरी है।
3: लेकिन डॉक्टर साहब एक बार अगर इनमें से कोई बीमारी हो जाती है तो मन में तो आ ही जाता है कि भाई अब समस्या हो गई है ना।
5: जी जी जी, असल में एक जहन में ये आ जाता है कि अब हम बीमार रहने लगे हैं। तो इसका यही मैं कहना चाहूँगा कि घबराए नहीं, अपने मन में कोई कुंठा ना रखें। ये जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप परहेज रखेंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल रखेंगे, खान पान का रखेंगे तो आपको जीवन व्यापन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत नामी क्रिकेटर वसीम अकरम हैं, वसीम अकरम पाकिस्तानी बॉलर रहे, उनको भी डायबिटीज़ थी, उनको भी डायबिटीज़ थी। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सोनम कपूर हैं, उनको भी, उनको तो टाइप 1 डायबिटीज़ थी। लेकिन देखिए सभी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
3: तो बजाय ये सोच के कि अरे मुझे तो समस्या हो गई, उस समस्या को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, दवा सही समय पर लीजिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहिए और एक्सरसाइज जरूर करिए। डॉक्टर साहब एक और कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रेक लेना तो बहुत जरूरी है।
0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: बारह बजकर 39 मिनट और 45 सेकंड्स, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, अभी भी अच्छी खबर है ये कि हमारे पास 20 मिनट से ज्यादा है, तो हमें जल्दी से आप कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं डायरेक्टली डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब से, जो कि जाने माने डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एक्सपर्ट हैं। तो चलिए जानते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन है और इनका क्या सवाल है। मुझे लगता है कि इनका कनेक्शन थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बट नेवर माइंड। चलिए एक और ब्रेक ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे साथ कौन लाइन पर है।
1: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
0: तो चलिए जाने हमारे साथ अभी कौन फोन लाइन पर कनेक्ट हुए हैं। हेलो, हेलो,
3: सलाम वालेकुम।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
3: और डॉक्टर भाई को, तौसीफ भाई को सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम बहन, बताएं।
3: और बताइए भाई, आप कैसे हैं? ज्योति मैम आप बताइए कैसे?
0: जी हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी भी सेहत फर्स्ट क्लास बनी रहे, और इसीलिए तो
3: मैम हमारी आपसे बात नहीं हुई थी और काफी दिनों से, तो मेरा सवाल कोई नहीं है, मैंने कॉल किया आपको, बुरा लगा हो अगर, इसके लिए सॉरी।
0: अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बस यूं ही कनेक्टेड रहिए।
3: डॉक्टर भाई और बताइए।
4: जी बहन मैं ठीक हूँ और अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कॉल किया, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमें इतने ध्यान से सुनते हैं, हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानकर अच्छा लगा कि इनका कोई सवाल नहीं है। इसका मतलब हमारा देश स्वस्थ हो रहा है, और हमारे देश को स्वस्थ रखने के लिए तो हम करते हैं ये छोटा सा प्रयास जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस, जिसे हम बुलाते हैं हमारे देश के सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हेल्थ शोज में से एक। मोनू सेठ जी का ईमेल है मेरे सामने, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, खेल और व्यायाम में काम में दिन बीत जाता है, खूब पसीना बहाते हैं, तो क्या हमें फिर भी बीमारी हो सकती है?
4: देखिए सवाल इनका बहुत ही उचित है कि वही खेल और व्यायाम दोनों करते हैं, उसके बावजूद भी बिल्कुल हो सकती है, ना होने का मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन ये कि ध्यान रखें अपना, फलों का सेवन ज़्यादा करें, बाहर का खाना कम खाएं, आप व्यायाम करते ही हैं, खेलते भी हैं, में भी प्रोलोंगेशन हो सकता है कि प्रोलोंगेशन ऑफ द डिजीज़ के आपको ना हो, मतलब अगर होना है तो 20-25 साल 30 साल बाद हो सकती है, लेकिन अगर ये लाइफस्टाइल रही तो शायद ना भी हो जाए।
0: तो सीधी सी बात है कि हम ये प्रोग्राम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप जागरूक हों, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को बीमारी होगी ही या फिर नहीं होगी, लेकिन अगर हो ही जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, मेडिकल साइंस की फील्ड में ज़बरदस्त R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और उस वजह से बीमारियाँ बहुत जल्द काबू में आ रही हैं, बहुत जल्द उनके निदान हो रहे हैं। तो तकलीफ को अपने तक समेट कर रखने की बजाय डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, समय पर लीजिए और सलाह को फॉलो भी करिए। हमारे साथ अब कौन फोन लाइन पर है? नमस्कार।
5: नमस्ते मैम, ओम बाबू बोल रहे हैं।
0: ओम जी नमस्कार, सवाल पूछे अपना। जी
5: ये मैम, ये हमारे जो है 3 साल पहले पता चला था कि हमें शुगर है, जब HbA1c और ये टेस्ट कराए तो करीब 13 के आसपास निकला था, और उसके बाद अपने खान पीन में थोड़ा सुधार किए और कुछ दिन तक 6 महीने के आसपास दवा चली, उसके बाद अब दवा नहीं खा रहे हैं, लेकिन हर 3 महीने पे HbA1c टेस्ट कराते हैं तो वही 7 के आसपास आती है 7 साढ़े 7 के आसपास आती है, और 125 या 120 115 के आसपास।
0: तो दवा खाना बंद जो आपने की है वो क्या किसी के सलाह पे की है, या फिर आपका शुगर कंट्रोल हो गया था तो आपने अपने आप से ये डिसीजन लिया?
5: हम कंट्रोल हो गया था तो अपने आप कर दिए, लेकिन इस समय ये ऐसी पोजीशन है, क्या इसमें उचित है दवा खाना कि थोड़ा और सुधारना है अपने खाने पीने के?
0: बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप दवा लेना शुरू करते हैं तो फिर कंट्रोल में आ जाती है शुगर, तो उस टाइम ये क्वेश्चन आता है कि अब हम दवा क्यों खाएं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: देखिए मैं यही अपने श्रोताओं को सलाह देना चाहूंगा कि खुद डॉक्टर ना बने, कृपा

0: डॉक्टर जब कहे तब ही अपनी दवा को बंद करें। भाई साहब का HbA1c 13 पॉइंट समथिंग था और वो घट के 7 साढ़े 7 आ गया। इसका मतलब है कि उन्होंने भी मेहनत की और आपके डॉक्टर ने भी मेहनत की, लेकिन अब आपने अपने मन से दवा बंद कर दी और आपका HbA1c 7.5 है। भाई साहब को ये नहीं मालूम कि 6.5 अबव जो है पेशेंट डायबिटिक कहलाता है। 6.5 अबव है तो पेशेंट जो है डायबिटिक, प्री डायबिटिक, डायबिटिक रेंज में आ जाता है। HbA1c लेवल शुड बी लेस देन 6.5। अब इनका HbA1c 7.5 आ रहा है तो इनको दवा की ज़रूरत है, लेकिन कम डोज की ज़रूरत है। ये कब बढ़ जाएगा इनको पता भी नहीं चलेगा। HbA1c यूजुअली हमारा 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज बताता है। तो
1: जी
0: कृपा करके मेरा सुझाव ये है कि जिन डॉक्टर साहब को आप दिखा रहे थे उनको वापस जाएं और उनसे सलाह लें। अगर मान लीजिए आप पहले 2 दवा खा रहे थे, हो सकता हो आपको एक गोली, आधी गोली खानी पड़े, लेकिन आप अपने मन से दवा कृपा करके ना बंद करें।
1: डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्लीज अपने डॉक्टर खुद ना बने, क्योंकि ये वाकई खतरनाक हो सकता है। डोज एडजस्ट की जा सकती है, लेकिन शुगर की दवा और हाइपरटेंशन की दवा डॉक्टर साहब रोकनी नहीं चाहिए,
0: बिल्कुल नहीं रोकनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: भी नहीं
0: बिल्कुल
1: रोकनी
0: नहीं
1: चाहिए,
0: रोकनी चाहिए।
1: और ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ है, ईमेल्स भी ढेर सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर मैंने आपकी पसंद का एक और गाना नहीं सुनाया तो मुझे बहुत अफसोस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो कम्युनिकेशन आपका और मेरा हुआ था उसमें आपने कहा था कि आपको 2 गाने सुनने हैं, एक मम्मी के लिए और एक अपनी बेटर हाफ के लिए। तो इससे पहले कि मैं गाना प्ले करूँ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: मैं ये सॉन्ग अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहूंगा और बस, और मैं क्या
1: ऑलराइट, ये गाना ही सब कुछ कह देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी बेटर हाफ ये प्रोग्राम सुन रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं ये खूबसूरत गाना, और हमारे जो कॉलर इंतजार कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंतजार और प्लीज।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी।

0: MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: 12:39 और ठीक 56 सेकंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। और आज हमने हमारे स्टूडियोज में बुलाया है खास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब को, जो कि जाने माने डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एक्सपर्ट है। ये आज आपके सवालों के खुद जवाब दे रहे हैं। तो आपका कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं डॉक्टर साहब से हमारे फोन नंबर्स के जरिए। हमारे फोन नंबर्स वही पुराने 223-8852 और 223-8845। आप इनके जरिए जुड़ सकते हैं डॉक्टर साहब से और अपना सवाल पूछ सकते हैं बिल्कुल इनकी तरह। नमस्कार, नमस्कार दोस्त। हेलो जी, कौन बोल रही है? हेलो जी, अपना सवाल पूछे। जी जी, अपना सवाल पूछे।
3: मेरे पेशाब बहुत लगती है बाथरूम में, जब तक जाए जाए जब तक हमारे पेशाब हो जाते हैं।
2: कितनी उम्र है आपकी?
3: 40 साल की है उम्र।
2: और कब से ये समस्या है?
3: ये हमारा ऑपरेशन हुआ था, 2-3 साल हो गए हैं। पित्त का ऑपरेशन हुआ था, पथरी का। जी, हमारा शुगर था लेकिन दवाई के जरिए से दवाई कंट्रोल कर लिया गया था।
2: तो उसके बाद आप शुगर की दवा ले रही हैं कोई?
3: इस टाइम हम कोई शुगर की दवा नहीं ले रहे हैं।
2: जी
4: देखिए, आपका सवाल है कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है और पेशाब आप रोक नहीं पाते हैं, तो ये भी लक्षण हो सकता है वापस शुगर का ब्लड लेवल में बढ़ना। तो इसमें बहन आपको काम ये करना है कि अपना ब्लड शुगर नपवाना है खाली पेट, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं, पोस्ट प्रैंडियल यानी खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, और अपना एक HbA1c लेवल आपको चेक कराना है। साथ ही में अपने पेशाब की जांच आपको भेजनी है, जिसको हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी या यूरिन RM भी कहते हैं। ये जांच देखने के बाद अगर इसमें कुछ गड़बड़ आती है तो उसी हिसाब से नियमावली आपका इलाज किया जाएगा। तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके ये जाँचें करा लें और तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें, ये ठीक हो जाएगा।
2: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो, हेलो जी, हेलो
5: हेलो हेलो हेलो
2: जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
5: हेलो
2: जी, नाम बताएं प्लीज।
5: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम
5: जी। शुगर है मतलब मेरे
4: जी,
5: तो मतलब रहता है 125-130 रहता है, लेकिन खाने पीने से बाद में बढ़ जाता है
4: जी। तो आपने अपना आपने HbA1c लेवल अपना कराया है?
5: जी करवाया।
4: कितना है?
5: ये तो मुझे नहीं पता, सर रिपोर्ट में होगा।
4: अच्छा अच्छा, देखिए भाई, आपका जो बता रहे हैं ना कि आपका शुगर लेवल वैसे 120-125 रहता है और खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, तो हो सकता हो कि अभी शुरुआत हो आपको डायबिटीज़ की, और इसमें एक HbA1c लेवल आपने करा लीजिए। उसकी रेंज को देखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, व्यायाम करने से, डाइट पे ध्यान रखने से ये कम हो जाएगा, या आपको एक गोली की ज़रूरत पड़ेगी। मे भी हो सकता हो आपको कम डोज में आपको ज़रूरत पड़े, तो अपना एक HbA1c लेवल लेके अपने नज़दीकी डॉक्टर साहब से संपर्क करें।
2: डॉक्टर साहब, मुनेश कुमार राज का ईमेल आया हुआ है भानपुर हरोआ जिला लखीमपुर खीरी से। ये पूछ रहे हैं कि अगर शुगर है तो क्या ग्लूकोज की ड्रिप चढ़वाना, आयरन सुक्रोज चढ़वाना या फिर मीठी सिरप, विटामिन की गोली लेना ठीक रहेगा?
4: बिल्कुल नहीं। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है या आप दवाओं पे कंट्रोल है, तो कोई भी मीठा किसी भी प्रकार में, चाहे वो आप IV से लें, चाहे वो आप ड्रिंक्स में लें, बिल्कुल। आयरन सुक्रोज की जो आपने बात करी, तो देखिए आयरन सुक्रोज एक अलग ये प्रकार है आयरन प्रिपरेशन का, जो हम चढ़ाते हैं उन पेशेंट्स को जिनको आयरन की शरीर में कमी है। सुक्रोज का मतलब हर जगह, मैंने वही कहा कि डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। आयरन सुक्रोज, सुक्रोज से कन्फ्यूज ना हो, सुक्रोज यहाँ पर मीठा नहीं है, ये आयरन प्रिपरेशन है जो हम अनीमिया के पेशेंट्स में जिनको खून की कमी है उनको चढ़ाते हैं। और जहाँ तक रही बात शुगर ड्रिप की, तो ये नहीं चढ़ाना है, मीठा पानी नहीं पीना है और किसी भी प्रकार का मीठे का सेवन नहीं करना है।
2: डॉक्टर साहब, एक और सवाल इन्होंने पूछा है कि कौन से ब्लड ग्रुप में शुगर जल्दी हो जाता है।
4: नहीं, ऐसा कोई ब्लड ग्रुप अभी तक ऐसा नहीं है।
2: तो ये मिथ है।
4: ये मिथ है। शुगर जो होती है वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड, जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स अगर फैमिली हिस्ट्री है माता पिता को, तो आप में चांसेस हैं कि आपको हो सकती है। आपको ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो डिपेंड करता है वो आपके लाइफस्टाइल पे, खान पान पे, पूरी नींद पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है।
2: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
6: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 12:55 और 27 सेकंड हो चुके हैं। लगातार आपके कॉल्स आ रहे हैं, लगातार आपके ईमेल्स आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि हम आपके कॉल्स, आपके ईमेल्स को शामिल कर सकें। तो डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो।
5: हेलो
2: जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
5: नमस्ते मैम, रामू बोल रहे हैं मैम।
2: जी
5: से, बक्सी तालाब से।
2: अपनी समस्या भी बता दें।
5: समस्या मैम ये है कि हमको कभी कभी घबराहट लगने लगती है।
2: उम्र कितनी है आपकी?
5: 40 वर्ष मैम।
2: घबराहट के अलावा और भी कोई समस्या है?
5: और मैम कोई समस्या नहीं है, जैसे कि डॉक्टर साहब से परामर्श लेना है।
2: घबराहट किस वक्त ज्यादा होती है? जब ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा सोच लेते हैं?
5: नहीं मैम, काम करते हैं जैसे दिन भर मजदूरी, तो शाम को घबराहट महसूस।
2: अच्छा, थकान के बाद।
4: देखिए, घबराहट के, आपका जो सवाल है कि आप दिन भर काम करते हैं उसके बाद भी घबराहट, तो मे भी हो सकता हो आपको एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं, और मे भी हो सकता हो कोई हार्ट रिलेटेड दिक्कत हो। तो ये बता पाना जो है, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह करें, उसको अपने पूरे लक्षण बताएं, अपनी समस्याएं बताएं, इसका निवारण हो जाएगा। इसे घबराने की बात नहीं।
2: डॉक्टर साहब, एक ईमेल हमारे सामने आया हुआ है सुनीता का, लखनऊ से। सुनीता पूछ रही है कि Type 1 diabetes, जिसमें इंसुलिन लेनी ही लेनी पड़ती है, क्या उसमें किसी तरह इंसुलिन से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि वो कम उम्र में होती है और बच्चों को एक्टिव रहना पड़ता है। मेरे बेटे को है और मुझे ये लगता है कि अगर कल को नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में उसे बाहर जाना पड़ा तो वो कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि अभी तो मेरे साथ है, मैं किसी तरह मैनेज कर रही हूँ।
4: जी जी, बहुत बहुत मैं रेडियो के माध्यम से आप पूरे रेडियो स्टेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये टाइप 1 डायबिटीज जो ईमेल आया है, देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि डायबिटीज़ के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों या कम उम्र के लोगों में देखी जाती है। इसमें शरीर की रक्षा प्रणाली गलती से इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को, जिसे हम बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज कहते हैं, इंसुलिन इसका इलाज है, और इंसुलिन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं सारे श्रोताओं से कहूंगा, इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लेने से कोई प्रभाव नहीं आता है, और इंसान अपनी पूरी जिंदगी प्रोफेशनली भी पर्सनली भी आराम से व्यतीत कर सकता है, हंसते खेलते व्यतीत कर सकता है।
2: और डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है मेरे सामने, ईमेल आया हुआ है रिंकी का। रिंकी जानना चाहती है कि हाइपरटेंशन क्या टेंशन की वजह से हो जाती है?
4: जी नहीं, हाइपरटेंशन की वजह से नहीं हो जाती है। ब्लड प्रेशर, बॉडी में जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो लगातार बहुत समय तक अगर आर्टरीज में बढ़ा हुआ रहता है, देन द पेशेंट स्टार्ट्स टू डेवलप हाइपरटेंशन। और इसकी कई वजहें होती हैं, जैसे कि तनाव का होना, प्रोसेस्ड फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, प्रॉपर स्लीप ना लेना, अत्यधिक मात्रा में एक्सेसिव अल्कोहल लेना, ये सारे कारण हैं जिससे कि हमें डायबिटीज हो सकता है।
2: तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, इन दोनों के लिए आपने कहा कि अगर एक बार हो गई है तो दवा जरूर लें, दवा अपने आप बंद ना करें। डॉक्टर साहब, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अंत में मैं

0: फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, प्रॉपर स्लीप ना लेना, अत्यधिक मात्रा में एक्सेसिव अल्कोहल लेना, ये सारे कारण हैं जिससे कि हमें डायबिटीज हो सकता है।
1: तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, इन दोनों के लिए आपने कहा कि अगर एक बार हो गई है तो दवा जरूर लें, दवा अपने आप बंद ना करें। डॉक्टर साहब, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अंत में मैं चाहूंगी कि संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को अगर कुछ कहना चाहें तो।
0: देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी सावधानी और नियमित जांच और सही जीवन शैली, यही डायबिटीज़ और बीपी से बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है।
1: तो बस अपना ध्यान रखिए, और जैसा कि आज की चर्चा से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर आप अपने स्वास्थ्य पर टाइम खर्च करते हैं या फिर पैसे खर्च करते हैं तो ये दरअसल कोई खर्च नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा निवेश है। तो दोस्तों, अपने शरीर को समय दीजिए, नियमित जांच कराइए, तनाव से दूरी रखिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान साहब, आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
1: आप सबको याद दिला दूं कि ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया आकाशवाणी लखनऊ से। मार्गदर्शन सुश्री सुमोना एस पांडे जी का रहा, जो कि हमारी कार्यक्रम प्रमुख हैं। प्रोड्यूसर हैं श्री कुंवर बहादुर सिंह जी, और सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद विनय जी को। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो लखनऊ 100.7 MHz।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। खेल एक भारत एक श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है। श्री योगी ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 की प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में बताया कि राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कार सेवकों की स्मृति में मंदिर परिसर में एक शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। श्री मिश्र ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री

बनाई जा रही है। वहीं ट्रस्ट कार्यालय और अत्याधुनिक म्यूजियम का निर्माण भी जारी है। मंदिर परिसर में जल्द फसाई लाइटिंग का कार्य भी शुरू होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के बीच होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। वहीं कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 152 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगह,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। मरकजी हुकूमत ने लेबर कोड के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे मरकजी वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और मरकजी पब्लिक सेक्टर के इकदामात में काम करने वाले आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के तहफ्फुज को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक, साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: मरकजी हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2025 के फातहीन का ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क से चुनी गई 42 पंचायतों को ये इनामात दिए जाएंगे। वजारत पंचायती राज ने बताया कि इनामात का तकसीम प्रोग्राम 3 जून को नई दिल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। वजारत के मुताबिक कर्नाटक से सबसे ज्यादा 6 गांव पंचायतों को अवार्ड के लिए चुना गया है। दरियासना आगरा जिले की बिरहारू गांव पंचायत भी अवार्ड की फेहरिस्त में शामिल है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के पार्टी के बानी सी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जनाब विजय के साथ 9 वुजरा ने भी हलफ लिया। लोकसभा में इस बेख्तिलाफ पार्टी के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्मी दुनिया के कई हस्तियां हलफ बरदारी तकरीब में मौजूद रहीं। अयोध्या में राम मंदिर तामीर कमेटी की खसूसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर तामीर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का खसूसी तामीराती काम अब मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुहिम में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले कार सेवकों की याद में मंदिर अहाते में एक अजीमुशान शहीद स्तंभ बनाया जा रहा है, जिसके 15 जून तक तैयार होने की उम्मीद है। वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में शहर के ट्रैफिक, पार्किंग और सफाई इंतजाम को लेकर अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। उन्होंने खसूसी रास्तों पर सामान रखने और गैरकानूनी पार्किंग पर सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। जनाब खन्ना ने कहा कि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पहले जुर्माना लगाया जाए, फिर भी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठेला रेहड़ी वालों को वेंडिंग जोन में भेजने और सड़कों पर तजावजात को हटाने के भी अहकाम दिए। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज के जरिए लेक्चरर ग्रेड के 18 मौजों के कुल 624 ओहदों के लिए 2 रोजा तहरीरी इम्तिहान

0: से शुरू हो गया। पहले इम्तिहान दो मीटिंगों में मुनक़िद हुआ। इम्तिहान के मद्देनजर इंतजामिया अलर्ट रहा। आज इम्तिहान का दूसरा मरहला मुनक़िद हो रहा है। पहली मीटिंग में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान समेत 5 मौजू का इम्तिहान हो चुका है, जबकि दूसरी मीटिंग में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिन्दी और आर्ट समेत 4 मौजू का इम्तिहान मुनक़िद होगा। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में एक बच्चा और 2 खवातीन समेत 3 अफराद जां बहक हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकरा गया और पलट गया, जिसमें 3 अफराद दब गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में 2 दीगर अफराद के जख्मी होने की भी खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के दरमियान चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान रायपुर में 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: जगह,
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
6: एक बजकर 17 मिनट और ठीक 45 सेकंड्स, एक बार फिर आपके साथ आपकी अपनी दोस्त ज्योति मिश्रा और प्रोग्राम का नाम प्रोग्राम वही जिसमें है आपकी बात, आपके जज्बात, लेकिन मेरी आवाज। यस, होठों पे तेरी बात प्रोग्राम का नाम, और आज मदर्स डे है तो मैं बहुत क्लीशे टाइप का कोई टॉपिक नहीं लेने वाली। मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी मम्मी ने जो आपको ताने दिए, अब ये मत कहिएगा कि मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं, मम्मी है तो कुछ तो कहेंगी, है ना। तो मम्मी का दिया हुआ कोई ऐसा ताना या कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बिल्कुल रटा हुआ हो, जो आपकी निगाहों में आपकी मम्मी की पहचान बन गया हो, उसे

आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी का फेवरेट डायलॉग पता है क्या है? मेरी मम्मी का फेवरेट डायलॉग है फॉर एवरीथिंग, बस फोन में घुसी रहो। मेरी तबीयत खराब हुई तो फोन, मार्क्स कम आए तो भी फोन, थकान हो गई तो फोन, पिंपल है तो भी उसकी वजह से फोन फोन फोन फोन फोन फोन फोन। तो आपकी क्यूट सी मम्मी का क्यूट सा डायलॉग क्या है मुझे जल्दी से बताइए। और करना क्या है आपको? आपको मुझे ईमेल करना है, जल्दी करिए। ज्योति बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है आपके ईमेल्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं एक खूबसूरत गाना।

0: 1:19 हो गए और 7 में हो गए हैं ठीक 32 सेकेंड्स। ज्योति बड़ी बेसब्री से आपकी ईमेल्स का इंतजार कर रही है। ईमेल आईडी हमारा वही पुराना वाला fmakashvanilakhnow@gmail.com। इससे पहले कि मैं आपकी ईमेल्स लेना शुरू करूं, मैं एक बार फिर बता दूं कि माँ तो बड़ी क्यूट होती है ना। कुछ भी कहे कुछ भी करे, उसकी हर अदा उसका हर अंदाज दुनिया से अलग होता है। और मुझे लगता है कि एक सुपर पावर होती है हर माँ के पास, वो सुपर पावर जिसे वो पलक झपकते ही जान लेती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब CIG से भी ज़्यादा ज़बरदस्त काम करने वाली है आपकी और मेरी माँ। लेकिन ये मम्मियाँ ना इतने डायलॉग और यही डायलॉग से इन्हें बनाते हैं दुनिया से ज़्यादा क्यूट। तो मैंने अपनी मम्मी का डायलॉग आपसे शेयर किया क्योंकि उनके हिसाब से दुनिया में जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं फ़ोन लेकर के बस बैठी रहती हूँ। आपको क्या लगता है, आपकी मम्मी के दिए हुए कोई ऐसे ताने या फिर मम्मी के कोई ऐसे डायलॉग, प्लीज डू शेयर विद मी।
1: ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठी है। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: कंप्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: एक बजकर 25 मिनट और ठीक 48 सेकंड्स आप हैं इन द प्रोग्राम HPTB यानी कि होटो पे तेरी बात। गुलफशा सिद्दीकी जी का ईमेल आया है, संडीला से लिख रही हैं, मेरी अम्मी मेरे सोने से बहुत परेशान रहती है। जब मैं कहती हूँ कि थोड़ी तबीयत खराब लग रही है तो मेरी अम्मी कहती है और सो जाओ, सोने से थकान रहती है। ओके, ये तो भाई मैंने भी बहुत ज्यादा सुना है। अगर मम्मी ये बोल दे ना सो जाओ ठीक हो जाओगी, तो बस आप समझ लीजिए भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। अब मतलब जबरदस्त ऐसी पढ़ने वाली कि बस पूछो ही मत। आगे लिखती है गुलफशा सिद्दीकी कि अब मैं खुद 3 बच्चों की अम्मी हूं तो दिन में नहीं सो पाती हूँ, तो अपनी अम्मी को कहती हूँ अब खुश, अब आपकी नवासे लोग सोने ही नहीं देते मुझे, अब आप खुश, तो अम्मी हंसने लगती हैं। अच्छा एक और बड़ी क्यूट सी बात होती है मम्मियों की, अपने टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट कि भैया आप पूछो मत। किसी ने अगर कह दिया कि मम्मी आ रही है तो बिल्कुल खौफ, और जहां वो नानी बनेंगी या दादी बनेंगी तो आप देखिए भैया बिल्कुल 100% उनका तेवर ही बदल जाएंगे, पूरी तरह से जेंटल पेरेंटिंग उनको याद आ जाएगी। बात बात में कहेंगी अरे अरे डांटने से बच्चे ढीठ हो जाते हैं, डांटा नहीं जाता। ऐसे में दिमाग में आता है कि मम्मी ये जेंटल पेरेंटिंग तब कहाँ थी जब हम छोटे छोटे मासूम बच्चे हुआ करते थे। बट जो भी है जैसे भी है ये जरूर कहेंगे कि मास्क के होने से कितनी खूबसूरत हो जाती है दुनिया, है ना। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आप सबके ईमेल्स का। मोनू सेठ और सुधाकर जाधव जी का भी ईमेल है। सुधाकर जाधव जी कह रहे मातृ दिवस की शुभकामनाएं। मोनू सेठ कह रहे हैं ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमा कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था जब माँ ने मुझे गोद में उठाकर प्यार किया था, रुकती है मेरी कलम तो सिर्फ एक बात पर, क्या लिखूं मैं उस माँ पर जिसने मुझे खुद लिखा है। ज्योति जी मैं भगवान ओके मैं ये मानता हूँ कि माता पिता ही मेरे भगवान हैं। That's so sweet. लेकिन जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें तो हम अपनी मम्मी से ऑफ कोर्स करेंगे आज के दिन, और आज के दिन क्या दिन ही करते हैं, उनको हग करेंगे, उनको अच्छी अच्छी सी बातें कहेंगे।

उनको फूल लाके देंगे, उनको गिफ्ट भी देंगे, लेकिन ऐसे में चलिए थोड़ा सा चटपटा ट्विस्ट भी देते हैं इस प्रोग्राम को, याद करते हुए वो डायलॉग्स जो कि मम्मी स्पेशल है। एक और डायलॉग मेरी मम्मी का, शक्ल देखते ही सब कुछ समझ जाना और फिर ये कहना, ये मत कहो कि सब ठीक है, यूं ही धूप में बाल सफेद नहीं किए मैंने। वैसे मैंने कभी मम्मी के सर पर एक भी सफेद बाल नहीं देखा, ट्रूली स्पीकिंग, फिर भी ये डायलॉग बार बार लगातार आता ही रहा है। आपकी मम्मी का कौन सा खास डायलॉग है मुझे बताइए, आपको बस ईमेल करना है और ज्योति आपकी मम्मी के सुपर डुपर हिट डायलॉग को करेगी एयर।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: एक बजकर 33 मिनट और 54 सेकंड हो गए हैं। आप हैं ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम HPTV और आज ज्योति आपसे बोल रही है कि आपकी मम्मी का ऐसा कौन सा डायलॉग है जो कि मतलब बिल्कुल उनका ट्रेडमार्क है। रामपुर से चंदन टुरेहा ने लिखा है, दवा जब काम नहीं आती तो वो नजर उतार देती है। माँ है साहब, वो हार कर भी मुझे जीत का उपहार देती है। भाई वाह, जन्नत की हर गली का रास्ता शायद उसकी दुआओं से होकर गुजरे। वो अपने आंचल में ही अपनी पूरी कायनात उतार देती है। रामेश्वर जी का ईमेल है, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से। रामेश्वर कठेरिया उमा कांति कठेरिया, कठेरिया पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार ने मिलजुल कर ईमेल किया है। प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा भाई, और अच्छा लगता जब आप कोई बढ़िया सा एकदम झिनचक वाला मैसेज भेजते हैं। श्यामू चौहान जी का भी ईमेल आया है। सुधाकर जाधव जी का एक और ईमेल ये लिख रहे हैं, माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, और ये बात साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जब आप स्ट्रेस में हो और ऐसे में अगर आप अपनी मम्मी की आवाज़ सुन लेते हैं, अपनी मम्मा से बात कर लेते हैं, उनके पास बैठ जाते हैं, भले ही आप उन्हें अपने दिल की बात ना कहें, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना वो कंट्रोल्ड हो जाता है। तो ये मैं नहीं कहती, ये एक प्रूवन ट्रूथ है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि माँ का नाम ही इतने सुकून का एहसास देता है कि भाई क्या कहे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि माँ तो माँ है, और जब माँ जबरदस्त टाइप के डायलॉग्स मारती है तो भाई वाह, उसके बिना तो बचपन हमारा अधूरा सा रहता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आध और ईमेल ले लेते हैं। एक और ईमेल आया है हमारे पास में रश्मि का, वो लिख रही है कि एक डायलॉग सुनते सुनते सुनते सुनते इतनी बड़ी हो गई, घर है कोई धर्मशाला नहीं कि तुम्हारे हिसाब से चलेगा। भाई ये भी एकदम सुपर डुपर हिट डायलॉग है मम्मियों का, नो डाउट। कहीं पर बोला जाता है कि होटल समझ रखा है क्या, जब भी मन किया घर चले आए। कहीं कहा जाता है कि धर्मशाला बना कर रखा हुआ है, बट यस ये डायलॉग भी बड़ा फेमस है जो मुझे लगता है यूनिवर्सल टाइप का है। सदियों से मम्मियां बोलती रही हैं और सदियों तक शायद आगे भी बोलती रहे हैं ना। तो आपकी मम्मी का अगर कोई खास डायलॉग है जो कि आपको याद आ रहा है तो प्लीज प्लीज प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। हमारा ईमेल आई डी वही पुराना fmakashwani@gmail.com। मेरा नाम ज्योति मिश्रा और आज सुन रहे हैं 107 FM रेनबो।

ढेर सारे ईमेल्स मेरे सामने आ गए हैं। बाबू अंसारी जी का ईमेल है देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से। ये लिख रहे हैं कि प्रोग्राम पसंद आ रहा है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि आई लव माय मॉम। जी हाँ, माँ से तो हम सभी प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ है तभी तो हमें, माँ की ही वजह से तो हम इस दुनिया में आए। और मुझे लगता है हर रिश्ते से 9 महीने पुराना होता है ये रिश्ता, और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा पुराना, क्योंकि हम अपनी माँ के ख्वाबों में, उसके ख्यालों में तो इस दुनिया में आने के बहुत पहले से आ जाते हैं, है ना। एमन नवाब का भी ईमेल है, इन्होंने लिखा है मेरी मम्मा का फेमस डायलॉग, ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं सुनती है, अभी इसको मारेंगे। अगर पढ़ती भी नहीं दिखाई दी तो इसके स्कूल बैग में आग लगा देंगे। और जब प्यार आ गया तो मेरा राजा बेटा, मेरा अनु। ओह दैट्स सो स्वीट, सो स्वीट। यही होता है ना कि मतलब मम्मी के तो चैनल इतनी तेजी से चेंज होते हैं कि पूछो मत। पहले नाराज हो गई तो कहिए आपको पता नहीं क्या क्या सुना दिया, हो सकता है कि मतलब डिशुम डिशुम भी कर दे, और 5 मिनट के अंदर खुद ही रोना भी शुरू कर दे, है ना। क्योंकि जब हमें दर्द होता है ना तो दरअसल चोट तो मम्मी को लगी होती है। एम के राज यानी मुनीश कुमार राज जी का ईमेल आया है, इन्होंने लिखा है माँ का दर्जा सबसे ऊंचा, माँ से बढ़कर कोई ना दूजा, गीले में सोकर सूखे में सिलाती है, आप चाहे भूल जाओ मगर माँ नहीं भुलाती है, तुम्हारे दर्द को देखकर खुद के दर्द को भूल जाती है, कुछ भी हो जाए मगर माँ को कभी ना भुलाना, इसके बराबर किसी की नहीं हो सकती तुलना। बिल्कुल सही बात आपने कही, माँ का रिश्ता जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये सबसे अलग होता है, सबसे जुदा होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि सिर्फ मीठी मीठी बातें अगर हम करते रहे तो फिर मतलब थोड़ा सा तो चटपटा, थोड़ा सा तो स्पाइसी होना चलता है, बनता है ना। तो अगर आपकी मम्मी का कोई खास ऐसा डायलॉग है जो कि आपको लगता है कि एकदम जबरदस्त है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक और भी डायलॉग है जो कि रुखसार ने शेयर किया है हमारे साथ, वो है कि जब मैं नहीं होंगी ना तो माँ की कद्र पता चलेगी। जी हाँ, ये भी एक यूनिवर्सल डायलॉग है जो तकरीबन हर घर में माँ बोलती है। और जैसे ही ये डायलॉग मम्मी के मुंह से आता है ना, हम एकदम इमोशनल हो जाते हैं, सब भूल जाते, लगता है अरे मम्मी आप जो कह रही हैं हम बस वही कहेंगे और वही करेंगे, बस आप ऐसी बात मत करिए। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या?

एक और भी बात होती है मम्मियों की बड़ी स्पेशल, खुद अपने बच्चे को कुछ भी कह लें, लेकिन अगर किसी और ने कुछ कह दिया फिर आप देखिए, क्योंकि उनके लिए तो उनका बच्चा, उनका राजा बेटा, उनका जिगर का टुकड़ा, उनकी रानी बेटी, उनकी चांद सितारा सब कुछ होती है ना। भले ही गुस्से में वो कुछ कहे कुछ करे, लेकिन दिल से तो वो यही चाहती है ना कि कोई और उनके बच्चे को कुछ और ना कहने पाए, कुछ और करने ना पाए। इसीलिए मतलब कहते हैं ना कि जिसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं ना, दुनिया उसके लिए बड़ी जेंटल हो जाती है। अगर आप अपने माता पिता से डांट खा लेते हैं तो दुनिया आपकी बड़ी इज्जत करती है, क्योंकि आप में अच्छी आदतें पड़ जाती हैं। तो मम्मी के हर ताने के पीछे, हर डायलॉग के पीछे कितनी बड़ी कहानी होती है, कभी सोच करके देखिएगा। क्योंकि दिल से तो वो हर वक्त यही चाहती है ना कि सारी दुनिया में मेरे बच्चे का नाम हो, हर कोई इसकी इज्जत करे, उस तक कोई भी परेशानी पहुंचने ना पाए। और इसीलिए तो जन्म

लेते हैं ऐसे ऐसे डायलॉग्स है ना। एक ये डायलॉग तो छूट ही गया था। सुधाकर जाधव जी बोल रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत मम्मी की चिल्ला चिल्ली सुनी है। ये भी सुना है कि बच्चों ढींगा मस्ती मत करो, किताबें ठीक से पढ़ो, तुम्हारे पापा को आने दो। ओके ये वाला डायलॉग तो भाई मैंने भी बहुत सुना है कि आने दो पापा को, देखती हूँ फिर। और सच जानिए, कभी पापा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मम्मी का ये डायलॉग सुनते ही कुछ ऐसी गिग्गी बनती थी कि जो भी मम्मी को कराना होता था, मतलब पढ़ाई हो, घर के काम हो, कमरे की सफाई हो, बस इस डायलॉग के थ्रू करा लेती थी। आज बैठ करके जब सोचती हूँ तो लगता है कि ये डायलॉग इतना वर्क क्यों करता था भाई। पापा ने तो कभी आवाज ऊंची करके भी बात नहीं की, लेकिन फिर भी आने दो अपने पापा को, आज तो बस तुम देखना। ये डायलॉग भी एक यूनिवर्सल डायलॉग है जो मुझे लग रहा है कि सालों से काम करता रहा है। राग रामेश्वर जी का ईमेल है, इन्होंने लिखा है माँ के लिए आलोक श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक गजल, बड़ी मुझे पसंद है। धूप हुई तो कोने कोने आंचल बनकर छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूना पन तन्हाई अम्मा, सारे रिश्ते जेठ दोपहरी गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर भीनी सी पुरवाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। भाई वाह क्या बात है, कितना प्यारा कितना मीठा लिखा है आलोक श्रीवास्तव जी ने। मोनू सेठ जी लिख रहे हैं, मोनू सेठ जी लिख रहे हैं माँ दिवस पर बस रोना आता है, सबकी स्टोरी में माँ साथ है लेकिन मैं अपनी स्टोरी कैसे लगाऊं। मोनू जी दिल में झांक कर देखिए, माँ हमेशा आपके साथ है, आपकी हर बात में, आपके संस्कारों में, आपके ख्यालात में, हर चीज़ में आपकी माँ हमेशा आपके साथ रहने वाली है। और अगर हमें कभी ये महसूस होने लगे ना कि माँ साथ नहीं है, तो उस वक्त अपने किसी भाई बहन का चेहरा थोड़ी देर देख लीजिएगा, किसी में तो माँ की झलक जरूर मिल जाएगी, हो सकता है आप ही में हो वो झलक, है ना। मुनेश कुमार राज ने लिखा है मेरी माँ की बात याद आ गई, और ये कि जब कभी बर्तन तेज पटक रही है तो मतलब बहुत ही गुस्सा है। और हाँ ये वाला डायलॉग बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, इन्होंने लिखा है कि पैसे पेड़ पर नहीं फलते, जब कभी कमाओगे तब पता चलेगा। भाई हाँ ये तो भूली पड़ी थी मैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने याद दिला दिया मुनेश कुमार राज जी। ये भी डायलॉग हम सब ने अपनी मम्मी से सुना है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जब कमाओगे ना, जब खुद मेहनत करनी पड़ेगी तब पता चलेगा। नीलू शर्मा ने रूपपुर चंदेला से लिखा है हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ, जब हंसी है माँ तो हर गम भूल जाता हूँ, माँ की ममता अनमोल रतन उसे रोशन मेरा तन मन, दर्द छुपा ले मुस्कुराकर रख दे खुशियां बिछाकर, वो माँ के ही आंचल के तले जन्नत है। सारे सुनने वालों को, नीलू शर्मा, सारा, पीहू, रोशनी और बबीता को भी, एंड मैथ्स दी, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इसको जो आपने लिखने की कोशिश की है, शायद सही पढ़ा है, हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी आप सबको भी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। प्रवीण जी, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, ये रहे, आंखें हैं या बटन। भाई भाई भाई क्या याद दिला रहे हैं आप, मतलब ये भी बहुत बहुत बहुत ही कॉमन डायलॉग है, देर से नहाएगा तो तेरे कपड़े नहीं धुलूंगी, खाना क्यों नहीं खा रहा, नहा ले नहीं तो चेहरे पर फुंसियां हो जाएंगी। कितने सारे डायलॉग आपने लिख दिए प्रवीण जी, और सभी एक से बढ़कर एक। और ये वाले जो है ना कि आंखें की बटन, भाई मुझे लगता है पता नहीं मम्मियों में ऐसा क्या होता है कि जो चीज आपको बिल्कुल नहीं मिल रही होती है, सेम जगह आप 10 बार देख चुके होते हैं, अचानक मम्मी आएगी और वहीं से वो चीज दे देगी। ऐसे में मम्मी का इरिटेट होना तो बिल्कुल लाजमी है ना, लेकिन मम्मी कहाँ से पा जाती है वो चीजें, ये सीक्रेट अनकोड करना, मतलब डीकोड करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। पिंकू सोनी परिजात धाम टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे बोल रहे हैं सबको। तो जी हम सब की भी तरफ से आप सबको ढेरों ढेर बधाइयां आज के खास दिन की। तो चलिए
बस इसी के साथ भी प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो चला है, 1:53 और ठीक 24 सेकंड्स होने वाले हैं। अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए।

अभी आपके साथ कई घंटे रहने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जो कुछ घंटों का आपका और मेरा साथ है ये बहुत खूबसूरत साबित होगा। अगले पूरे घंटे हॉटमेल में आपकी ईमेल्स पढ़ूंगी और उसके बाद सतरंगी दुनिया में आज का रंग होगा थोड़ा स्पेशल, थोड़ा सा डिफरेंट, बिल्कुल क्लीशे टाइप का नहीं होगा। तो प्रोग्राम जरूर सुनते रहिए क्योंकि आज ज्योति लेकर आई है आपके लिए बहुत कुछ बेहद खास। Darling,

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
2: पुरानी जींस और गिटार
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर रात को फुर्सत के वो पल
3: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की
0: सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ

नमस्कार और सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45

0: जन भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न सत्रों में आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा,
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
2: Bharat ki janta keh rahi hai ki hame peed chahiye, hame game nahi, solutions chahiye, hame राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
1: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समय मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ

0: அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं.
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा. सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे. आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले. आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं. ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा. एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब

0: के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रील्स करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों की खुशी के लिए अपने अनगिनत सपनों और सुखों का त्याग कर देती है ममता की छांव। भाई वाह, तुलसी मस्कीन का एक और ईमेल अभय प्रताप सिंह ने लिखा है, प्यार करके वो कभी बेवफा नहीं होती, एक वही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। मैं समझ रही हूँ अपनी माँ की बात की है ना। अभय सिंह कल्याणपुर लखनऊ से ईमेल आया है, हमें भी शामिल करें, इंतजार कर रहे हैं। जी हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आपका ईमेल पढ़ सके। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीचू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोलर कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, इन सब ने मिलजुल कर ईमेल किया है। दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह का भी ईमेल आया है, मुंदी चक भागलपुर बिहार से, आंज एंड एंड एंड सुजीत केशरी जी लिख रहे हैं, हम आपके नए लिसनर हैं, कुछ ही दिन हुए हैं रेडियो सुनते हुए जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े। आगे लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पिपरिया से ईमेल किया है सुजीत केशरी, सुनील केशरी, झिलमिल केशरी, कृष केशरी अपना नाम सुनने का इंतजार कर रहे हैं। ये लीजिए जी, इंतजार आपका पूरा हुआ है ना। कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्तान रानी, नंदिनी और अंजलि का भी ईमेल आया है। एंड रमाकांत सिंह जी बोलते हैं, मातृ दिवस को साल में एक दिन नहीं हर दिन मनाए, जीवन भर मातृ दिवस और पितृ दिवस होना चाहिए, तभी मातृ और पितृ दिवस सार्थक होंगे। मदनपुर जिला लखीमपुर खीरी से ईमेल किया है इन्होंने। ज्योति बहना शामिल कर लीजिए, कह रहे हैं सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ सिटी से विमला अनेजा के साथ गाने की फरमाइश भी इन्होंने की है। नैनन में है जलभरा आंचल में आशीष, तुमसा दूजा नहीं यहाँ तुम्हें नवावें शीश, रही लहू से सींचती काया तेरी देन, संस्कार सारे दिए अद्भुत तेरा प्रेम। माँ का प्यार दुनिया की सबसे सच्ची दुआ है, माँ घर नहीं पूरी दुनिया होती है, रातों को भी जाग कर हमें लिया है पाल, ऋण तेरा कैसे चुके सोचे तेरे लाल। मोनू सेठ जी ने ये खूबसूरत ईमेल लिखा है और एकदम माँ के होने से ही घर घर जैसा लगता है। अब देखिए ना, हम जब छोटे भी होते हैं घर आए और अगर मम्मी नहीं है तो कैसा फील होता है, एकदम इनकम्प्लीट, पूरे टाइम बस ये लगा करता है कि बस मतलब कुछ भी हो मम्मी आ जाए, अगर मम्मी नहीं है तो घर आकर के फायदा ही क्या है ना। सयारा फिल्म का सॉन्ग बर्बाद, आप ही में से किसी एक की फरमाइश पर, आपके नाम आपके पास।

ज्योति सिस्टर को प्यार भरा नमस्कार आदाब। शेरवानी स्कूल गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, प्यार भरा ईमेल पहुंचा है। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मिर्जा, रिजवान भाई, सबसे पहले ज्योति बिटिया को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। माँ तो माँ होती है, आगे शब्द नहीं है। धन्यवाद। इतनी मोहब्बत आप सबसे मिलती है, कोई इतने प्यार से बिटिया बोलता है, कोई इतने प्यार से बहन बोलता है, कोई इतने प्यार से दोस्त बना लेता है, कोई इतनी इज्जत देते हुए माम लिख देता है। सच कभी कभी लगता है कि कितनी खूबसूरत जिंदगी है ना, और कोई क्या चाह सकता है अपने जीवन से। तो आप अगर मेरी बात कहें तो मैं बस स्पीचलेस हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आप सबकी मोहब्बत के लिए। लेकिन हाँ, कभी कभी बड़े गुस्से वाले भी ईमेल आ जाते हैं। आपको ईमेल पसंद नहीं आया क्या? आपने सिर्फ नाम लिया, आपने हमारी पसंद का गाना नहीं प्ले किया। अरे भाई, ठहरिए ठहरिए, रुकिए, थमिए। जो मैंने पहला गाना प्ले किया था जिनकी पसंद का था, वो अभी बार बार उसी वाली, मतलब प्रेम रोग फिल्म का ये गलियां चौबारा, बार बार बार बार मुझे ईमेल कर रहे हैं कि आपने गाना प्ले नहीं किया। अब आप ही बताइए, ये गाना प्ले हुआ है ना? सबसे पहले प्ले हुआ है, मुझे लगता आपने सुना ही नहीं। कभी कभी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपने हमारी जगह का नाम नहीं लिया। भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त की कमी होती है या फिर जगह का नाम छूट जाता है। और हाँ, ये वाली शिकायत, आपने हमारा ईमेल नहीं पढ़ा, जी कभी जानबूझकर ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इस प्रोग्राम में इतने सारे ईमेल आते हैं कि कभी कभी कोई कोई ईमेल मिस हो जाता है। हालांकि आप जानते हैं, लास्ट में मैं सबके नाम लेने की कोशिश करती हूँ, फिर भी अगर बाय चांस आपका नाम मिस हो गया तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, है ना? वैसे अभी इसके बाद भी मुझे आपके साथ बने रहना है पूरे 4 बजे तक, तो अगले प्रोग्राम में मेल कर सकते हैं, मैं उस प्रोग्राम में भी ईमेल ले लूंगी। फाइन, चलेगा ना? थैंक यू। इसी को तो कहते हैं दोस्ती, इसी को तो कहते हैं मोहब्बत, इसी को तो कहते हैं प्यार। राजकुमार डूडी का भी ईमेल आया है, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी के साथ मिल करके, संदीप मक्कड़ जी ने, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जलंधर से ईमेल किया है। एमके राज साहब का एक और ईमेल, तकरीबन हर प्रोग्राम में ये ईमेल करते हैं। इन्होंने लिखा है, कम से कम एक गाना तो माँ के नाम बजा दीजिए। भाई, आपने गुड मॉर्निंग में भी ढेर सारे गाने सुने माँ के नाम, और अभी आप बाकी के बचे टाइम भी ढेर सारे गाने सुनेंगे माँ के नाम, है ना? फिर भी आपने कहा है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। वैसे आपको याद दिला दूं कि रात का भी प्रोग्राम अभी बाकी है, तो वही वही गाने की आप बार बार सुनना चाहेंगे, नहीं ना? एंड यस, आपने ये जो कहा कि एक गाना तो बजा दीजिए, हेल्थ एंड फिटनेस में जो पहला गाना बजा था ना, वो था मम्मा, याद आया? आगे लिखते हैं, माँ का कर्ज कभी अदा नहीं होगा, माँ का ऐसा रिश्ता है कि फिर कभी कोई जुदा नहीं होगा। ने डेडिकेट कर रहे हैं मुझे और मेरे साथ साथ और भी ढेर सारे लोगों को। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा।

मैं सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी ने ईमेल किया है, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। तो चलिए अब रुकते हैं, थमते हैं और आप ही भी से किसी एक ही पसंद का ये गाना प्ले करते हैं। फिल्म का नाम सपने साजन के। इस गाने का खूबसूरती, मतलब इस प्रोग्राम की यही तो ब्यूटी है, यही तो खूबसूरती है कि कई बार ऐसे गाने सामने आ जाते हैं जिन्हें शायद हम भूल चुके थे।

भाई भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। कैसे भूल सकती हूँ कि टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपके ढेर सारे ईमेल्स मेरे सामने, कुछ ईमेल्स काफी नाराजगी के भी हैं। मेरा मेल कहाँ गया? शामिल करें, काफी देर हो गई। ये कह रहे हैं नबी हसन साहब। तो जी, आपकी नाराजगी सर आंखों पर, पूरी कोशिश हो रही है आप सबके ईमेल्स को पढ़े जाने की। ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, जो दिल करे मोहब्बत वो दिल तेरे पास नहीं। अगर मैं होता बादशाह तो कानून ऐसा बना देता कि दिल तोड़ने वाले को सजाए मौत सुना देता। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे ये सारी बातें मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी, बहुत ही जबरदस्त। वकील अहमद साहब लिख रहे हैं, मदर्स डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, माँ साथ है तो उसकी कदर क्या करो। फरकान अली मोहम्मद उमर जी, बिल्कुल ठीक बात है, माँ की तो कद्र करनी ही चाहिए। जावेद अख्तर साहब का भी ईमेल आया हुआ है और ये कह रहे हैं रेशमी नगरी मुबारक पुर आजमगढ़ से शमसुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन तूबा आफरीन शमीम अख्तर अंसारी के साथ ईमेल कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। डीके भी परिहार, कार्यक्रम हॉटमेल, समय 2:45, मैसेज भेजा फिक्स 2 बजे, कोई अता पता नहीं आखिर कितना इंतजार करे और कितने मैसेज भेजने पड़ेंगे। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, आखिर में हमें सिर्फ मायूसी मिलती है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार, भाई ये बात तो ठीक नहीं है, नॉट फेयर। आपके ईमेल तो डेली पढ़े जाते हैं, आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं दोस्त, कैसे ऐसी बात कर सकते हैं। सुनील पाठक जी का भी ईमेल आया हुआ है, ये लिख रहे हैं किसके साथ मिलजुल कर, किसके साथ मिलजुल कर, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक जी लिखा है, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, आपका दिल से शुक्रिया। अरे ज्योति मैम, मेरा मेल भी शामिल करो, हम भी सुन रहे हैं। ये लिख रही है साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, मेघ अंसारी, ममता, निशा अंसारी, संदीला से। भाई ईमेल जरूर शामिल हो रहे हैं और होंगे। अब देखिए, जावेद अख्तर साहब ने ईमेल पहले भी किया था, उनका ईमेल पढ़ा गया, फिर इन्होंने भेज दिया। इसमें होता क्या ना कि कई बार ईमेल्स नीचे कहीं खो जाते हैं, तो तभी तो कहती हूँ कि एक बंदा अगर एक ही ईमेल करे तो सबको मौका मिले, है ना। गावन थाना से पंजाब हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी कहते हैं, खुश रहो और खुशियां बांटो। जी बहुत खूबसूरत बातें आपने कही हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की। और आप फिलहाल एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, आप ही में से किसी का फरमाइश किया हुआ ये गाना फ्रॉम द मूवी खलनायक। अब मत कहिएगा कि माँ के ऊपर तो आपने कोई गाना ही नहीं प्ले किया। अब भाई माँ के नाम एक गाना क्या प्ले किया जाए, भाई माँ तो पूरी कायनात है ना। लेकिन फिर भी गाने तो आप तक पहुंच रहे हैं, माँ के भी, बच्चों के भी, हम सब के भी।

कितनी सही बात है ना, अपना बच्चा तो हर माँ को बहुत प्यारा होता है। सिर्फ माँ ही है जिसका प्यार कहा जा सकता है कि बिल्कुल सेल्फलेस होता है ना। तो एक बार फिर से हम सबको मातृ दिवस की, मदर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ। टाइम बहुत कम बचा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके नाम पढ़ लूँ। धर्मेंद्र छिपा जी, नॉट फेयर, नॉट फेयर, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आपका नाम, आपका मैसेज शामिल हुआ है। डी के पी परिहार, राधे कुमार, लोकेश संतोष एंड सुधाकर जाधव और विजय महोबिया, रोजी डी कैस्ट्रो, साई गायकवाड़, रमेश कुमार योगमाया, राजू मिगलानी, नवी हसन, शारुन नूर अंसारी, हीरमणि वर्मा, नीलू शर्मा, विजय महोबिया, कमलकांत गुप्ता, धर्मवीर भारती, गुलफशा सिद्दीकी, रोहित सक्सेना, दीपेश वर्मा, लोकेश संतोष काले, उत्तम कुमार भगत, आफताब अंसारी, सुजीत केशरी, लुबना अंसारी एंड संतोष काले जी, डीकेपी परिहार, वंस अगेन टीडी मल्होत्रा, अहमद फूल वाले, संदीप मक्कड़ जी, आंचल सेठ, मोइनुद्दीन अंसारी, अशोक कुमार जी, वकील अहमद, सदानंद मंदूर, सतीश अनेजा, रेणु मल्होत्रा, कृष्णकांत सिंह, आफ्ताब अंसारी, दिनेश वर्मा, सफरुद्दीन अंसारी, राहत हुसैन, आफ्ताब अंसारी, अजीत भावस्कर एंड दीपेश वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल्स के लिए। भाई देखिए, हो सकता है आपका ईमेल डिटेल में ना पढ़ा जा पाया हो, क्योंकि प्रोग्राम तो एक ही घंटे का होता है ना। हो सकता है कि आपकी पसंद का सॉन्ग भी आज प्ले ना हो पाया हो, बट इस प्रोग्राम के जरिए आप और हम एक दूसरे से जुड़े, मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर आपने भी इंजॉय किया होगा। तो अगली बार पूरी कोशिश की जाएगी कि जिनके ईमेल्स आज शामिल नहीं हुए या जिनकी पसंद के गाने आज प्ले नहीं हो पाए, उनको मौका मिले। ओके डियर, तो बस इसी के साथ जोती जाती है इजाजत इस वाले प्रोग्राम से। ये खूबसूरत गाना फिल्म हिना का आप ही में से किसी एक की फरमाइश पर मैं थोड़ी देर में फिर मिलूंगी लेकर सतरंगी दुनिया मदर्स डे स्पेशल। मदर यानी एक ऐसा ऐप जो कभी नहीं मांगता अपडेट।

102.2 FM पर कनेक्ट है आप सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो कानपुर के संग। घड़ी की सुई दिन के 3 बजा चुकी है दोस्तों, और आप सब जानते हैं कि ये टाइम है आपके फेवरेट प्रोग्राम म्यूजिक आर का, क्योंकि इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं आप भी अपनी ईमेल के साथ हमारे संग। इस प्रोग्राम में आज बातें भला क्या होने वाली हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, पर पहले जी हाँ, पहले आप गेस करिए इस गाने को जो कि प्रोग्राम का पहला गाना होगा। मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ मैं कौन हूँ प्रोग्राम को लेकर आज आपके संग हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो फ्रेंड मीनाक्षी। आप कहाँ से हमसे कनेक्ट होने वाले हैं अपनी ईमेल के द्वारा, जगह का नाम और अपना नाम साफ साफ लिखकर अपनी मेल में भेजें, और साथ ही जिस विषय से संबंधित मेल आप हमें कर रहे हैं वो बातें भी हमसे साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। आप सोच रहे होंगे बात तो मैंने बताई नहीं कि भला किस विषय पर आपको हमें मेल करना है, तो ये मैं जरूर बताऊंगी, इंतजार करिए। पहला गाना आ रहा है, अब तक गेस कर लीजिए, नहीं गेस कर पाएंगे तो फिर तो है ना आपकी अपनी रेडियो फ्रेंड आरजे मीनाक्षी आपके संग।

वाकई दोस्तों जिंदगी एक पहेली के जैसी ही तो होती है ना। कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। पर बात अगर हम पहेली बूझने की रोचक खेल की करें तो पहेलियों को हल करना जिंदगी की बहुत सारी उलझनों को सुलझाने में मदद करता है ना। फिलहाल आपको दे रही हूँ एक पहेली, ऐसे ही थोड़े ना प्रोग्राम करना है मुझे। एक पहेली आ रही है आपके लिए जिसका हल अगर आपको पता है तो आप हमें ईमेल करके इस पहेली का हल बता सकते हैं। पहेली क्या है? पहेली है रात में रोती दिन में सोती, यानी ऐसी कोई चीज है जो रात में रोती है दिन में सोती है, आपको उसका नाम बताना है। ऐसी कोई चीज जिसकी जरूरत हमें रात में पड़ती है, अंधेरे में पड़ती है। कुछ कुछ क्लू मैंने दे दिया है आपको, अब देखते हैं कि आप अपने दिमाग के घोड़े कहां तक दौड़ा पाते हैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ कि रात में रोती दिन में सोती, बताओ भला है क्या वो चीज। 102.2 FM पर आरजे मीनाक्षी आज लेकर आई है पहेलियों वाली बातें, कुछ गाने भी ऐसे ही। सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट से जुड़े हैं आप और आ रहा है आप तक प्रोग्राम का अगला गाना।

भाई मैं तो ये बोल नहीं सकती कि बूझिए मेरा नाम, क्योंकि मेरा नाम तो आप सभी जानते हैं, आवाज से ही पहचान रहे होंगे, और नहीं भी पहचान रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रही हूँ इस बात का। प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैं अपना नाम खुद ही आपको बता देती हूँ। तो फिलहाल पहली बूझने वाली बात मैंने की थी और पहली आपसे पूछी थी कि क्या पूछी थी, रात में रोती है दिन में सोती है, बताओ भला क्या। तो भाई बहुत सारे लोगों की मेल तो हमारे पास नहीं आई है, लेकिन तुरंत ही जैसे ही मैंने गाना प्ले किया, कहते हैं ना चटपट जिसे कहते हैं, मेल हमारे पास भेजी है मनोज बंसल जी ने। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज बंसल जी आपका कि आपने इतने ध्यान से पहेली सुनी। आपने हमें मेल किया है हांसी हरियाणा से और पहेली का एकदम सही उत्तर भी लिखा है, रात में रोती दिन में सोती मोमबत्ती। जी हाँ, मोमबत्ती जब अंधेरा होता है तभी हम जलाते हैं और खूब पिघलती है तो लगता भी है कि रो रही है, और दिन में तो उसके जलाने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं ना। तो एकदम सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे जो श्रोता केवल फरमाइशी गीतों के लिए हमें मेल कर रहे हैं, तो उनसे मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है वो है म्यूजिक आर, और आज म्यूजिक आर में बातें हो रही हैं पहेली बुझने वाले रोचक खेल की। तो आपको इस विषय से रिलेटेड अगर आपके पास कोई बात है, कोई याद है, तो वो हमारे संग साझा करें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कभी कोई पहेली किसी से पूछी ना हो या कभी किसी के द्वारा दी गई पहेली बूझी ना हो। भाई लाइफ ही के अगर हम बात करें तो लाइफ ही हमारी एक पहेली जैसी है ना। हमारा पहेली जो बुझने वाला जो थीम आज चल रही है, उसके लिए आपको जो आंसर देने हैं वो हमारी ईमेल आईडी पर देने हैं। ईमेल आईडी सभी को पता है, लेकिन जो नए नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं तो उनके लिए मैं बताऊंगी जरूर। हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। साथियों पहेली बुझना सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक बेहतरीन दिमागी कसरत है, जैसे कि अभी मनोज बंसल जी ने ही की, जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद करती हैं। क्योंकि पहेलियों को जब हम सुलझाते हैं ना तो दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच संबंध मजबूत होते हैं, जिससे कि सोचने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। अगली पहेली, जी हाँ अगली पहेली आप तक आ रही है, भला क्या है। जी हाँ अगली पहेली है, वो क्या है जो वर्ष में एक बार और रविवार में दो बार आता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वो क्या है जो वर्ष में एक बार और रविवार में दो बार आता है। उत्तर आपको हल करके से भेजना है airkansomedia@gmail.com पर। अगर आप इस पहेली का हल नहीं भी कर पाएंगे तो मैं हूं ना बताने के लिए। फिलहाल उम्मीद करती हूं कि हमारे श्रोता ध्यान से सुन रहे होंगे और हमें मेल जरूर करेंगे। तो एक बार फिर से जाते जाते, क्योंकि आप केवल सुन पा रहे हैं, तो फिर से मैं बोल देती हूँ, वो क्या है जो वर्ष में एक बार और रविवार में दो बार आता है। सोचिए, दौड़ाइए दिमाग के घोड़े और हमें ईमेल आईडी पर सेंड जरूर करिए अपने आंसर। आ रहा है आप तक फिलहाल ये पहली वाला अगला प्यारा सा गाना।

भाई इसीलिए अपने प्रोग्राम में अक्सर हम कहते हैं कि मोबाइल गेम से बच्चों को थोड़ा दूर रखना चाहिए और साथ ही साथ बड़े भी दूर रहे। वजह एक ही बात है ना, तो दिमाग जो है ना वो उसकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। फिलहाल पहली इतनी कठिन नहीं थी दोस्तों कि आपने इसका हल अभी तक हमें नहीं करके भेजा है। और ये पहली थी कि वो क्या है जो वर्ष में एक बार और रविवार में दो बार आता है, और मैं आगे बढ़ जाऊंगी तो मैं खुद ही भूल जाऊंगी फिलहाल कि मैंने क्या पूछा था आपसे। तो मैं इसका आंसर पहले आपको बताते हुए चलती हूँ। वर्ष में एक बार और रविवार में दो बार आता है अक्षर वा। जी हाँ, जब आप वर्ष लिखते हैं तो वा एक बार आता है और रविवार जब आप लिखते हैं तो वा दो बार आता है। जब कभी पहेलियां सुलझाते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन मजबूत हो जाता है दोस्तों, दिमाग उलझता है पहेलियों को सुलझाने में, है ना। वैसे भी जब कोई बात हम सुलझाते हैं तो क्या होता है, एक उंगली हमारे बालों में सरसराहट सी करती है सोचते हुए कि क्या होगा इसका हल, क्या है इस समस्या का हल। जब पहेलियां बूझते हैं तो अनावश्यक तनावों से फिलहाल तो दूर हो जाते हैं ना, याददाश्त भी हमारी तेज हो जाती है, कहते हैं ना शार्प माइंड। ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे तो आती है पर कभी ऊपर नहीं जाती, ये है प्रोग्राम की अगली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे तो आती है पर कभी ऊपर नहीं जाती। आप इस पहेली का हल सोचिए, बताइए। और अगर आप पहली का हल नहीं भी बता पा रहे हैं तो फिलहाल पहली बूझने वाला जो एक गेम है, बहुत ही रोचक गेम होता था कभी और आज के बच्चे खेलते हैं लेकिन बहुत कम इस तरह का होता कि खेलें। अगर हम पेपर वगैरह में भी देखते तो वर्ग पहली, सुडोको, ये सुडोको जैसी जो पहेलियाँ होती हैं ये भी दिमागी कसरत के लिए बहुत अच्छी पहेलियाँ होती हैं। मतलब किसी भी चीज़ का जब हम हल निकालते हैं, बूझो पहली, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ टेढ़े मेढ़े अलबेले से शब्द होते थे और उसका एक सटीक सा जवाब होता था, तो हम शब्दों की माला में उलझ ना जाएं और ठीक जगह पर आएं। तो इसी को जो खेल को पहली बूझो पहली होती थी। और कभी जब बच्चे जब बुजुर्गों के आसपास होते हैं तो बुजुर्ग अक्सर बच्चों से इसी तरह के सवाल करते हैं। और साथ ही साथ एक इनामी योजना भी होती है कि आपको अगर इस आंसर का जवाब हमें सही सही देंगे तो आपको आपकी मनचाही चीज मिलेगी। और बच्चे बिल्कुल अपने टॉफी चॉकलेट और अच्छी अच्छी चीज़ों के चक्कर में ढूंढ लाते हैं पहेलियों के सही जवाब। खुद नहीं आता तो पूरे घर में, मोहल्ले में, जहाँ कहीं से पूछते हैं और अब तो गूगल सर्च भी मार लेते हैं। फिलहाल आ रहा है आप तक प्रोग्राम का अगला गाना, म्यूजिक का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर आरजे मीनाक्षी के संग। और ये रहा प्रोग्राम का अगला गाना आपके लिए।

दिन के 3:28 हो रहे हैं दोस्तों, 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर चल रहा है प्रोग्राम क्या म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा है, और प्रोग्राम को लेकर आज आपके संग हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त एंड प्रोग्राम की होस्ट आरजे मीनाक्षी। आज बातें पहेलियों से रिलेटेड हो रही है कि पहेली कभी आपने बूझी है, और अगर बूझी है तो कोई याद हो, कोई बात हो उससे रिलेटेड, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। कहाँ? हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com पर। जब पहेलियां सुलझती हैं तो दिमाग उलझता है, और दिमाग को इस तरह से उलझाना दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। कभी ना कभी पहेली का गेम हम सब ने खेला है, और कभी ना कभी किसी न किसी से पहेलियां पूछी भी हैं। फिलहाल मैं भूल ना जाऊं तो मैं आपको बताती चलूं कि इस गाने से पहले मैंने आपसे पूछी थी पहेली। वो पहेली थी कि ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे तो आती है पर कभी ऊपर नहीं जाती। बता रही हूं ना, वो चीज है बारिश, जो आसमान से नीचे तो आती है दोस्तों पर बारिश धरती से ऊपर नहीं जाती है।

और देखिए अभी अभी एक मेल हमारे पास आ गई। हालांकि ये कौन है, ये है मिताली है इनका नाम, उन्नाव से इन्होंने हमें मेल किया है। पहेली का हल तो आपने भी नहीं भेजा है मिताली, बट आपने जो मैसेज भेजा है वो मैं शेयर जरूर करूंगी। आपने अपनी मेल में लिखा है पहेली वो है जिसका दोहरा या छिपा हुआ एक अर्थ होता है, जिसे सुलझाने के लिए एक पहेली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गूढ़ रहस्य होते हैं जो आमतौर पर लाक्षणिक या प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त की गई समस्याएं होती हैं, जिनके हल के लिए थोड़ी चतुराई की जरूरत होती है और सावधानी पूर्वक चिंतन की भी जरूरत होती है। पहेलियां बड़ी जटिल होती हैं, तो इनका हल बहुत ही धैर्य के साथ देना चाहिए। कभी कभी पहेलियों का हल उसी पहेली में जो शब्द होते हैं ना, उनमें ही छुपा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिताली आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं अपनी ईमेल आईडी आप सभी के संग शेयर कर दूं। हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMADIA@gmail.com। 102.2 FM पर म्यूजिक और प्रोग्राम चल रहा है और पहेलियों पर हो रही बात आरजे मीनाक्षी है जिस प्रोग्राम को लेकर आपके संग। अगर आपकी भी कोई बात हो, कोई याद हो पहेलियों से रिलेटेड, तो आप हमें हमारी इसी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। इंतजार है आपको प्रोग्राम में अगले गाने का, तो आ रहा है ये वाला गाना आप तक।

भाई मनोज बंसल जी ने एक बार फिर से हमें मेल किया है और इस बार भी उनका आंसर सही है। मैंने आंसर बताया था कि वो चीज जो नीचे से ऊपर से नीचे तो आती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाती, वो बारिश है जो कि धरती से आसमान की ओर नहीं जाती है बट आसमान की ओर से धरती की ओर आती है। और मनोज बंसल जी ने जो आंसर दिया है वो भी एकदम सही है दोस्तों। इन्होंने लिखा है कि धुआं एक ऐसी चीज है जो ऊपर की तरफ जाता है बट नीचे नहीं आता, तो ये भी आंसर आपका बहुत बहुत सही है। और साथ ही साथ इस बात से पता चलता है कि आपका फेवरेट गेम है बूझो पहेली। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े हैं। बाकी श्रोताओं से भी अनुरोध है कि भाई वो भी हमसे जुड़े, गीतों की फरमाइश नहीं करें। आज का जो दिन है याद रखिए कि आज 4 से 5 जाता है बैक टू बैक म्यूजिक प्रोग्राम, तो आपके जो फरमाइशी गीतों की आप हमसे फरमाइश करें तो वो ना ही करें, बल्कि पहेलियों से जुड़े हुए अपने जो संदेश हैं, जो बातें हैं वो हमारे संग साझा करें, हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। साथियों पहेलियां बूझने में सबसे ज्यादा भला मजा किसको आता है? बच्चों को, है ना। बच्चे होते भी बड़े जिज्ञासु हैं। जी हाँ, बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि क्यों कहां कैसे कब कौन, जी हाँ इन शब्दों से जहाँ बड़े अपना पीछा छुड़ाते हैं वहीं इन शब्दों के सहारे बच्चे हर बात की परतें खुलवाने में बड़े ही माहिर होते हैं। और उनकी ये जिज्ञासा ही है कि वो हर पहेली का हल ढूंढ लेते हैं। अच्छी बात है, लाइफ में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना होता है तो ये आदत अच्छी आदत है ये कहना चाहिए। मुन्नी चुनमुन और पप्पू से पहेली बूझने के बाद अगला गाना आ रहा है लाइफ पर ही कि कैसी हमारी जिंदगी पहेली जैसी है। गाना सुनवाती हूँ आपको, फिर आगे की बातें इस गाने के बाद।

0: दिन के 3:42 हो रहे हैं। 102.2 FM पर चल रहा है प्रोग्राम म्यूजिकार, और म्यूजिकार प्रोग्राम में आज बातें हो रही हैं पहेलियों वाले खेल की, और गाने भी कुछ इसी तरह के आपके लिए लेकर आई है आपकी अपनी रेडियो फ्रेंड आरजे मीनाक्षी। फिलहाल प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपसे मिलती हूँ, और कुछ मेल्स हमारे पास आ गई हैं उनको भी शामिल करती चलूंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ, ब्रेक खत्म हो चुका है। ब्रेक के पार मैं मिल रही हूँ आपसे, आरजे मीनाक्षी हूँ मैं। 102.2 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक और पहेलियों की हो रही है आज इस प्रोग्राम में बातें और गाने भी कुछ इसी तरह के आप तक पहुंचा रही हूँ मैं। पहेलियाँ अक्सर भाषा और शब्दों के खेल पर आधारित होती हैं दोस्तों। भाषा ज्ञान भी बढ़ता है और कल्पना व तर्क शक्ति भी बढ़ती है। बच्चे हो या बड़े, समय बिताने का ये रोचक तरीका होती है। पूछा भला किसी एक से जाता है, पर बूझने के लिए सभी लोग लग जाते हैं। फिलहाल हमारे पास एक मेल आ चुकी है। ये मेल हमें की है मंदना से नंदिनी गुप्ता जी ने। लिखती है कि पहेली बूझने में हम बहुत ही माहिर थे। सभी सहेलियां आसपास की इकट्ठा होती थी और एक दूसरे से अलग अलग पहेली रोज ढूंढ के लाती और आपस में पूछती थी। इससे इनका एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। जो सही उत्तर देता बहुत खुश होता तथा वाह वाह ही लूट लेता था। तब के दौर में इन्हें नहीं पता था कि इसके फायदे क्या हैं, बस मस्ती में ही सब चलता था। पर आज पता है कि इससे दिमागी विकास तेज होता है, सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। और अच्छा मैसेज है कि आज के बच्चों को भी मोबाइल से दूर रखा जाए तो अच्छा है। इस तरह के खेल अगर बच्चों को खिलवाए जाएं तो बच्चे हैं ना, आज भी इन खेलों में बहुत मज़े से शामिल हो जाते हैं। भाई बच्चों के तो मन का खेल होता है ना, थोड़ा खुरापात करने का भी मिल जाता है उनको एक मौका।

झांसी हांसी हरियाणा से मनोज बंसल जी ने एक और पहेली का हल भेजा था जिसे मैं आप देख पाई हूँ, और वो था कि वर्ष में एक बार और रविवार में दो बार क्या आता है। तो सही आंसर इनका ये भी है कि वो वार शब्द है। फिलहाल मैं इसका आंसर दे भी चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपने मेरे आंसर देने से पहले आपकी मेल आई होगी, मैंने ही ये मेल आपकी नहीं देखी होगी, और फिलहाल मैंने अब देख ली और शामिल भी कर ली है। बहुत खुशी हो रही कि आप लगातार हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। पिपरिये से कमलकांत गुप्ता केवल ये लिख रहे हैं कि भाई इन्हें आज पहेलियों वाला प्रोग्राम अच्छा बहुत लग रहा है, बट पहेली का हल नहीं दिया और पहेली से जुड़ी कोई बात आपने नहीं लिखी। कोई बात नहीं, आप हमसे यूं ही जुड़े इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मेल हमें मिली है, मिष्ठा जी की है ये मेल, और ये लिखती है कि स्कूल में पहेली का लेसन पढ़ते वक्त ये पहेली इन्होंने पढ़ी थी, जो आज भी दिमाग में इनके घूमती रहती है। शायद जीवन की भी पहली ये पहेली रही होगी मिष्ठा आपकी। वो पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद तो चलती नहीं लेकिन सबको चलाती है। नौबस्ता कानपुर से इन्होंने हमें मेल किया है और हल है सड़क। जी हाँ, सड़क खुद तो चलती नहीं बट सबको चलाती रहती है, और चलते रहने का संदेश भी तो देती है ना। फिलहाल मिस्टर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़ी। 102.2 FM पर चल रहा है प्रोग्राम म्यूजिक, और पहेलियों की हो रही है बातें, आ रहा है अगला गाना आपके लिए।

जी हाँ, शम्मी कानपुर से ही हमें लिखती हैं और आज इन्होंने हम नवा प्रोग्राम में भी अपनी मेल लिखकर भेजी थी। माँ के ऊपर बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखकर भेजी थी और पहेली पर भी इन्होंने बात लिखकर भेजी है। वो बात है क्या? जी हाँ, इन्होंने माँ का गाना भी सुना है तो फिर से ये माँ की यादों से जुड़ी हैं और इन्होंने लिखा है कि जब माँ घर पे नहीं होती है तो फिर उस दिन जो काम हमें खुद से करने पड़ते हैं ना, जैसे कि हमारा कोई सामान अगर हमें ढूंढना पड़ता है, कुछ भी, वो बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है उस दिन हमारे लिए। क्योंकि माँ तो बस हमारे मुंह से बात निकलती नहीं कि वह हमारे हाथों में वो चीज़ थमा देती है आकर। भाई माँ तो माँ होती है ना शम्मी, माँ बड़ी जादूगर होती है और हर पहेली का हल उसके पास होता है और स्पेशली वो पहेली अगर उसके बच्चों की समस्या से रिलेटेड हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया शम्मी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगली मेल शामिल हो रही है विकास जी की, नेहरू नगर से इन्होंने हमें मेल किया है। बाकायदा इन्होंने अपनी मेल में हेडिंग्स डालकर बातें लिखी हैं। लिखते हैं कि हाँ, मैंने हजारों पहेलियां बूझी हैं और मेरे साथ लोग रोज नई पहेलियां पूछते हैं। शायद लाइफ में रोज आने वाली प्रॉब्लम्स की ओर इशारा कर रहे हैं। पहेली बूझने से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। जी हाँ, पहली बात लिखते हैं कि दिमाग की कसरत। आगे लिखते हैं कि पहेलियां दिमाग को तेज करती हैं और सोचने की क्षमता बढ़ाती हैं। बिल्कुल ठीक विकास जी। आगे लिखते हैं कि लॉजिक और क्रिएटिविटी। जी हाँ, इनमें लॉजिकल रीजनिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों की जरूरत होती है और जो पहेलियों को हल कर लेता है ना, वो तो मास्टर होता है इन बातों में। मजेदार और एजुकेशनल। जी हाँ, अगर

पहेलियां बूझते हैं तो मजा भी आता है और कुछ ना कुछ शिक्षा हमें जरूर मिलती है। लिखते हैं कि ये सीखने का एक मजेदार जरिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी कि आप हमसे जुड़े और आज का जो विषय रहा ये भी बहुत ही रोचक रहा, लोगों के दिल तक पहुंचा पहेली वाला ये विषय। शुक्रिया आप सभी का कि आप हमसे जुड़े इस विषय पर। फिलहाल पहेलियों की बात हो रही है। भाई समय बिताने के लिए हमारे पास हाथों में आज की अगर बात करें तो मोबाइल होता है, हर बात का हल उसमें मिल जाता है, फटाफट हम गूगल सर्च कर लेते हैं। बट जब कभी नहीं होता है या बगैर मोबाइल के आप किसी पहेली को हल करें तो मजा तभी आता है ना, जब दिमाग को जोर देना पड़ता है। हम कहीं भी कुछ भी देख सुन लेते हैं मोबाइल के द्वारा, सारी दुनिया इस गैजेट के अंदर है और वास्तव में हम दुनिया से कट गए हैं। कभी जब उन बीते दिनों की याद करें तो जब कभी संगी साथियों या परिवार के लोगों के साथ इकट्ठा हुआ करते थे तो समय बिताने के लिए बहुत सारे रोचक खेल हुआ करते थे। उन्हीं रोचक खेलों में से एक खेल है बूझो पहेली। आ रहा है आप तक प्रोग्राम का ये अगला गाना और शम्मी जी ने माँ की बात की थी तो मुझे एक और गाना याद आ रहा है जिसमें माँ अपने बच्चे से पहेली बूझने के लिए कह रही है, यानी माँ पहेली पूछ रही है, बच्चा उसे बूझ रहा है। और सुनते हैं वाला गाना।

भाई इस गाने के साथ ही आरजे मीनाक्षी को फिलहाल म्यूजिकल प्रोग्राम से आज तो यहीं पर दीजिएगा इजाजत। क्या करें, गाने भी अभी खत्म नहीं हुए और बातें तो अभी बहुत सारी बाकी रह गई। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे इस प्रोग्राम में जुड़े, आप सभी ने हमें मेल किया। 102.2 FM पर कनेक्ट है आप सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो कानपुर के संग।

क्या करें, गाने भी अभी खत्म नहीं हुए और बातें तो अभी बहुत सारी बाकी रह गई। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे इस प्रोग्राम में जुड़े, आप सभी ने हमें मेल किया। 102.2 FM पर कनेक्ट हैं आप सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो कानपुर के संग।

102.2 FM पर कनेक्ट है आप सिटी की म्यूजिकल हार्ट बीट है ये, धड़कती है आप सभी के दिलों में, रेनबो कानपुर है ये। और अब आप तक आ रहा है प्रोग्राम बैक टू बैक म्यूजिक।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख

0: दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
0: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर, 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
3: RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

0: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा
1: दस है
2: तो टीच करता हूँ।
1: तुम
2: प्यार किए जा जवानी दीवानी बिन हर।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और शाम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम

0: और इसके साथ ही बैक टू बैक म्यूजिक अब यहीं पर समाप्त होता है। 102.2 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर सुन रहे थे आप ये प्रोग्राम। अगले प्रसारण के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत

0: और इसके साथ ही बैक टू बैक म्यूजिक अब यहीं पर समाप्त होता है। 102.2 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर सुन रहे थे आप ये प्रोग्राम। अगले प्रसारण के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ अभियान का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रैली के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, कैंसर जागरूकता एवं स्वस्थ भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि समय पर जांच एवं जागरूकता से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम संभव है। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया में तेजी आई है। इसी क्रम में हमीरपुर में जनगणना 2027 के अंतर्गत मीडिया डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों एवं पत्रकारों ने स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। वहीं अमरोहा में भी एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को स्वगणना में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरवगाथा एवं क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसमें सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों, स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता की। जिलाधिकारी ने कहा कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक अध्याय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर सभी अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी घड़ी में 5 बज चुके हैं, 5:03 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
2: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना 2 चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
3: धन्यवाद ओम जी।
2: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
3: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का उसका कार्य संपन्न किया जाना है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है और

0: उसको एक यूनिक कोड उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद, आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे।
1: बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज जैसे जनपदों में प्री टेस्ट हुआ, उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बिंदु निखर कर सामने आए?
0: हम लोगों ने तीन जनपदों में, जिसमें से दो जनपद हमारे बुलंदशहर और बहराइच, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्री टेस्ट हुआ। इनफैक्ट बहराइच में जो हमारा क्षेत्र था मिहींपुरवा, वो जंगल से सटा हुआ क्षेत्र था, तो उसकी अलग लेवल की चुनौतियां रहती हैं। और प्रयागराज में जो हमारा क्षेत्र था वो नगर निगम क्षेत्र था, और हमने चौक का एरिया लिया था, बिकॉज जो हमारे ओल्ड सिटी सेंटर्स होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तीनों जगह हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी। सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग तो ये थी कि कहीं ना कहीं नगर निकाय या ग्रामीण या तहसील स्तर पे जनगणना को ये सोच पाना कि कोई लोकल अधिकारी उसको कंप्लीट करा पाएगा, ऐसा संभव नहीं होता। जनगणना एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे विभागों का सहयोग चाहिए होता है, जनमानस का सहयोग चाहिए होता है, हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोग ये जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट करा पाते हैं। दूसरा, हमने ये भी देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी प्रगणक थी, और उन्होंने बहुत सबने अपनी अपनी लर्निंग्स शेयर की। उनको ऐप से काम करना बहुत अच्छा लगा, तो हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स देखी। कहीं ना कहीं आपका प्रगणक भी जब क्षेत्र में जा रहा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है जो क्षेत्र मुझे आवंटित किया गया है वहां की जनता कोऑपरेट ना करे। तो हमारा ये भी अनुरोध रहता है सभी से, ये हमारी अपील भी रहती है जनता से कि जब जनगणना कार्मिक आपके आएगा उसके पास उसका आईडी भी होगा, वो आपका कोई ना कोई लोकल कार्मिक होता है, कोई टीचर होता है या कोई स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी होता है, प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकालकर, ये देश के महत्व का कार्य है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, बट आप ये प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो प्रीटेस्ट की हमारी लर्निंग्स बहुत अच्छी थी। कुछ एप्स में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर्स को आ रही थी उनको इम्प्रूव किया गया। आज की तारीख में जो ऐप है वो बहुत ही सुगम और सरल ऐप है।
1: ये शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, अनियमित कॉलोनियां होती हैं और अस्थायी निवासी हैं, उनकी गणना को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
0: मैं आपके प्रश्न को दो भाग में बांटना चाहूंगी। एक तो है झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां जो अनियमित रहती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या है, तो इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा। स्लम ब्लॉक, जब हम अपना गणना ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसी स्लम्स जो कि अनियमित क्षेत्र हैं उनको अलग बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विकास की ज्यादा आवश्यकता है। तो स्लम ब्लॉक्स के गाइडलाइंस थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे नॉर्मल गणना ब्लॉक से। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ एक स्लम है तो दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर ऐसा लगेगा कि आपके इंडिकेटर बहुत बढ़िया है। तो स्लम ब्लॉक को हमेशा अलग से रखा जाता है, स्लम ब्लॉक की अलग से काउंटिंग की जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि 2011 में जैसे प्रदेश में 10,000 स्लम ब्लॉक अलग से चिन्हांकित किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे विकसित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आपके प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजिटरी पॉपुलेशन रहती है, या ये कह लीजिए कि बेघर जो हमारे लोग होते हैं। अभी हम घरों की गणना कर रहे हैं तो बेघर फर्स्ट फेज में नहीं काउंट किए जाते हैं, बट सेकेंड फेज में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। तो ऐसे बेघर लोग आखिरी दिन, जो सेंसस का आखिरी दिन होता है 28 फरवरी को शाम के 5 बजे के बाद, जो जहां पाया जाता है, रोड पर, स्टेशन के बाहर, पार्क में, फुटपाथ पे, ऐसे बेघर लोग जो जहां निवास कर रहे होते हैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, उनकी भी गणना की जाती है। और यह भी आकलन किया जाता है कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो कि बिना किसी घर के, बिना किसी आवास के खुले में सो रहे थे। तो दोनों ही व्यवस्थाएं ऑलरेडी जनगणना का पार्ट है जिसमें सभी को कवर किया जाता है।
1: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
0: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। गलत हो सकता है कि परिवार झूठ बोले आपसे, तो एन्यूमरेटर को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि सामने शौचालय बना हुआ, परिवार कह रहा है हमारे पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एन्यूमरेटर पूछेगा कि ये किस स्कीम में मिला, किस कार्य में आता है, क्या आप इसको यूज नहीं करते हैं। तो एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो जहां तक हो सके, संभव हो सके, उत्तरदाता को ये समझाए कि आपको एकदम सही आंसर देना है और आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने अपना रिस्पॉन्स फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया, तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच। तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते हैं
1: जी। जनगणना के आंकड़े नीति नीतियों को बनाने में अहम भूमिका।

0: रखते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी?
1: मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे। अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे। और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि, अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे। और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें।
0: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच ओम जी।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
4: पुरानी जींस और गिटार,
3: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
4: जगह,
3: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
5: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
3: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
8: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
10: एक विशेष कार्यक्रम के बाद आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है एफएम टॉप 10 और टॉप 10 में हमेशा हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और 10 ऐसे गाने सुनवाते हैं जिनका हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कुछ अलग से महत्व होता है। किसी वर्ष के बारे में आपको बताते हैं, कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताते हैं, कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आते हैं। और हिंदी सिनेमा की खासियत रही है कि यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। दर्शकों का इंटरेस्ट कब बदल जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। ब्लॉकबस्टर सोचकर बनाई गई फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो वहीं कम बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर जाती हैं। और आज के एफएम टॉप 10 में साल 2001 में रिलीज हुई फिल्मों की बात करते हैं। साल 2000 के बाद 2001 में एक्शन फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी और कुछ हद तक देशभक्ति से भरी हुई फिल्में भी रिलीज हुई थी और रोमांटिक दौर हमेशा की तरह चलता ही रहता है और उस समय भी चल रहा था। हर साल 2001 में बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में हमें देखने को मिली थी। सनी देओल पाजी ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दी थी। जी हाँ, इसी साल फिल्म गदर रिलीज हुई थी ना, जिसकी शूटिंग अपने लखनऊ में भी हुई थी, जिसमें मिशा पटेल उनके साथ थी। याद आया ना, पार्टीशन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म गदर और वो गाना याद है ना? याद आया? नहीं याद आया? देखिए ये अब याद आएगा। तो आप अगर गड्डी लेकर निकले हैं तो बिल्कुल अपना पूरा ख्याल रखिए और सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

और साल 2001 में गदर के साथ आमिर खान साहब की फिल्म लगान भी रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। जहां गदर की कहानी पार्टीशन भारत पाकिस्तान के बीच पर बेस थी, वहीं लगान की कहानी में अंग्रेजों के साथ खेला गया क्रिकेट मैच था, जिसका संबंध अंग्रेजों द्वारा वसूले जाने वाले लगान से था, इसीलिए फिल्म का नाम लगान था। खूबसूरत सा गाना घनन घनन।

एफएम टॉप 10 सुन रहे हैं आप और रामराज जी का मेल रायबरेली से आ गया, गांव पहाड़ीपुर से कह रहे हैं गाने बहुत बढ़िया लग रहे हैं और मज़ा आ रहा है प्रोग्राम सुनने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

जी हाँ, साल 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम एक फैमिली ड्रामा थी और इस फिल्म में शाहरुख खान साहब और ऋतिक रोशन की जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखी थी। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन जी भी थे और जया बच्चन जी भी थी, है ना? तो लगभग 25 साल पीछे ले गए हूँ आपको, लेकिन इन गानों की ताजगी आज भी है। सुन रहे हैं आप FM Top 10।

कभी कुछ कभी गमजो फिल्म की बात होती है तो वो काजोल की जो है ना चंचल भरी एक्टिंग आपको याद है ना? बिल्कुल याद होगी, बिल्कुल ही अलग अंदाज में आई थी, चुलबुली अंदाज में आई थी काजोल इस फिल्म में।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
4: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।

फिल्मों के बारे में जो कुछ अलग थी और उनका संगीत कुछ अलग था। इस दौर में कुछ म्यूजिकल हिट्स भी आई हैं, जिसमें से एक का गाना आपने सुनना शुरू कर दिया है। फिल्म थी कसूर, जिसमें आफ्ताब, शिवदासानी और लीजा रे थी, और खूबसूरत सी आवाज़ इस गाने की अलका याग्निक और उदित नारायण जी की। जिंदगी बन गए हो तुम।

और जी हाँ, ये साल 2001 की था जिसमें फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म दिल चाहता है आई थी। उस समय यूथ को बहुत पसंद आई थी। आमिर खान, सैफ अली खान साहब, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी, डिंपल कपाड़िया इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थीं और इसे बेस्ट फीचर फिल्म का उस समय का नेशनल अवार्ड भी मिला था। सुनते रहिए, कोई कहे कहता रहे।

जी हाँ, इस ट्यून से आप कुछ पकड़ पाए, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। 2001 की फिल्म तुम बिन, जिसके सारे गाने बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारे थे। चलिए उन्हीं में से एक, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे।

और साल 2001 में आई फिल्म यादें, जी हाँ, करीना कपूर और ऋतिक रोशन साहब और साथ में जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में नजर आए थे। यादें और ये गाना आपको याद है, ऐ दिल दिल की दुनिया में।

और साल 2001 की फिल्म नायक याद है आपको, जिसमें अनिल कपूर साहब एक पत्रकार की भूमिका में थे और अमरीश पुरी साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए थे। एक दिन के लिए उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और बहुत से ट्विस्ट आते हैं उस मूवी में। ये फिल्म बहुत ही पसंद आई थी लोगों को। इसी फिल्म से गाना चलो चले बितवा।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

जी हाँ, 2001 में आई फिल्म एक रिश्ता अक्षय कुमार साहब और करिश्मा कपूर जी का अद्भुत अभिनय, और इस गाने में कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ एक है एक दिल है। और 5:55 का वक्त हो चुका है। इस गाने के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ। समाचारों के उस पार 6 बजे के बाद प्रोग्राम शामी वाले लेकर तुरंत आ रहा हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में प्रदेश सरकार के 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल के नए सदस्य के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज कुमार पांडे ने कैबिनेट मंत्री तथा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र लेर, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश सिंह राजपूत ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर ने राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। भूपेंद्र सिंह चौधरी विधान परिषद सदस्य हैं, वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। वहीं राज्यमंत्री की शपथ लेने वाली कृष्णा पासवान खागा से, सुरेंद्र लेर खैर से और कैलाश सिंह राजपूत तिरवा से विधायक हैं। हंसराज विश्वकर्मा विधान परिषद सदस्य हैं। केंद्र सरकार

ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहाऊ ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में भागीदारी की। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की। वाराणसी के शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय को अब अत्याधुनिक 500 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 28 अप्रैल को किए गए शिलान्यास के बाद पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने आज विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। 315.48 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक अस्पताल पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा। इस मौके पर डॉक्टर तिवारी ने कहा, यह परियोजना पूर्वांचल की स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत है। और प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल रहा है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में भी लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। 7 बजे सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज़।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

जी, घड़ी में 6 बज चुके हैं, 6:05 हो चुके हैं और ये वक्त होता है शाम अवध का। अवध की शाम बिल्कुल अच्छी हो रही है। पिछले लगभग 10 दिनों से जो आंधी बारिश का दौर चला है ना, कभी धूप कभी छांव, लेकिन हाँ कि वो जो परेशानी हो रही थी ना कड़ी धूप वाली, ऐसा लग रहा था कि सीधे दोपहर हो रही है, सुबह हो ही नहीं रही है। उस चीज़ से तो कुछ समय के लिए राहत मिली है और आने वाला जो समय है ना वो अभी जाने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पहाड़ों पर एक बार और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जो हल्की फुल्की गर्मी आपको लग रही है तो खुश होइए, आधा मई जो है ना ऐसे ही निकल जाएगा बारिश में आंधी में। तो मौसम की जो गर्माहट है ना, जो जेट का महीना है ना, वो एक गाना है ना, जेट की दोपहरिया में पाँव जले हैं सैया पाँव जले हैं, तो पाँव अवश्य नहीं जलेंगे। अभी फ़िलहाल आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है और खूबसूरत सा गाना चला दूँ, उसके बाद हमेशा की तरह शाम के बाद में खूबसूरत सी बातें, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होने वाला है लखनऊ शहर में, बिल्कुल सब कुछ लेकर आऊँगा। सर्वेश आज आपके साथ रहूँगा 7 बजे तक शाम अवध में, और हाँ 7 बजे से 8 बजे के बीच प्रोग्राम हेलो एफएम बिल्कुल लगातार सुनते रहिए, धड़कन लखनऊ की।

तो भाई जेठ का महीना चल रहा है और जेठ का महीना लखनऊ शहर के लिए बहुत खास होता है और इस बार इसलिए और भी खास है कि इस बार बड़े मंगल का जो उत्सव और माहौल होता है लखनऊ शहर में वो और भी भव्य रूप से हो रहा है और इस बार 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। और आज तो वैसे संडे का दिन है लेकिन अभी मैं जब स्टूडियो आ रहा था तो आज भी कई जगह भंडारे हो रहे थे और शनिवार के दिन भी होते हैं तो एक अलग सा माहौल होता है और अवध का जो माहौल है, अवध की जो शाम होती है, इन सब चीज़ों से और भी बहुत खूबसूरत हो जाती है ना। खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी ए दिल है मुश्किल, सुनिए और इन्जॉय कीजिए। और भी बातें करूँगा आपसे, सिलसिला कहाँ रुकने वाला है।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मुस्कुराइए क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ बिल्कुल, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में और लखनऊ से बाहर भी हैं तब भी आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मुलफ़ा सिद्दीकी और आनंद तिवारी का मेल आ चुका है, कह रहे हैं प्रोग्राम और गाने बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, धन्यवाद आपका।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से महकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब। जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। 6:25 का वक्त, शामी वक्त प्रोग्राम, सर्वेश आज आपके साथ। और अवध की शाम वैसे ही बड़ी अच्छी हो रही है आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही है और ट्रैफिक जो है वो भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। हालांकि वीकेंड का दिन है, कुछ ऐसी जगहों पर खासकर हजरतगंज के आसपास आपको हल्का सा ट्रैफिक मिल सकता है, बाकी जगह ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वेट करना पड़े। आराम से आप चलते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: हेलो FM,
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
5: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
6: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
7: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
8: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
7: ओनली 100.7 FM रेनबो।
9: कुछ भी नहीं है FM रेनबो के आगे, है ना। 6:32 का वक्त हो रहा है और आप लगातार सुन रहे हैं शामी अवध, और शामी अवध में खूबसूरत सी बातें और उसके साथ ही ज़रूरी जानकारियां आप तक लेकर आते हैं। तो एक जानकारी मेडिकल फील्ड

से है। लखनऊ के जलकारी बाई हॉस्पिटल में महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कहते हैं ना कि पैप स्पीमर जांच सुविधा शुरू कर दी गई है और अब सर्वाइकल कैंसर की जांच यहीं से की जा सकेगी। जी हाँ, आज आप सभी मदर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ और बस यही कहूँगा कि अपनी माँ का पूरा ख्याल रखें और अपने पेरेंट्स का पूरा ख्याल रखें। कभी उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई उनकी संतान होने के बावजूद भी उन्हें कोई कष्ट है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है ना। सुनते रहिए श्यामे और सर्वेश के साथ खूबसूरत सा और बिल्कुल नया गाना खासियत फ्रॉम द मूवी चांद मेरा दिल, सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

जी हाँ, रेशम सी हैं ये हवाएं सनम। जब वक्त की शाम में आप बैठते हैं ना, खासकर गोमती नदी के किनारे, तो जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि रेशम को आप स्पर्श कर रहे हैं, इस हवाओं को स्पर्श कर रहे हैं। अभी आप समाचारों में भी सुन रहे थे कि एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है, और कल से लेकर 14 मई तक आपको फिर से बारिश का वो दौर ठंडा ठंडा एहसास होने वाला है। सुन रहे हैं आप शाम वक्त सर्वेश जायसवाल के साथ।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: क्या बात है, आजकल टाइम से घर?
3: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
2: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
3: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
4: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम, सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।
5: सात रंग का

0: धनुष है,
1: सात सिरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर, सात हमारा हरदम है, जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
3: पुरानी जींस और गिटार,
2: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: जगह,
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
4: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा,
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: हेलो एफएम,
6: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
7: What is mobile number? What is your style number?
8: What is your style number? करो क्या dial number?
9: हेलो, आप एफएम रेनबो से बोल रहे हैं?
5: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं।
10: अरे क्या बोल रहा है?
5: अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।
11: छह बजकर 54 मिनट का वक्त और मई का महीना चल रहा है। आज 10 मई हो चुकी है और बच्चों के जना समर वेकेशन कई जगह स्टार्ट हो चुके हैं, कई जगह होने वाले हैं। वो पूरी तैयारी चल रही है कि गर्मी की छुट्टियों में क्या करना है, घूमने जाना है या कहीं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी है। तो बिल्कुल आप अपने आस पास देखिए, किसी स्कूल में किसी स्टेडियम में अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल से उसमें दाखिला कराइए। और जो बच्चों में आजकल घर के अंदर रहने की जो एक आदत पड़ी हुई है और दूसरा मोबाइल पे जो टाइम बिताते हैं ना, उससे थोड़ा सा दूर ले जाइए। आउटडोर गेम्स हो सकते हैं वो, या कुछ और भी, सिंगिंग है, डांसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए और उनको करवाइए, देखिए फिर उसका असर है ना। थोड़ी देर में आपको बताऊँगा गोल्ड और कहते ना सिल्वर के रेट्स क्या हैं। फिलहाल आँखें खुली हो या हो बंद,

तो भाई गोल्ड की रेट आपको बता दूं 14,065 रुपये पर ग्राम, और सिल्वर की बात करूं तो 2,80,000 पर किलोग्राम रेट चल रहा है अभी सिल्वर का। फिलहाल आप सुन रहे हैं मोहब्बतें का गाना, और प्रोग्राम है शाम वक्त सर्वेश के साथ। 7 बजे के बाद समाचारों के उस पार प्रोग्राम हेलो एफएम, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।

सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुखों से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: हवा।
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर, तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज हुआ विस्तार। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को दिलाई शपथ। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, रायबरेली के मनोज कुमार पांडे बने कैबिनेट मंत्री। विस्तार के साथ यूपी विधानसभा के 403 सदस्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या हुई 60। फतेहपुर की खागा सीट से भाजपा विधायक कृष्णा पासवान, खैर विधायक सुरेंद्र लेर, वाराणसी के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, कन्नौज के तिरवा से विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने राज्यमंत्री की ली शपथ। राज्यमंत्री अजीत सिंहपाल और सोमेंद्र तोमर को मिला राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार का प्रमोशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शपथ लेने वाले मंत्रियों को दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया संदेश में कहा, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ सभी जनसेवा और सुशासन द्वारा प्रदेश की विकास यात्रा को दे नई गति। केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतें। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत भी सूची में शामिल। UPESSC के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा। प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर सकुशल संपन्न। 9 और 10 मई को 2 पालियों में आयोजित हुई परीक्षा में 192,934 अभ्यर्थी हुए शामिल। नकलविहीन परीक्षा कराने के रहे पुख्ता इंतजाम। मदर्स डे के अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जनभवन से कैंसर फ्री वुमेन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। रैली के माध्यम से महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और कैंसर से बचाव के प्रति किया जागरूक।

मानसिका शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में होगा विकसित। पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया निर्माण कार्य का शुभारंभ। 315 करोड़ की लागत से बनने वाला अस्पताल पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं को देगा नई दिशा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य हुआ पूरा। मंदिर परिसर में हाईटेक सुविधाओं का किया गया विस्तार। 15 जून तक तैयार होगा शहीद स्तंभ। श्रेष्ठ कार्यालय और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी। और प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी। हमीरपुर में मीडिया डे का हुआ आयोजन। अमरोहा में गोष्ठी के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। इस बुलेटिन में इतना ही।

0: अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य हुआ पूरा। मंदिर परिसर में हाईटेक सुविधाओं का किया गया विस्तार। 15 जून तक तैयार होगा शहीद स्तंभ। श्रेष्ठ कार्यालय और म्यूजियम का निर्माण कार्य जारी। और प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी। हमीरपुर में मीडिया डे का हुआ आयोजन। अमरोहा में गोष्ठी के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। इस बुलेटिन में इतना ही। 7:20 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर, पुरानी जींस और गिटार, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर जगह, फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएं। क्या बात है, और आपके साथ साथ सभी सुनने वालों की मुस्कान जरूरी है। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
2: दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। और
1: जी क्या बात है, दिल पागल दीवाना।
2: मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बताइए आप कैसे हैं?
1: हम अच्छे हैं, प्रोग्राम भी अच्छे लग रहा होगा आपको। और ये गाना किसी को सुनाना चाहेंगी, नाम लीजिए।
2: ये गाना हम डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी,
2: जो भाई बहन हमारा नाम लेते हैं उनका हम जरूर सर आज नाम लेंगे, भले ही हमारा थोड़ा सा गाना चला देना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप जल्दी से नाम लीजिए।
2: सबसे पहले आपको मोहम्मद फैज भाई, राजुद्दीन भाई, बाबू अंसारी भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद अमीन भाई, बबलू यादव भाई, जावेद अख्तर भाई, मोहम्मद सलमान भाई, सप्तम कुमार भाई, वकील अहमद भाई, और गुलाब साहब भी, साहबा अंसारी, सादिया अंसारी, महक अंसारी, आरजे पूनम और रिंकी पिंकी।
1: और कोई रह तो नहीं गया?
2: जिस सुन रहे सभी सुनने वाले। एक भाई और है,
1: कौन?
2: विनीत भाई है जो हमारी तरफ सीतापुर में रहते हैं।
1: क्या बात है, तो सभी के लिए ये गाना।
2: नाम लेते हैं और जब हम नाम नहीं सर लेते हैं नाम, जब बाद में फोन करके हमारा नाम लेते हैं तो हमको अफसोस बहुत बड़ा होता है।
1: चलिए आज
2: हमको भी नाम लेना चाहिए था, हमने
1: आज आपने नाम ले लिया। और ये गाना बहुत प्यारा है, बरसात मूवी का। सभी लोग एंजॉय करिए और जल्दी से कॉल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जी हाँ, हेलो फिल्म सुन रहे हैं आप। सर्वेश जायसवाल है आज आपके साथ और 8 बजे तक रहूंगा आपके पास। बीच में आप प्रादेशिक समाचार भी सुनेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी फोन कॉल्स का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और आप अपनी बात हमसे कहेंगे, अपनी पसंद का गाना हमसे कहेंगे और हम झट से उसको सुनवा देंगे। अभी कोई है लाइन पर, उनसे पहले बात करते हैं। हेलो, नमस्ते जी, अपना नाम बताए। जी अच्छा, ढिकुन्नी संडीला से आपने हमें कॉल किया है ना?
3: जी सर।
2: क्या हाल चाल है आपके?
3: जी जी।
2: मौसम कैसा है उधर? कह रहा हूँ मौसम कैसा है आपकी तरफ?
3: मौसम ठीक है सर, पर मैं बात
2: जी। और आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगी? लाल दुपट्टा फ्रॉम द मूवी मुझसे शादी करोगी, अलका याग्निक और उदित नारायण साहब की आवाज है ना?
3: जी सर।
2: और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी, नाम लेना चाहेंगी?
3: जी सर।
2: बिल्कुल लीजिए। थैंक यू। जी जी जी ओके जी। और कोई? सभी सुनने वालों के लिए लाल दुपट्टा है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, कुछ हाँ जी कही। हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू, सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

7:15 मिनट का वक्त, हेलो एफएम सुन रहे हैं आप और कोशिश कर रहे हैं हमसे कनेक्ट होने की। 0522 38 845 22 38 852 ये नंबर से हमारे, जल्दी से कॉल कीजिए और हमें हमसे बात कीजिए और अपनी पसंद का गाना सुनिए। अभी हमारे पास एक कॉल आया था सीनो उपाध्याय का कैसरगंज बहराइच से, लेकिन वो काफ़ी व्यस्त थी तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की हमारा गाना ज़रूर प्ले कर दीजिएगा और मैं ऑन एयर नहीं आ पाऊंगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले होना चाहिए और सत्यम जी को डेडिकेट करना चाहती, तो ये गाना हम लगा देते हैं और मदर्स डे की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और उसी से जुड़ा हुआ गाना है, कहाँ गए ममता भरे वो दिन।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेन मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा, तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियुक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी मां एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा, कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक।

चेयरमैन नीपेन्द्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा, आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ, आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से धड़कन लखनऊ की। सुन रहे हैं आप हेलो FM पे। कॉल करना चाहें तो बिल्कुल आप करिए। अभी भी आपके पास आधे घंटे का वक्त है। 7:31 का वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी में। 0522 2238 845 और 2238 852 ये हमारे नंबर्स हैं। जल्दी से मिलाइए और हमसे जुड़ जाइए। फिलहाल न्यूज़ के दौरान किसी ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, नमस्ते जी, जल्दी से अपना नाम बताएं।
2: मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा, बाराबंकी से सर जी बोल रहा हूँ।
1: क्या बात है, क्या हाल चाल है आपके?
2: जी सर जी बढ़िया है। सर जी अपने हाल चाल बताइए।
1: मेरे अच्छे हैं। फैज भाई की क्या हाल चाल है?
2: ये उनको नहीं जानते हैं।
1: अच्छा, मुझे लगा वो बाराबंकी से, वो भी कॉल करते हैं अक्सर।
2: नहीं, हमारे गांव का नाम राजा कटरा।
1: अच्छा, राजा कटरा। अक्सर हमारे जो लिसनर्स हैं ना, वो आपस में कनेक्ट रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर कोई नहीं, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: जी हम ये दिल आशिकाना मूवी का गीत सुनेंगे, नट खटी कॉलेज की लड़कियों, ये वाला गीत।
1: ए नट खटी कॉलेज की लड़कियों। अच्छा जी, क्या बात है, ये गाना तो अच्छा है
2: जी। सर जी सॉन्ग बहुत अच्छा है।
1: किसको सुनाना चाहेंगे
2: जी? अब जी अपने दो भाई हैं, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद साबिर।
1: बहुत बढ़िया, तो ये गाना लगा दे
2: जी। हमारे दोनों भाई हैं तो हमारे भाई भी रेनबो से कनेक्ट रहते हैं, वो भी आपका प्रोग्राम सुनते रहते।
1: बिल्कुल, उनका नाम जी जी जी
2: आसिफ भाई तेलंगाना हैदराबाद से करते हैं।
1: हाँ हाँ, अच्छा वो आपके भाई हैं, मेरी बात हुई है जी।
2: साबिर भाई जो कानपुर से, वो भी आपका प्रोग्राम, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस वक्त वो हैदराबाद में है, लेकिन रेनबो हम लोगों को कनेक्ट रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम धड़कन।
2: सबसे बड़ी एक खासियत यही है रेनबो जी, जी, मतलब जी। हम लोग को एक दूसरे को जोड़ता है और कनेक्ट रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और
2: एक से एक बढ़िया से बढ़िया।
1: तो देखिए गाना हमने आपका लगा दिया, और कुछ कहना चाहे तो जल्दी से कह दें।
2: और कुछ नहीं सर जी, बढ़िया है
1: जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब भाई।
2: थैंक यू सर जी।
1: ओके वेलकम जी।

0: और वक्त बीतता चला जा रहा है और फोन कॉल्स आती चली जा रही हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि सभी से बात कर लूँ, लेकिन ये वक्त कहाँ रुकता है किसी के लिए, वो भी निकलता चला जा रहा है। एक लिमिटेशंस है कि एक घंटे के भीतर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ और आपके गाने जो है ना उनको प्ले करूँ। अभी लाइन पर कौन है, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, क्या हालचाल है, अपना नाम बताएं पहले तो।
1: जी सर, बढ़िया है सर। देवकली अहमदपुर बाजार बारामिकीर बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं।
0: बाबू अंसारी जी, और क्या हालचाल है, क्या मौसम के हालचाल हैं आपके वहाँ?
1: जी सर, मौसम तो बढ़िया है।
0: मौसम बढ़िया है
1: जो है जी,
0: जैसा कि आप बता रहे थे कि आप किसी बाजार में बैठे हुए हैं, आपके वहाँ सामने ही लगती है ना
1: जी बाजार। अभी आज रविवार के दिन लगती है, जुमरात के दिन लगती है बाजार।
0: जी जी जी, और आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे इस अच्छे मौसम में?
1: जी सर, फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया है, और गाने के बोल हैं तेरी आंखों का अंदाज कहता है।
0: क्या बात है।
1: और सर गाना डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए।
1: सबसे पहले सर आपको
0: थैंक यू।
1: और फैज अंसारी है रामपुर से, कुलदीप गुप्ता जी उधोली बाराबंकी से,
0: सुरजीत सिंह
1: है सीतापुर से, समा परवीन अंसारी जी हैं, श्री प्रकाश तिवारी जी हैं, हरि केर जी हैं, नवनीत मोदिया जी हैं, और साहिब अंसारी।
0: क्या बात है, ये गाना हमने आपका लगा दिया है।
1: जी सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी सर, थैंक यू।

0: 7:41 का वक्त, अभी भी थोड़ा सा वक्त है, यानी कि लगभग लगभग 18-19 मिनट का वक्त है आपके पास, और जल्दी से आप कॉल कर सकते हैं 0522 2238 845 और 2238 852 नंबर से हमारे, जल्दी से कॉल कीजिए। हेलो एफएम सुन रहे हैं आप, सर्वेश आज आपके साथ, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की, आप भी कीजिए, कोशिशें ही कामयाब होती हैं, और किसकी कोशिश अभी कामयाब हुई है उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन सा बोल रहे हैं?
1: जी सर, हम बोले मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा 12 बजे से बोले सर।
0: हाँ बिल्कुल, हम तो जान गए, बाकी सुनने वाले भी हम जान गए। क्या हाल चाल है फैज भाई?
1: जी सर बहुत ही बढ़िया, हमारे गांव का मौसम बड़ी खुशनुमा हो गया सर।
0: ये तो अच्छी बात है, अभी कल से और खुशनुमा हो जाएगा, आंधी बारिश का सिलसिला जो है फिर से शुरू होने वाला है।
1: अच्छा सर।
0: आप सुनते नहीं ध्यान से हमारा शाम है अवध?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग लखनऊ से आप साथ में, उसके बाद में 9 बजे तक प्रोग्राम सुनते हैं रजनीकांत पर।
0: तो बिल्कुल अभी फिर से आंधी बारिश का दौर शुरू होगा, मौसम और ठंडा होगा और अच्छा लगेगा। आपका गाना हमने लगा दिया, जल्दी से नाम ले लीजिए
1: जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मतलब जो सभी सुनने वालों को मतलब जो है प्यार भरा मेरा अस्सलाम वालेकुम है, जिनको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, गाने के मतलब कुछ बोल गुनगुनाना चाहता हूँ सर।
0: जी गुनगुनाइए बिल्कुल।
1: करते हैं सिर्फ प्यार सिर्फ संडे को।
0: अच्छा, गलत हो गए क्या बात है। अच्छा, बाकी जो डेज है बेकार है आपके लिए?
1: जी नहीं सर।
0: मतलब प्यार आप करेंगे लेकिन छुट्टी के दिन ही करेंगे प्यार? जल्दी से नाम ले लीजिए इनका लेना चाहते हैं।
1: सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले आरजे सर्वेश भाई हैं
0: जी,
1: और उसके बाद मोहम्मद जावेद अख्तर भाई है, मोहम्मद आसिफ भाई है, रिंकी पिंकी, समा परवीन अपा, गुलाब साहब भी है, सादिया अंसारी है, यासिर हमीद भाई है, और मोहम्मद सलमान भाई है, मोहम्मद तालिब भाई है, और जमील गुंटी वाले सुरभि सिंह है, और बाबू अंसारी भाई है।
0: क्या बात है, तो ये गाना आप तक पहुंच रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू।
0: ओके जी।

0: के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: घड़ी में ठीक 7:45 हो चुके हैं। अभी भी आपके पास वक्त है 15 मिनट का, कोशिश करें जल्दी से करें। 0522 2238 8 और 2238 8 मिलाकर सीधे हमसे जुड़ जाएं। और अभी कौन साहब हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो सर, वीर सर को शिव का बहुत बहुत प्रणाम।
2: कैसे हैं शिव जी आप?
3: अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ। और इंद्रनगर लखनऊ से आपने हमें कॉल किया है ना?
3: जी सर, सभी मम्मियों को।
2: जी जी, बहुत अच्छी बात है। और
3: सर, मैं सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
2: जी बताएं।
3: फूल आहिस्ता फेंको, फूल
2: जी
3: नाजुक होते हैं सर।
2: क्या बात है, लता मंगेशकर जी और मुकेश साहब है ना?
3: जी जी सर, पता नहीं ये छोटा सा मैसेज है, मतलब कि
2: जी
3: तो मंदिरों में ये फूल जो भी चढ़ते हैं हर जगह,
2: हाँ हाँ,
3: अलग अलग लोग डाल देते हैं।
2: जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात
3: है। तो किनारे ही रखे हुए पैर पर अच्छा नहीं लगता है।
2: बिल्कुल, उससे हमारी आस्था को ठेस लगती है और अच्छा नहीं लगता है ये चीज। बिल्कुल सही बात आपने की, बहुत अच्छा मैसेज दिया। बिल्कुल, आप नाम लीजिए।
3: सबसे पहले सर सर्वे सर को,
2: थैंक यू
3: आकाशवाणी टीम को
2: जी,
3: और हमारी वाइफ जी और सुरवीर सिंह जी हैं, और अंशिका हमारी भतीजी है
2: जी जी,
3: और सीमा रावत जी, राम सिंह भैया जी, और हेमंत जी हैं, और हमारे दोस्त हरिओम
2: जी जी,
3: और सभी दोस्तों को, प्रिया जी को भी।
2: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिव।
3: भाभी जी और मम्मी जी हमारी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका,
3: बहुत बहुत।

0: बहुत कम है हमारे पास। हेलो,
1: गुड इवनिंग
0: जी, आप बताएं। वैसे जो रेगुलर हमारा एफएम रेनबो सुनते हैं वो आपको जानते हैं, फिर भी आप बताएं।
1: लगता
0: से संडीला, लड्डू के शहर संडीला से है ना।
1: बहुत अच्छी
0: और बताइए क्या हाल चाल है।
1: बहुत
0: अच्छे,
1: आप बताइए।
0: हमारे भी हाल चाल
1: बहुत अच्छे लग रहे हैं।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच।
1: गाने तो बहुत अच्छे बजा रहे हैं आप।
0: सब आप लोगों की मोहब्बत है, इसी वजह से एफएम रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की कहलाता है। और आज गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: बीवी नंबर वन का।
0: बीवी नंबर वन, तो खुद को डेडिकेट तो नहीं करना चाह रही?
1: जी जी सर।
0: हाँ देखिए, हमने पकड़ ली बात। तो गाना आप प्ले कर दें या आप किसी? बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए।
1: जी सबसे पहले आपको
0: थैंक यू।
1: परवीन है, साहिब अंसारी, साजी अंसारी, निशा अंसारी, महक अंसारी और ममता है हरदोई से।
0: ममता हरदोई से,
1: जितने लोग सुन रहे सब
0: सभी के लिए क्या बात है। तो ये गाना हमने आपका लगा दिया है
1: जी सर, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम।

0: जी हाँ, प्रोग्राम भी नंबर वन है और गाना सुन रहे थे आप बेबी नंबर वन का, और अगला जो गाना सुनेंगे ना उसमें भी नंबर वन आ रहा है। जल्दी से बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: सर जी मेरा नाम है राहुल कुमार, जिला इटावा पोस्ट करी ग्राम लालपुरा से राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। सर जी
0: इटावा से आपने कॉल किया है, बड़ी अच्छी बात है। तो राहुल जी क्या करते हैं आप?
1: कुछ नहीं सर, मुझे जन्म से दिखाई नहीं देता है और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, इससे अच्छी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गाना राहुल जी सुनना चाहेंगे? आज
1: पहले कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: बिल्कुल, आप नाम लीजिए, आप ही का प्रोग्राम है।
1: मेरे मिंटू भाई साहब हो गए
0: जी,
1: प्रभाकर तिवारी जी हो गए,
0: क्या बात
1: है, ग्रास ही मेरे भाई साहब हैं कलेक्टर सिंह जी
0: जी,
1: और मोहम्मद फैज भाई हो गए,
0: क्या बात है,
1: और जितने लोग सुन रहे उन सबके लिए,
0: क्या बात है। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: यूपी वाला ठुमका लगाओ, हीरो जैसा नाच के दिखाओ।
0: क्या बात है, यूपी वाला ठुमका लगाओ या नाच के दिखाओ, फ्रॉम द मूवी हीरो नंबर वन है ना। देखिए गाना हमने लगा दिया राहुल भाई, और ठुमका लगाइएगा जरूर।

तो आप यूपी वाला ठुमका लगा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। संडे का दिन है फिलहाल, मुझे अनुमति दीजिए क्योंकि हमारे जमशेद भाई बिल्कुल तैयार हैं रात 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपका मनोरंजन करने के लिए। अपना खूब ख्याल रखिए और ऐसे ही धड़कन लखनऊ की सुनते रहिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में प्रदेश सरकार के 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल के नए सदस्य के रूप में भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज कुमार पांडे ने कैबिनेट मंत्री तथा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश सिंह राजपूत ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। वहीं राज्य मंत्री की शपथ लेने वाली कृष्णा पासवान खागा से, सुरेंद्र दिलेर खैर से और कैलाश सिंह राजपूत तिरवा से विधायक हैं। हंसराज विश्वकर्मा विधान परिषद सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देशभर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अवधि जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर की 2 दिवसीय परीक्षा आज प्रदेश भर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। आज प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित हुई। सभी जिलों में परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा, कहीं से किसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिन के दौरान

सभी जिलों में परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा, कहीं से किसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले दो दिन के दौरान मौसम साफ रहने, तेज धूप निकलने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ने लगी है। मौसम विभाग कल एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जता रहा है। विभाग ने अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज सहित कई जिलों में 12 से 14 मई के बीच तेज हवा के साथ गरज चमक के बीच वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर
0: Only 100.7 FM Rainbow.
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
6: पुरानी जीन्स और गिटार।
5: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
7: है, रते जगा।
5: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
8: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
5: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
9: एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
10: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए।
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
4: शाम होने को है।
3: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।
5: के

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। एक एहसास मेरे पास से यूं ही तो नहीं गुजरा होगा।

रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। और इसी तरह की बातें, इसी तरह के चंद अशार आपकी नजर आज आबशार में मेरे यानी जमशेद के साथ 107.7 FM रेनबो के साथ।

क्या कहूं, कहने को क्या रह गया। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं। कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। मुझ में रहता है कोई दुश्मन जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं।

साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, और मेरा आपका साथ तो वैसे भी नहीं छूटना है। रात 12 बजे तक मैं यानी जमशेद रहूंगा आपके साथ, और हमारा साथ बस इसी तरह से रहेगा बरकरार। और मैं ये कहूंगा कि हर धड़कन पर अपनी वफा का इकरार करेंगे, हर एक धड़कन पर अपनी वफा का इकरार करेंगे। जहां भी जाओगे हर कदम पर हमें ही पाओगे। क्यों? क्योंकि इश्क के हर मोड़ पर हम तेरा इंतजार करेंगे।

जरूरत क्या है, लेकिन यह तो दुनिया में हर चीज जरूरत के एतबार से होती है, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। लेकिन एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं।

0: जैसे बेताब दिल को करार आ गया। किसी ने कहा, बड़ी खूबसूरत है शायरी तुम्हारी। मैंने जवाब दिया, खूबसूरत मेरी शायरी नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है जो नूर बनकर झलकती है मेरे लफ्जों में।
1: और आहिस्ता कीजिए बातें,

और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन लेगा। और चलते चलते मैं कहूंगा आपसे कि अगर मौज है तो बीच धारे चला चल, वगरना किनारे किनारे चला चल, इसी चाल से मेरे प्यारे चला चल, गुजरती है जैसे गुजारे चला चल, और जिंदगी खूबसूरत लम्हों खूबसूरत पलों के साथ गुजरती रहे। बस यही एक खूबसूरत सी दुआ है आप सभी के लिए। 8:41 7:01 यानी प्रोग्राम आबशार का सफर यहीं तक। समाचार संध्या के बाद फिर होती है मुलाकात पॉप टाइम में। आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, और हमारा साथ यूं ही रहेगा बरकरार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितने विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय

0: प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका

0: आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए।

0: श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य

0: राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक

0: बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंचा है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
0: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।

भाई अमित त्रिवेदी तो यही कह रहे हैं, नैना का क्या कसूर, लेकिन सारा कसूर नैनो का ही है, ना आंख लड़ेगी ना मोहब्बत होगी ना कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आंख लड़ जाती है तो क्या होता है।

0: और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।

और मैंने कहा ना कि जब आंख लड़ जाती है, दिल खो जाता है, तो कुछ ऐसा ही होता है। फिलहाल 9:26 साथ में कुछ सेकंड्स पॉप टाइम में आज मैं हूं जमशेद आपके साथ, और गानों का गुलदस्ता लगातार आपके बीच पहुंच रहा है।

इस बात और ढेर सारे मेल आपके हमारे पास आ चुके हैं। नमस्कार नमस्कार। और शिव पूजन ने हमें मेल किया है और आपने हमें लखीमपुर से मेल किया है। प्रोग्राम को एंजॉय करें, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है। और साथ साथ आनंद तिवारी जी का भी मेल आ चुका है मल्लावा हरदोई से। जबरदस्त प्रोग्राम आपको लग रहा है, सारे गाने आपको अच्छे लग रहे हैं। और राम सेवक साहब जी, नमस्कार नमस्कार। आपने उन्नाव से हमें मेल किया है और प्रोग्राम को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। अभय कुमार जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास और लिखते हैं, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आपके साथ शुरू से जुड़ा हूं और रेगुलर श्रोता हूं। सीतापुर से आपने हमें किया है मेल। शैलेश कुमार जी का भी मेल आ चुका है रूपू चंदेला से। नमस्कार, आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और राम राज साहब का भी मेल आ चुका है पहाड़ीपुर से, यानी रायबरेली से आपने किया है मेल हमें। और साथ साथ वारिस अली खान साहब का भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ अभय कुमार जी का भी मेल आ चुका है। आपने हमें कहां से मेल किया है, ये चीज आपने नहीं लिखी है। और आप प्रोग्राम को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ मेल की बात अगर चल रही तो ढेर सारे मेल और भी हैं। चलिए दो चार और मेल शामिल कर लेते हैं। सीतापुर से वकील अहमद का मेल आ चुका है। वकील अहमद मंसूरी साहब हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, सभी गाने आपको अच्छे लग रहे हैं। गुलफशा सिद्दीकी का भी मेल आ चुका है हमारे पास। आपने हमें संडीला से मेल किया है और प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं।

और इसी तरह से पर्दा उठता रहेगा, ढेर सारे गाने आप तक पहुंचेंगे। बाबू अंसारी का मेल आ चुका है बाराबंकी से, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और ये जो बड़े बड़े मेल आपके आ रहे हैं ये लगातार, क्योंकि आज मदर्स डे भी है और लोग मदर्स डे की बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि पूरा दिन रहा है, लेकिन इस वक्त आपके बीच जो प्रोग्राम चल रहा है वो है पॉप टाइम आपके लिए खास। और अहमद नवाब का भी मेल आ चुका है संडिला से, प्रोग्राम को रोज एंजॉय करती हैं, पूरी तरह से गीत आपको पसंद आ रहे हैं। और शैलेश जी, चलिए आपका मेल मैं पढ़ देता हूँ। टाइगर पूर्णिमा रूपुर चंदेला से, और कहते हैं अगर जाना है जिंदगी के सफर में बहुत ऊंचाई तक तो तुम अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना। एक बार फिर पढ़ देता हूँ कि अगर जाना है जिंदगी के सफर में बहुत ऊंचाई तक तो तुम अपने माँ बाप का साथ कभी ना छोड़ना। हैप्पी मदर्स डे कहा है सारा, पीहू, रोशनी, बबीता, तनु, वंदना, स्नेहा, सोनी, ढेर सारे नाम हैं। मैंने कहा ना कि इस प्रोग्राम में ये जो बड़े बड़े मेल हैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और मनोज विश्वकर्मा जी, आपका मेल आ चुका है और मेल आपका पूरी तरह से पढ़ा जाएगा, कैसी बात करते हैं। ये रहा आपका मेल और आपने बलौदा बाज़ार से हमें मेल किया है, छत्तीसगढ़ से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम को और पूरा परिवार आपका इस प्रोग्राम को सुन रहा है। और अर्पित शर्मा जी का भी मेल आ चुका है, अर्पित शर्मा ने हमें राजस्थान से मेल किया है, क्या बात है। और काफ़ी दूर से आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर हमें सुन रहे हैं। साथ साथ विवेक कश्यप जी का भी मेल आ चुका है, विवेक कश्यप जी नमस्कार, और आप प्रोग्राम को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं सीतापुर से, और ये गीत आप तक पहुँचा दूँ, मेल बहुत सारे हैं।

और समंदर में डुबकी लगावा। और जाहिर सी बात है, जब दो नैना लड़ते हैं तो कुछ ऐसी ही बात होती है। और अगर सौदा है मजबूत, यानी मोहब्बत मजबूत है, तो फिर जाहिर सी बात है जिंदगी का सफर भी बहुत खूबसूरत सा होता है। और कुछ ऐसे ही मोहब्बत का करते हैं आगाज।

और ऐसे ही गल इधर भी बन गई है। जावेद अख्तर साहब का भी मेल आ चुका है और आपने हमें मेल किया है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से। पॉप टाइम कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहे हैं, गाने बज रहे हैं बहुत मस्त। साथ साथ विवेक गौतम का भी मेल आ चुका है हमारे पास। आपने हमें कहाँ से, रायबरेली से मेल किया है और प्रोग्राम को पूरी तरह से कर रहे हैं एंजॉय। भैया मोनू सेठ जबरदस्त, और आपने लिखा है हैप्पी मदर्स डे सभी मम्मियों को, ढेर सारी मुबारकबाद। और विजय पाल यादव का भी मेल हमारे पास आ चुका है ललहुआ लखीमपुर खीरी से। भाई बिल्कुल आपको कैसे भूल जाएंगे, हाँ ये हो सकता है नीचे आपका मेल चला गया हो, लेकिन हाँ आपको हम कभी नहीं भूलते हैं और आप लगातार हमारे साथ बने हुए, और आपने भी सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए सारे लोगों के मेल मैंने शामिल कर लिए, लेकिन एक मेल और रिफ्लेक्ट कर रहा है। शनू नूर अंसारी का मेल आ चुका है हमारे पास, आपने लहरपुर मटकली ज़िला बरेली से मेल किया है। और शनू नूर अंसारी हैं, फरियाद हुसैन अंसारी हैं, शकील अहमद इदरीसी हैं, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। ये पूरा टाइप मेल होता है और ये बिल्कुल चिपका के भेज देते हैं, सही कह रहा ना मैं? अरे कुछ नई चीज़ भी लिख दिया करिए कभी कभी, थोड़ा सा मज़ा आता है। और एम के राज का भी देखिए अभी भी तुरंत मेल आया और मैंने आपकी तरफ बिल्कुल भेज दिया है। मुनेश कुमार राज हैं भानपुर हरौआ ज़िला लखीमपुर खीरी से, और आप रोज़ लाइव सुनते हैं, बहुत सुपर सुपर कार्यक्रम, क्या बात है।

9:55 साथ में कुछ सेकंड्स और यहाँ से मैं लूंगा विदा, यानी पॉप टाइम से मैं लूंगा आपसे विदा। और चलते चलते जो दो मेल आ चुके हैं वो आप तक पहुंचा दूं। रेनबो के सभी साथियों को राम राम, मैंने आपकी राम राम सब तक पहुंचा दी। अतुल कुमार यादव जी ने हमें कर दिया है मेल खैराबाद से और सभी मदर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं। और ये गीत सभी साथियों को होती है मुलाकात छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद प्रोग्राम रजनीगंधा में। बने रहिए जमशेद के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरीकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था का गौरव गाथा के अवसर पर सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम कल सुबह वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में त्र्यंबकेश्वर बहुद्देशीय हॉल में आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। साथ ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर आयोजित कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम प्रसारण भी किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में तथा नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम के सहयोग से आज प्रदेश भर में नियोनेटल रेसिसिटेशन प्रोग्राम नवजात पुनर्जीवन कार्यक्रम NRP के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई जिला जन एवं बाल स्वास्थ्य डॉक्टर अजय गुप्ता और महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर मिलिंद वर्धन ने किया। मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय संस्कृति संवाद कौशल और सामाजिक समावेश जोड़ते हुए नई पीढ़ी को भारत भाषाई विरासत से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों में 13 से 19 मई तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 आयोजित किए जाएंगे, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ भारतीय भाषाओं और सांकेतिक संवाद की भी सीख दी जाएगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान BSA खंड शिक्षा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: Stay tuned to 100.7 FM।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
5: Love you जिंदगी।
4: सुकून से भरा दोपहर।
6: पुरानी जींस और गिटार।
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर।

0: Stay tuned to 100.7 FM.
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
2: पुरानी जींस और गिटार
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz FM रेनबो धड़कन लखनऊ की
0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: Entertainment aur information rahega sang sang.
4: Meri rooh ka parinda phadphadaye.
5: Jab chahega 100.7 FM Rainbow.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तराने हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।
4: ये

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM।

तेरे संग प्यार मैं नहीं तोड़ना, आपका प्यार आपकी मोहब्बत। 10:09 साथ में कुछ सेकंड्स, प्रोग्राम रजनीगंधा में वादे के मुताबिक मैं यानी जमशेद जुड़ चुका हूं आपके साथ। और शुरुआत में तो बस मैं यही कहूंगा कि तमन्नाएं तेरी मेरे दिल में बसी हैं, तमन्नाएं तेरी मेरे दिल में बसी हैं, हर एक पल तेरी यादें मुझे सताती हैं। ये यादों की बात कर रहा हूं, किसी न किसी की याद हर किसी को कहीं ना कहीं सताती जरूर है, वो किसी की भी हो। कि हर एक पल तेरी यादें मुझे सताती हैं, तमन्नाएं हैं तेरे साथ में जिंदगी बिताने की, तमन्नाएं हैं तेरे साथ में जिंदगी बिताने की, तमन्ना है तेरे प्यार में खो जाने की, तमन्नाएं तेरी मेरे दिल की धड़कन जिंदगी का मकसद है, तमन्ना है तेरे साथ, तमन्ना है तेरी मोहब्बत में हमेशा हमेशा साथ रहने की। और यकीन जानिए, कोई भी हो, मैं हूं या आप हो या आप अपने आसपास नजर डालिए, हर किसी की जिंदगी में जुड़ी होती हैं वो तमाम तमन्नाएं, जिनके साथ वो जिंदगी के अनगिनत ख्वाब देखता है, अनगिनत खुशियों की बातों के साथ वो उस जिंदगी को गुजारना चाहता है। ढेर सारी बातें, थोड़ा फलसफे वाली बात हो गई, थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कैसी बातें हो रही हैं, बिल्कुल ऐसी ही बातें होंगी आज रजनीगंधा में। और साथ में होंगे खूबसूरत से अशार खास आपके लिए। उसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है आपको, हमारे साथ जुड़े रहना है रात 12 बजे तक 100.7 FM रेनबो के साथ। और तारुफ एक बार और अपना करा दूं, जमशेद हूं आपके साथ।

ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। और यकीन जानिए, ये जो जुदाई अल्फाज है, ये जो जुदाई शब्द है, ये कहीं ना कहीं एक जख्म दे जाता है दिल को। अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की जुदाई का एहसास भर हो जाता है किसी को, और यकीन जानिए कोशिश यही रहती है हर किसी की, मैंने कहा ना, चाहे मैं हूं या आप हूं या कोई भी हो, वो तो यही चाहता है कि ये अल्फाज जिंदगी में कभी ना आए, किसी के साथ ना आए। और कहीं पर भी हो, किसी भी रिश्ते के साथ ये अल्फाज जुड़ा हो, पद के साथ जुड़ा है तो फिर। लेकिन हां, जो भी पल हैं उनको बड़ी खूबसूरती के साथ हर किसी को जीना चाहिए, उसमें खो जाना चाहिए और कहते रहना चाहिए, जैसे कि इस गीत में भी है।

और सारी बातें बिना बात के ही होती हैं। कोई ऐसी मौका या कुछ ऐसी बात ही नहीं होती, जाने कैसे मुलाकात हो जाती है, बात आगे बढ़ जाती है। थोड़ा सा पीछे की बातें याद करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना लोग, माजी की बात, मुलाकातों के पलों को याद कीजिए। और मुलाकातों को नहीं बल्कि पहली मुलाकात के उस पल को याद कीजिए। और मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना जरूर बनता है। कभी कभी किसी के लिए बहाना किसी का रुमाल भी हो जाता है।

उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ बातें भूल जाया करते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। लेकिन उसका जो कंक्लूजन है, जो उसका अर्थ है, बस वही निकलता है कि महबूब की आंखों में समंदर की गहराई है। महबूब की आंखों में समंदर की गहराई है। महबूब के होंठों पर गुलाब की खुशबू है। महबूब की मुस्कान से रोशन होती है रात। महबूब की याद में खो जाता है दिल का साथ। महबूब की खूबसूरती का कोई हिसाब नहीं है। महबूब की मोहब्बत में खो जाना ही जिंदगी है।

नजर न लग जाए किसी की। बस इन सब बातों से तो ये दिल डरता है। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक गीत आपके लिए बजाया था, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर। उसमें मुलाकात का जिक्र था, कैसे हुई थी पहली मुलाकात, कहां पर हुई थी पहली मुलाकात। कुछ लोग कहते हैं कि एक अक्स सा उभरा था और फिर अचानक वो शक्ल सूरत में सामने आ गया और उसके

बाद कब कैसे वो जिंदगी बन गया इसका पता नहीं चला। और ऐसा ही अमूमन और लोगों के साथ भी होता है। पहले मुलाकात ख्वाबों में और फिर ख्वाबों की ताबीर उस शक्ल में।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: Mm-hmm.

ये झुके झुके नैना, ये लट बल खाती, ढेर सारी तारीफों की बात हो गई इस गीत में। यानी गुरुदत्त साहब ने आशा पारेख से हर बात कह डाली, जितनी भी उनकी खूबसूरती थी, जितनी तारीफ हो सकती थी। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बड़ा खूबसूरत होता है मोहब्बत का वो हर एक लम्हा, जिसमें जिंदगी की वो ढेर सारी बातें जुड़ जाती हैं, उन बातों की महक जुड़ जाती है, साथ बिताए हुए वो पल जुड़ जाते हैं, रूठना मनाना जुड़ जाता है, ढेर सारी खुशियां शामिल हो जाती हैं, और ये भी कहना शामिल हो जाता है कि हंसी तो और है लेकिन कोई कहां तुस्सा, हंसी तो और है लेकिन कोई कहां तुस्सा, जो दिल जलाए बहुत फिर भी दिल रुबा ही लगे। ये भी बात उसमें शामिल हो जाती है।

भाई अभी मुलाकात और बाकी है, यानी अभी एक घंटे का सफर और है हमारे साथ, एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी मुलाकात। तो बस आपसे ये कहूंगा कि आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के पास, क्योंकि अभी ढेर सारे गीत हैं आपके लिए, ढेर सारे अशआर हैं आपके लिए, ढेर सारी बातें हैं आपके लिए, और उन बातों को लेकर मैं यानी जमशेद रहूंगा आपके साथ। तो बस इस गीत का आनंद लीजिए और उसके बाद न्यूज ब्रेक और फिर मेरी मुलाकात।